मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नौवीं तिथि। तदनुसार 31 अगस्त सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज़्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज़्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प।

0: दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्टुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक उत्थान, उनका संवाद और संबंध केवल सांसारिक मोह माया नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और कल्याणकारी ज्ञान का प्रतीक है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम हरिहरन के स्वर में गाए इस भक्ति रचना के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, भोलेनाथ बहुत ही सीधे और सरल देवता हैं जो केवल एक लोटा जल की धार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों के किए गए पापों से मुक्त करता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए अनुपमा देशपांडे के स्वर में गाई इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। यह हमें सिखाता है कि सच्चे लक्ष्य और प्रेम को पाने के लिए समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना पंडित जसराज के स्वर में।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपनी रेडियो सट के रहिएगा करीब।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी चाय।
3: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
3: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना

0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में, और श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो, बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। श्रोताओं लीजिए सुनिए किशोरी अमोनकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह के 6:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरोजनी न्याडू के विचार।
1: विश्व की सुप्रसिद्ध कवित्री तथा भारत के राष्ट्रीय क्षितिज की कर्मठ नायिका श्रीमती सरोजनी नायडू अपनी विलक्षण प्रतिभा, काव्य कुशलता, वक्तृत्व शक्ति, राजनीति ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण केवल भारत में ही नहीं वरन समस्त एशिया के नारी जगत में विशिष्ट स्थान रखती थी। सौभाग्य से सरोजनी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा के बराबर मौके थे। उनके पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय यूं तो थे बंगाली, पर वास्तव में उनकी कोई खास जाति नहीं थी। उन्हें सब जातियों से प्रेम था और वो सबकी अच्छाई ग्रहण करना चाहते थे। वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनके संबंध में स्वयं सरोजनी ने

0: लिखा है, मैं समझती हूं कि सारे भारत में उनसे ज्यादा विद्वान थोड़े ही लोग होंगे। उन्हें जो कोई भी जानता था प्यार करता था। उनके चेहरे की विशेषता एक लंबी दाढ़ी थी। यूनानी कवि होमर से उनका चेहरा बहुत कुछ मिलता था। वो बड़े मिलनसार और हंसमुख प्रकृति के थे। उन्होंने अपना सारा धन दो कामों में खर्च किया, एक तो दूसरों को सहायता देने में और दूसरा अल्केमी यानी सोना बनाने के रहस्यमय रासायनिक प्रयोग में। उनके घर में एक दरबार सा लगा रहता था जिसमें सब धर्मों के विद्वान, राजा, रंक, संत, संसारी इत्यादि इकट्ठा हुआ करते थे। सन 1919 में जिस समय पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय वे लंदन में स्वास्थ्य सुधार कर रही थीं। इस घटना से उनके हृदय पर गहरी ठेस लगी और अस्वस्थता में भी उन्होंने डायरशाही के विरुद्ध घोर आंदोलन किया। उस समय इन्होंने गांधी जी को लिखा था, पंजाब हत्याकांड की आग देश की आजादी से बुझ सकती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे हृदय का रोग हो गया है और वो काफी बढ़ गया है, मगर मेरा दुखता हुआ हृदय तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक मैं भारत की करुण कहानी सुनाकर सारे संसार के हृदय को न हिला लूंगी। वे अत्यंत गर्व के साथ कहा करती थीं, मैं उस जाति की वंशजा हूं जिसकी माताओं के समक्ष सीता की पवित्रता, सावित्री के साहस और दमयंती के विश्वास का आदर्श है। वे भारतीय नारी की शक्ति से पूर्ण अवगत थीं और उनकी महत्ता को स्वीकार करती थीं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे सरोजनी नायडू के विचार। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रकृति का संरक्षण करें, दोहन नहीं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ उपहार स्वरूप दिया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रकृति को हम भी सजाकर साफ और सुथरा रखें।

APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं जो तुम्हें सुलाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे जैव उर्वरक के प्रयोग से लाभ, और इस विषय पर डॉक्टर हरि माधव शुक्ला से बातचीत की है मनोज कुमार सिंह ने।
1: भैया देखा, समय वैज्ञानिक तौर तरीका का है और खेती किसानी में भी पारंपरिक तौर तरीका छोड़ के कुछ प्रगतिशील तौर तरीका अपनावे की जरूरत है। दिन पर दिन भैया जो है उत्पादन बढ़ावे खातिर रासायनिक खाद का जो अंधाधुंध प्रयोग हुआ, एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, चाहे वो अपने

0: माटी की संरचना का बात हो के, चाहे पैदावार का बात हो के, चाहे अनाज और फसल के गुणवत्ता का बात हो के। और यह कारण है कि जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं कृषि का, वो यह कहते हैं भैया कि ज्यादा से ज्यादा जैव उर्वरक का प्रयोग करें। जैव उर्वरक के प्रयोग से का लाभ है, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आमंत्रित हैं डॉक्टर हरिमाधव शुक्ल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहब कि ये जैव उर्वरक है।
1: जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम जीवाणु कहते हैं। इनको हम नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। इनका बहुत ही उपयोगी हैं और कार्बनिक खेती के एक मुख्य रूप से अवयव के रूप में माने जाते हैं
0: जी।
1: इसमें अलग अलग जीवाणु अलग अलग कार्य करते हैं और हर जीवाणुओं की क्षमता भी या वंशज की क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं की बात करें, जैव उर्वरकों की बात करें, तो इसमें राइजोबियम जो बहुत पहले से किसान भाई दलहनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग करते चले आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता रखता है। 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन औसतन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिर करने वाला एजोटोबैक्टर, जो रबी की फसलों में खाद्यान्न, तिलहन और सब्जी वाली फसलों में आप इसका प्रयोग करके 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है।
0: अच्छा,
1: और जायद खरीफ में जब तापमान 35 डिग्री के बीच में रहता है, तब ये जो स्पाइलम सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 30 से 40 किलोग्राम देता है। उसके अलावा जो दूसरे जो लाभ हैं जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से, वो अतिरिक्त मिलते हैं।
0: अच्छा।
1: गन्ना की फसल की बात करें या चुकंदर या ये मीठी जो शकरकंद होती है, उसमें भी एसिटोबैक्टर एक जिम्मेदार जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो 25-30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। ये तो हो गए नाइट्रोजन स्थिर करने वाले। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो फास्फोरस या पोटास या जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, जो मिट्टी में अघुलनशील पड़ा रहता है। और किसान भाइयों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पोषक तत्व घुलनशील मिट्टी में होते हैं, घुलनशील माने पानी में पूर्णतया नमक की तरह या चीनी की तरह घुले हुए रहते हैं, वही पोषक तत्व जड़ के माध्यम से जब पौधा जल का अवशोषण करता है, तो पौधे के शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। अन्यथा अघुलनशील जो पोषक तत्व रहते हैं मिट्टी में पड़े रहते हैं, पौधों के लिए उनकी उपयोगिता नहीं होती है।
0: अच्छा।
1: तो ये जो फास्फोरस घोलक हैं या पोटास मोबिलाइजर बैक्टीरिया है, KMB के नाम से जाना जाता है, या जिंक साल्बलाइजिंग बैक्टीरिया है जो जिंक को साल्बलाइज करता है, मैग्नीशियम साल्बलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो फसलों की जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, उसकी 25 से 30% जैव उर्वरकों के प्रयोग से हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: इसके अगर इनका 25 से 30% पूर्ति हो जाती तो स्वाभाविक है कि हम रासायनिक खादों की मात्रा में 25 से 30% कमी करके खेती में सस्तापन और टिकाऊपन ला सकते हैं। जो
0: अच्छा,
1: अभी आपने कहा कि उपज अच्छी होती है, तो उसके साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। उसमें जो भी पोषक तत्व तो जो मिट्टी में हैं, अघुलनशील हैं, पौधे को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे उत्पाद में भी होंगे। जैसे जिंक की देखा जाता है, जिंक की कमी लगभग सभी मनुष्यों में भी, जीवों में भी होने लगा है, तो अब जिंक की प्राथमिकता जो अन्न उत्पादन में तो देते हैं उर्वरक प्रयोग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उत्पाद के अंदर जो जिंक की उपलब्धता है, उसको जो क्योंकि मानव ही उस अन्न को खाता है, तो उसके शरीर में भी जिंक कमी से बहुत सारे रोग प्रदर्शित होने लगे हैं, तो जिसकी वजह से उसको भी जैव उर्वरक जिंक घोलक जैसे उनका प्रयोग करना आवश्यक हो गया है।
0: अच्छा, भैया हम जानना चाहब कि मुख्य रूप से जो है कि फसलन में कई तरीके से एकर प्रयोग
1: हाँ,
0: होता है, और साथे साथे एकर विस्तार से भैया का का लाभ
1: हाँ,
0: होता है।
1: बिल्कुल निश्चित रूप से ये जैव उर्वरक हमने बताया जीवाणु है, और इनके जो उत्पाद होते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के जीवाणु ये जैव उर्वरक हैं, उसमें इनकी संख्या का निर्धारण होता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण नहीं होता है। जैसे अगर हम FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का ये मानक गुणवत्ता का वो आकलन करें, तो उसमें 1 ml में अगर तरल जैव उर्वरक है, तो 1 ml में 1 मिलीलीटर में 10 करोड़ बैक्टीरिया होना आवश्यक है।
0: अच्छा,
1: अगर
0: अच्छा।
1: 10 करोड़ बैक्टीरिया आवश्यक है, तो प्रयोग करने में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ये जीवाणु पौधों की जड़ों के पास शुरुआती अवस्था में पहुँचें। तो उसके लिए बढ़िया तरीका है, एक तो बीज उपचार, जो बीज बोई जाने वाली फसलें हैं, दूसरा जो जड़ उपचार, जो रोपाई करने वाली फसलें हैं, टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज, ये मिर्चा वगैरह, और तीसरा मिट्टी उपचार। इससे प्रयोग करने से क्या होता है, सबसे पहले जो जड़

0: उपचार की बात करें तो इसमें जड़ उपचार करने सारे बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार में क्या होता है कि जो पौधों के जीवाणुओं के द्वारा जो तो जीवाणु तो अधिक से अधिक संख्या में बीज की सतह पर तो चिपक ही जाते हैं, उसके अलावा जीवाणु के द्वारा निष्कासित या निषेचित जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनका भी बीज के द्वारा शोषण कर लिया जाता है, जिससे बीज के अंकुरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जल्दी
1: जी
0: अंकुरण होता है, ज़्यादा अंकुरण होता है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से पौध जो फसल है उसकी वृद्धि अच्छी होती है। और कभी भी आवश्यकता अनुसार अगर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक जैसे पोषक तत्व तो आवश्यक पोषक तत्व तो मिलते जाएंगे तो
1: जी
0: पौध वृद्धि निश्चित रूप से अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल सब्सटेंस का रिसाव किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में जो विषाणु कारक हैं, फफूंदी कारक हैं या जीवाणु कारक जो रोग हैं उनसे भी हमारी फसलों का बचाव भी होता है।
1: अच्छा, भैया मतलब अगर देखा जाए तो एक साथ
0: हाँ
1: कई तरह का
0: बिल्कुल।
1: लाभ होता
0: और
1: है।
0: साथ ही साथ अगर

0: बीज के द्वारा शोषण कर लिया जाता है, जिससे बीज के अंकुरण पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जल्दी
1: जी
0: अंकुरण होता है, ज़्यादा अंकुरण होता है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। इस तरह से निश्चित रूप से पौध जो फसल है उसकी वृद्धि अच्छी होती है। और कभी भी आवश्यकता अनुसार अगर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक जैसे पोषक तत्व, तो आवश्यक पोषक तत्व तो मिलते जाएंगे, तो
1: जी
0: पौध वृद्धि निश्चित रूप से अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल सब्सटेंस का रिसाव किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में जो विषाणु कारक हैं, फफूंदी कारक हैं या जीवाणु कारक जो रोग हैं, उनसे भी हमारी फसलों का बचाव भी होता है।
1: अच्छा, भैया मतलब अगर देखा जाए तो एक साथ
0: हाँ
1: कई तरह का
0: बिल्कुल।
1: लाभ होता
0: और
1: है।
0: साथ ही साथ अगर लगातार हर फसल में किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आप आपने कहा था कि ये मिट्टी में जो 3 गुण होते हैं, जिनके आधार पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति का आकलन किया जाता है, रासायनिक, भौतिक और जैविक, तो इन तीनों गुणों का विकास होते वर्ष प्रतिवर्ष होता जाता है। अगर किसान भाई इसको मिट्टी उपचार में अगर कार्बनिक खाद, जो गोबर की खाद है या घूर खाद है, बढ़िया सड़ी हुई खाद, 1 एकड़ में केवल 100 किलो खाद ले लें, उसमें 1 लीटर मैं ये एनपीके कंसोर्टिया एक आता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रहता है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया रहता है,
1: जी
0: तीनों तरह के एक कंसोर्टिया एक संगठन ये उत्पाद के रूप में किसानों के बीच में लाया गया है कई कंपनियों के द्वारा, तो उसको अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को हो
1: प्रचुर
0: जाती है।
1: मात्रा में रही।
0: जी
1: भैया
0: जी
1: हम ये जानना चाहब कि जैव उर्वरक का प्रयोग करें में मुख्य रूप से कोने कोने बात का सावधानी
0: ये
1: रखें।
0: सावधानी की बात, क्योंकि मैंने बताया ये जीवधारी हैं, जीवाणु हैं, तो निश्चित रूप से इनको तापमान से बचा करके छाया में रखना चाहिए। भंडारण के लिए छाया में ही इनका बीज उपचार या जड़ उपचार करें, और ये मिट्टी उपचार तो अब खुले में ही कर सकते हैं, बिना उसके करने के संभव ही नहीं होता है।
1: जी
0: तीसरा, इनको रासायनिक खादों या कीटनाशक दवाओं से या फफूंदी नाशक दवाओं से, खरपतवार नाशक दवाओं से इनका प्रयोग अलग करें, कभी मिला करके मत करें। इस तरह
1: बिल्कुल
0: से अगर प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर मिला करके रासायनिक खाद में मिला देंगे उपचारित बीज, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव जीवाणुओं की संख्या पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वांछित संख्या में जीवाणु जड़ के पास पौधों की शुरुआती अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर हरि माधव शुक्ल जी, आप आएँ और जैव उर्वरक के प्रयोग से का का लाभ है, विशेष रूप से जो ने कि करे प्रयोग में का का सावधानी बरतें, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित रूप से किसान भाई एक सुनिए, सुन के लाभ उठाइए, आपकी जानकारी दे, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में श्रोता बंधु अभी सुन रहे थे जैव उर्वरक के प्रयोग से लाभ, और इस विषय पर डॉक्टर हरि माधव शुक्ला से बातचीत किया मनोज कुमार सिंह ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर एसबी सिंह की वार्ता सुनवाएंगे। वार्ता का विषय है अवसाद में कितना कारगर होम्योपैथ।
1: आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी द्वारा अवसाद के उपचार की। डॉक्टर एसबी सिंह, आपने बात करने की, क्या बात करना इतना जरूरी है?
2: बिल्कुल, पॉजिटिव बात करना और अपने व्यूज को शेयर करना बहुत आवश्यक है, युवा पीढ़ी जो नहीं कर रही।
1: इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहले से एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चल रही हैं, क्या वो उनको रोक करके या उनके साथ ही होम्योपैथिक उपचार भी शुरू कर सकता है क्या?
2: ये डिपेंड करता है केसेस पर। अगर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल चल फिर नहीं रहा, तो कुछ दवाएं तो उनकी शेयर करें, लेकिन साथ में होम्योपैथी चलाएं। टोटल विड्रॉल इमिडिएटली ना करें, क्योंकि तब मैनेज करना मुश्किल हो जाए। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन रखें।
1: भारत विश्व का सबसे युवा देश है डॉक्टर एसबी सिंह, ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि इस हद तक कोई डिप्रेशन में चला जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं। अगर परिवार को कुछ ऐसा लगे कि इस व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा चल रहा है, तो तुरंत का जो कदम है वो क्या उठाए जा सकते हैं?
2: अवसाद का तो ये मेन लक्षण ही है कि अपने को हर्ट करना चाहता है, और उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये आता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी उसमें आ ही जाती है। तो प्रिलिमिनरी ही हमको देख लेना है कि ये पेशेंट अवसादग्रस्त हो रहा है कि नहीं। और अवसाद वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा प्रमुखतया सुसाइडल टेंडेंसी आती है, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट के मूड में रहते हैं, या तो लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे। तो जब भाग जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि मेरा जीवन

0: निरर्थक है, हम अनुपयोगी हैं, तो वो सोसाइटल टेंडेंसी। तो उसमें होम्योपैथी की एक बड़ी अचूक दवा है आरम मेटेलिकम 200, अगर वो दवा दिया जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये सिम्टम ही गायब हो जाते हैं।
1: कोई व्यक्ति जो अच्छा खासा हंसता बातचीत कर रहा हो अचानक से चुप हो जाए तो क्या ये खतरे की घंटी होनी चाहिए?
0: खतरे की घंटी तो नहीं है, लेकिन वो हेडिंग टूवर्ड्स अवसाद डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करें, एटमॉस्फेयर चेंज करें, पेरेंट्स से अपना बिहेवियर उनका न तो बहुत उनके प्रति आकर्षित रहें ना उनसे गुस्सा करें, एक बीच का रास्ता रहना चाहिए जिससे कि वो अगर युवा है तो वो सही रास्ते पे आ जाए।
1: नींद, खान पान, आसपास का जो हमारा परिवेश है, सामाजिक जुड़ाव, क्या इसको अगर हम अच्छा रखेंगे तो ये भी अवसाद से निपटने में या ना होने देने में?
0: यस, वो बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर स्थितियां ऐसी बनाई जाएं और उसको पूरी तरह से हैंडलिंग किया जाए कि उसके विचारों से भी मेल खाता रहे और उसको एकदम मनमानी भी करने ना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने ठीक से काउंसलिंग करें बच्चे की तो वो सही रास्ते बिना दवा के आ सकता है, क्योंकि दवाओं का एडिक्शन होता है और इन सब चीजों से आदमी अगर पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ेगा तो उसको परमानेंट क्योर रहेगा।
1: यही बात मैं आपसे पूछने वाला था, क्या केवल दवाएं ही एक समाधान है या फिर आपने काउंसलिंग शब्द का नाम लिया वो भी एक समाधान है? एक छोटा सा प्रश्न इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अब आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन या अवसाद देखने में आ रहा है, बच्चों के ट्रीटमेंट का, उपचार का जो तरीका है, क्या वही बड़ों का भी है या उससे कुछ इतर है?
0: नहीं, देखिए, अगर अनुवांशिक नहीं है, अवसाद के कारणों में जेनेटिक डिसऑर्डर,
1: अच्छा, जेनेटिक भी हो सकता है,
0: जैसे पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है, मूड स्विंग है, तो बच्चों में वो जरूर आता है। तो छोटे बच्चों में तो ये तो बहुत हैंडल विद केयर जिसको कहते हैं उसको करना है, लेकिन जनरली पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं, उसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ना के उसको पीट देते हैं, फिर वो रिवेलिएट हो जाता है और फिर वो गुस्से में आता है और फिर वो कंटिन्यू प्रोसेस में चला जाता है। सबसे बेसिक चीजें ये है कि एटमॉस्फेयर सुधारें और उसको कैसे हैंडल करना, ये इम्पोर्टेंट रोल है।
1: ये बहुत ही अच्छी जानकारियां दी डॉक्टर SB सिंह आपने। अंत में अगर चलते चलते हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से, अभिभावकों से या हमारे युवा साथियों से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
0: सबसे बड़ा संदेश है कि बच्चों को इतना अपने फ्रेंडली ट्रीट करें कि उनको कभी भी नशे की तरफ न जाएं, स्मोकिंग से बचाएं, लेकिन गुस्से में ही नहीं, उनको प्यार से हैंडल करें, ऐसी संगत से बचाएं बच्चों को, जहां बच्चे आजकल तो कितने ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, मेजॉरिटी सफर कर रही है।
1: अच्छा, ये भी एक कारण है नशा, क्योंकि अवसाद से बचने के लिए
0: उसका सहारा लेते हैं,
1: फिर नशे के चक्कर में और अधिक अवसाद में चले जाते हैं,
0: कि उनका जीना मुश्किल हो जाता, फिर बिना उसके रह नहीं पाते। प्रिलिमिनरी स्टेज में ये पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना।
1: बिल्कुल, और जैसा कि आपकी इस बातचीत में जो बात निकल करके आई कि आप सामाजिक तौर पर सक्रिय रहें, वास्तविक दोस्त बनाएं, उनके साथ रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, ये बहुत बड़ी बात है और आपको ही नहीं, आपके साथ साथ आपके पूरे समाज को, परिवेश को ये अवसाद से बचा सकता है। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर SB सिंह जो जानकारी दे रहे थे अवसाद के होम्योपैथिक समाधान के ऊपर। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप अवसाद में कितना कारगर होम्योपैथी और इस विषय पर डॉक्टर SB सिंह से बातचीत किया अभिनव प्रज्ञ पांडे जी ने। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनिएगा और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 और रात 10:30 पंडित रामकृष्ण का क्लियोरिनेट वादन प्रसारित किया जाएगा और दोपहर 12:15 गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। साथ ही 9:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप श्रीकांत वैश्य के स्वर में गाए

भजनों का आनंद लीजिएगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम आज आप सुबह 10:05 पर सुनेंगे। स्वर और आलेख मधु कुमार जी का है, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। सुबह 10:30 लोकगीत कार्यक्रम में आज आप रागनी चंद्रा के स्वर में गए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00, प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा जी की है। आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे, कार्यक्रम आपकी पसंद में, प्रस्तुति मधु कुमार जी की है। दोपहर 1:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा तीज और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला पर, साथ ही डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से नेहा गुप्ता जी की बातचीत सुनिएगा। विषय है विशेष बच्चों को मुख्य धारा में कैसे शामिल करें। गृहलक्ष्मी टिप्स में रसोई की सामान्य चीजों से प्राथमिक उपचार सीखें। 5:15 युवाणी कार्यक्रम में चर्चा कॉन्टेक्ट क्रिएशन को अवसर के रूप में देखना सुनिएगा। और प्रेरणा पुंज में बात होगी वासुदेव बलवंत फड़के पर, साथ ही सृष्टि सोमवंशी की वार्ता, विलुप्त होती लोक संस्कृतियां और युवाओं की जिम्मेदारी सुनिएगा। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा धान में खरपतवार नियंत्रण पर, रागनी चंद्रा से लोकगीत सुनिएगा। अखिलेश कुमार की वार्ता भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन सुनिएगा। और अनूप कुमार उपाध्याय से लोकभाषा में कविता पाठ हम आपको सुनवाएंगे, साथ ही मौसम संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता आदिकाल की रचना संसार हम आपको सुनवाएंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, जो भी करना है आज और अभी तुरंत करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन

0: सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निजसम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागितास्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्तस्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वयसमितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88+100 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27+200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणां 80% स्नातक छात्रान् संबोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खीजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल

कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ, वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है, जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है केदारनाथ फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है अमित त्रिवेदी ने। रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत भी दिया है अमित त्रिवेदी ने। तो ये भजन चला आपकी रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हरिहरण ने। उदय शंकर पानी की रचना है, संगीत दिया है सुरेश कोहली ने, और ये भजन चला आप सभी के रेडियो सेट पर।

फिल्म से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए कुछ थोड़ी सी प्रतीक्षा और अब बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर्स से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर दिया गया। यह विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शन

0: पक्षी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह 35वां वैश्विक सम्मान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और वैश्विक मंच पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को एक और मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कुछ पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति सेट के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश की हजारों बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन का आग्रह भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा तय की है।
2: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
0: अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,30,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य भर में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। वहां गंगा नदी चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में 5 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे सभी 4 लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: डीडीएम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित रामकृष्ण का क्लेरिनेट वादन सुनवाएंगे। आपके साथ तबले पर संगत किया है सुदर्शन राम ने। और लीजिए सुनिए ही कार्यक्रम।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित रामकृष्ण का क्लियरिनेट वादन सुन रहे थे। राग था भोपाली तोड़ी और आपके साथ तबले पर संगत किया था सुदर्शन राम ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडुंगी मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले की

0: जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण

0: पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सबिता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
2: आईएमडी ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केउंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान की सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरी गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
3: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289

0: 4044। सवाल हैशटैग #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडम्बू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ 2-डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड SCO समिट एंड मीट सेवरल SCO लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिजिस्तान के सदर सदिर जपारूव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो

0: तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिजिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्मे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई तावन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिजिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज छठे वर्ल्ड नामोड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई तावन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोज़ा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तफाक किया। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तिजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रुपए पैसे के लेन देन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और विरसे के तहफ़ से है। इस दो रोज़ा दौरे से भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दिफाई शराकतदारी और $5 अरब के तजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई तआवुन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशियाई खित्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्त लीग से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और तआवुन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के तआवुन का एतराफ़ किया गया है। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज़ आबनाए हुरमुज को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से अबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसी अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्री अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासर जिलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताज़ा सैलाब से गोरखा ज़िले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहराह के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में

0: बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इत्तलात के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चल रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर उड़ीसा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी उड़ीसा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय बहरिया आज मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये निस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज DSV है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेरेआब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जरियाब कार्रवाईयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है जिसमें समुन्द्र में जरियाब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जरियाब बचाव कार्रवाइयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: अमरीका ने कल रात आबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी के फौजियों को आबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुम में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाजाराई में फिर से शिद्दत आ गई है। इससे कबल अमरीकी फौज ने आबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को यह सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलविस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज्जम अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के जरिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने

0: 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वें शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेवक्त शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबार में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई

0: सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेवक्त शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबार में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इनकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शिक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2000 रुपए से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाजत है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खासतौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी, मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुबह के 8:45:57 हो गए हैं और आप आ जाइए अपने रेडियो सेट के करीब क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचारों से और सुविचारों के इस श्रृंखला में हमें सुविचार प्राप्त हुआ है नीरा त्रिपाठी जी का। नीरा त्रिपाठी के सुविचार इस प्रकार हैं, वो लिखते हैं कि कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। क्या बात है, क्योंकि अभिमान और घमंड मनुष्य को शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी अच्छा इंसान बना देती है। क्या बात है नीरा जी, आपका सुविचार बहुत अच्छा है। और एक और सुविचार इन्होंने भेजा है जो आप सभी से साझा करना तो बनता है। तो ये लिखती हैं कि जब दरिया ही सूख जाए तो फिर उसमें लहरें ढूंढना ही बेकार है और जहां एहसास ही ख़त्म हो जाए वहां अपने पन की उम्मीद करना बेकार है। सही बात है, जहाँ एहसास ख़त्म हो जाते हैं वहाँ अपनेपन की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। बहुत अच्छा नीरा त्रिपाठी जी आपने लिखा है और आपके सुविचार के लिए आपका

0: तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा अंतराल। तो आप अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का जो विषय है बहुत ही खास है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: तो भाई, अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। और आज का विषय मैं आपको बता दूं, विषय है बचपन का बदलता स्वरूप। तो चलिए आज के इस सफर में बात करते हैं उस बचपन की जो कहीं खो गया है, या यूं कहें कि इस डिजिटल युग में पूरी तरह से रंग गया है। आज के समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय है बचपन का बदलता स्वरूप। आप देख ही रहे होंगे कि बीते कुछ दशकों में बच्चों का बचपन पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले बचपन का मतलब खुले मैदान, मिट्टी के खेल और दोस्तों की टोली होती थी, वहीं आज का बचपन स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स और बंद कमरों तक सिमट कर रह गया है। आपको बताऊं, इस बदलाव ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। पारंपरिक खेल तो जैसे कहीं गायब से हो गए हैं। पहले बच्चे गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, कंचे, खो खो और कबड्डी जैसे खेल खेलते थे। इन खेलों से उनका शारीरिक व्यायाम भी होता था। अब बच्चे इन खेलों को खेलते ही नहीं हैं। आज जब बच्चे खाली होते हैं तो वो अपना सारा समय, मतलब पूरा टाइम, मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलना, यूट्यूब देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिताते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर फैमिली। भाई, इस पर और भी हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन एक गीत तो बनता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको संगीत यात्रा पर, यानी म्यूजिकल ब्रेक पर। और आप इस गीत को सुनकर बताइएगा कि आपको अपना बचपन याद आया कि नहीं।

बचपन याद आया कि नहीं भाई, म्यूजिकल ब्रेक से लौट आइए। आज के विषय की बात करते हैं कि बचपन का बदलता स्वरूप। तो मैंने आपको संगीत यात्रा पर ले जाने से पहले बता दिया था कि इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर फैमिली। तो बताऊं कैसे, तो सुनिए। पहले दादा दादी, नाना नानी का चाचा चाची, मतलब संयुक्त परिवार होता था, भरा पूरा परिवार होता था, जहाँ बच्चों को अकेलापन खलता ही नहीं था। अपने बड़ों से भरपूर प्यार और संस्कार मिलता था, नैतिक कहानियाँ सुनाई जाती थी, और सबसे बड़ी बात कि क्या सही है और क्या गलत, इसका अंतर बताया जाता था। आपको नहीं लगता ये प्यार कहीं खो गया है? आज माता पिता दोनों कामकाजी हैं, इस वजह से बच्चे अकेले रहते हैं या क्रैच यानी डे केयर में पलते हैं। इससे सबसे उसमें जो बचपना है ना बच्चों में खो गया है, अकेलापन जो है बढ़ता जा रहा है। हमने पैसे कमा लिए, सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, बट बच्चों का बचपना वो मिस हो गया। आज के दौर में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और प्रतियोगी हो गई है, और बच्चों पर भारी बस्ते के साथ साथ अच्छे मार्क्स लाने का भी भारी दबाव है। स्कूल के बाद ट्यूशन, कोचिंग और तरह तरह की एक्टिविटीज़ का क्लासेस, और बच्चों के पास नो टाइम, यानी उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। समय कहाँ बचता है, उनका प्राकृतिक विकास कहीं खो गया है, और इस वजह से बच्चों को शारीरिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चों में धैर्य की कमी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। बचपन का ये बदलता स्वरूप दिखाता है कि हम आधुनिक हो गए और तकनीकी रूप से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चों ने अपना बचपना खोकर दिया है, यानी वो मासूमियत जो है बिल्कुल खो गई है। तो आप सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को समझिए, आप अपने बच्चों को तकनीकी का सीमित उपयोग करना सिखाएं और उन्हें प्राकृतिक और आउटडोर खेलों से दोबारा जोड़ें, ताकि उनका बचपन सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। भाई नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम उन विषयों पर आपसे बातें करें जो बड़ों से लेकर बच्चों तक के विकास में सहायक हों, और कहीं बच्चे ये ना कहने लगें कि बचपन कहाँ।

0: श्रोताओं, ये गीत बिल्कुल बचपन से जुड़ा हुआ है और कहीं ऐसा ना हो जाए। तो भाई, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। और चलते चलते आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार प्रयागराज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है। ना भाई ना।
7: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम को आज कुछ नया मोड़ दें, क्या कहते हैं श्रोताओं? तो भाई, आज हम बात करते हैं चुनरी की। चुनरी बहुत ही खूबसूरत होती है ना, जब किसी के सर पर सजती है तो क्या खूब लगती है वो। तो भाई, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं BB No. 1 फिल्म से। और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है अभिजीत ने, समीर की रचना है, अनु मल्लिक का संगीत है। और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। चुनरी पर बातें करेंगे और आनंद लीजिए इस गीत का।

तो श्रोताओं, उम्मीद है आप झूम रहे होंगे और इस गीत को अपने स्वर से सजाया था अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने। रचना थी समीर की, अनु मलिक का संगीत है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। भाई देर क्यों करते हैं, इंसान फिल्म का गीत आपको अब हम सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है उदित नारायण, अलका याग्निक ने। समीर की रचना है, हिमेश रेशमिया जी का संगीत है। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

भाई प्रकृति ने भी बिल्कुल हरी हरी धानी धानी चुनरिया ओढ़ ली है, और जब ये चुनरी सरक ही रही है तो फिर एक और गीत तो बनता है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं रन फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। समीर जी की रचना है, हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है, और आप सब आनंद लीजिए कार्यक्रम के इस आखिरी नगमे का।

0: भाई अब तो चलने का वक्त हो गया है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ज़िले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सच के करीब।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
3: वाराणसी में बीते दिनों भारत आए 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में जापान की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ शामिल रहे। वाराणसी पहुंचने पर शहर के प्रवेश द्वार पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने जापानी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाराणसी में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। इसके बाद दल ने नमो घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखा और काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। दौरे को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पर्यटन निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट सोसाइटी के महासचिव के सीमुथुरे ने बताया कि
4: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह में बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट स्टेशन, हर तरफ का विकास हो रहा है। भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा विश्व में।
3: वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI के 56वें वार्षिक अध्यक्ष समारोह के अंतिम दिन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से जुटे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसर में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में किए गए निवेश, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास, करों में कमी और GST में राहत से इस क्षेत्र की संभावनाओं का और विस्तार हुआ है। सरकार की नीतियां और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण एनेबलर्स।

0: हैं, लेकिन इन अवसरों को जमीन पर उतारने में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समारोह में देश भर से होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य उद्योग से जुड़े व्यवसायी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की चुनौतियों, बदलती उपभोक्ता मांग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की गई। काशी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 22 से 24 अगस्त तक आयोजित ओडिशा पर्व में ओडिशा की संस्कृति, कला, खान पान, हस्तशिल्प और पर्यटन की जानकारी देते हुए उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिडा ने कहा कि
1: इन्वेस्टमेंट को उड़ीसा लाने के लिए, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उड़ीसा बुलाने के लिए हमने उड़ीसा पर्व का आयोजन किया। हमारी कुजिन का, शोकेसिंग का, हैंडलूम का, हैंडलर हैंडीक्राफ्ट का और हमारी डायस्पोरा जो हमारी उड़ीसा की ताकत है उनसे मिलके बातचीत करने के लिए भी हम आए। वो सब अच्छे से संभव होगा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से।
0: भारत सरकार के भारत पर्यटन वाराणसी कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से स्थानीय होटल में होम स्टे एवं ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए अर्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटक यात्रा के प्रत्येक पहलू, बुनियादी ढांचे एवं पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता, आतिथ्य, सेवा वितरण, डिजिटल सहभागिता, सुरक्षा तथा समग्र पर्यटन अनुभव को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। श्री भुवनेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार की क्षमता निर्माण संबंधी पहल पर्यटन उद्यमियों को अधिक व्यावसायिक कार्य प्रणालियाँ अपनाने, सेवा मानकों में सुधार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने तथा पर्यटकों की बदलती आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम बनाएगी। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि स्थानीय पर्यटन हितधारक वाराणसी के पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी को और अधिक टूरिस्ट फ्रेंडली शहर बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने होम स्टे एंड बी संचालकों से पर्यटकों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता, धैर्य और सहयोग की भावना रखने की अपील की। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन मार्केटिंग, संपत्ति की ऑनलाइन लिस्टिंग, डिजिटल प्रचार प्रसार, परिचालन प्रबंधन, अतिथि सत्कार, ग्राहक सेवा, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर अपने पर्यटन व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पर्यटकों तक पहुंचने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
3: बांदा में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर शहर और गांव के बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दी। इस बार बाजार में चाइनीज राखियों की जगह देसी और हाथ से बनी राखियों की मांग ज्यादा दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने से बहनों में भी उत्साह का माहौल रहा। महिला के साथ एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाएं काफी खुश नजर आईं और उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिला यात्रियों ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं।
4: गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है बस की हमको, जिससे हम बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए एक सुविधा दिया है कि उन्होंने फ्री किया है रक्षाबंधन के लिए 3 दिन का, उसमें एक सहयोगी भी है। ये चीज हमको सरकार की बहुत अच्छी लगी और इस चीज से हम लोग बहुत खुश हैं और हम उनके बहुत आभारी रहे।
3: जनपद के स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में विगत 25 अगस्त को नियुक्त पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा के अंतर्गत जनपद के चयनित 43 प्राविधिक सहायकों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित नव नियुक्त प्राविधिक सहायकों को बधाई देते हुए प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो नए दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि
5: जनपद बांदा में 43 प्राधिक सहायक ग्रुप सी के बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, कहीं कोई किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ में मिला है।
3: वहीं नव नियुक्त परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बांदा के स्थानीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विगत 12 अगस्त को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर

0: धीर एम बोबड़े ने की दीक्षांत समारोह में शामिल होने बांदा पहुंचे राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने विश्वविद्यालय के 250 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही 18 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी खुश नजर आए और सम्मान के लिए कुलपति का आभार जताते हुए कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर एम बोबड़े ने कहा कि इस बार दीक्षांत समारोह में पहली बार बच्चों के साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है।
1: विश्वविद्यालय में 250 बच्चों की उपाधियां दी गई है और उसके साथ साथ 18 मेडल्स दिए गए, उसमें से 10 बालिकाएं और 8 हमारे बालक है। कुल मिलाकर बेटियों को अगर मौका मिलता है तो शिक्षा में आगे बढ़ सकती है, ये कुलाधिपति महोदय का संदेश है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि उनके पास आने वाली सभी तरह की जन समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। इसकी निगरानी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाती है, जिसको लेकर जनपद में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में जनपद बांदा पुलिस को प्रदेश के 75 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि IGRS पोर्टल पर जो पुलिस से संबंधित शिकायतें होती हैं, उनका समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाता है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मंडल, जोन और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।
2: शासन द्वारा एक IGRS पोर्टल चलाया जाता है, काफी समय से चल रहा है। ये एक बहुत ही नवीन पहल है ये सरकार की। पुलिस का जो पोर्टल है उसमें जितने भी पुलिस संबंधित समस्याएं किसी को भी रहती हैं, वो पोर्टल पे जाकर के बहुत ही 2 मिनट के अंदर अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकता है। ये मुख्यालय स्तर से भी जो CM ऑफिस है वहां से भी एक IGRS वहां पे सेल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है और लोगों से व्यक्तिगत बात करके उनका संतुष्टि पूछता है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9:25:34 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था और सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सच के करीब।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: खत इंसानी शख्सियत का आईना होते हैं और इंसानी अफकार से शनासाई का खामोश जरिया भी। कदीम अरबी का एक मशहूर मकोला है कि खत आधी मुलाकात होते हैं। आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम में खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि हमारे सामईन हमें जिस खुलूस व मोहब्बत से खत लिखते हैं उससे न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है बल्कि हमारे प्रोग्राम में बेहतरी के लिए तजवीज़ पेश करके अच्छा काम करने का जोश हम में भर देते हैं। यकीन मानिए, खत पढ़ते वक्त कुछ यूं महसूस होता है मानो आप और हम आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। आज के खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे सामईन के ऐसे ही बेशकीमती ढेर सारे खतूत हमारे हाथों में इस वक्त हैं, जो आकाशवाणी के लखनऊ से आपकी मोहब्बत के सबूत हैं। सामईन इकराम, इन प्यारे खतों के साथ आज के खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में हाजिर है आपकी मेजबान शाइस्ता जाहिद। आदाब, कबूल फरमाइए। और आपके खतों के दिलचस्प जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हर दिल अजीज जनाब मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी जी। राजेश्वरी जी, आपको भी हमारा आदाब।
2: शाइस्ता जी, आपको बहुत बहुत आदाब और सुनने वालों की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ।
1: और राजेश्वरी जी, देखिए हमारे जो लिसनर्स हैं वो इतना ज्यादा संजीदगी से हर प्रोग्राम को सुनते हैं, उसके बारे में हमें मशवरे देते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे कौन से प्रोग्राम को बहुत ज्यादा दाद मिल रही है। और कुछ ऐसी ही दाद के मामले में आज एक रिकॉर्ड टूट गया है।
2: अच्छा।
1: भाई, हमारे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम अभी जो हम लोगों ने नया शुरू किया वो है शह और मात के नाम से। तो इस सीरीज के अंदर रावी का जो किरदार है, आपने अलग अंदाज से उसको भी पढ़ा है, तो उसके बारे में मुझे लगा कि आपने इसको बड़े दिल से किरदार को निभाया है।
2: असल में शाइस्ता जी, हुआ ये कि जब इस सीरियल्स के बारे में जनाब आसिफ साहब से बात हो रही थी
1: जी,
2: तो कैसे इसको किया जाए, क्या करना चाहिए, किस तरह की शक्ल इसकी होनी चाहिए, कौन कौन से किरदार हों, तो काफी महीने इस पर बातचीत होती रही। आसिफ साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया इसमें। और खुशी की बात ये थी कि आसिफ साहब ने सारे जो कैरेक्टर्स को जो रोल दिया है वो इस पर भी बहुत काम हुआ कि किस किस को किस तरह से अपने किरदार निभाना होगा। तो दिलचस्प ये है कि इसकी जो स्क्रिप्टिंग की है आसिफ साहब ने, और वो कमाल की है।
1: आपने इतनी

0: दुरुस्त बात फरमाई, और ये बात सिर्फ आपका और हमारा ही सोचना और कहना नहीं है, बल्कि आप देखिए कि ये जो खतों की तादाद मेरे हाथ में है, ईमेल्स हैं, ये इस बात का सबूत है।
1: अच्छा, सारे ईमेल्स इसी रिलेटेड हैं?
0: जी, इसीलिए मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं सारे, मुझे खतूत पढ़ना भी है। और देखिए, इसमें एक और बहुत खास खत है जो कि हमारे यही के अनाउंसर, हमारे जो सीनियर रहे हैं, सत्यानंद वर्मा जी, जो हमारे सीनियर रहे हैं। और सबसे पहले तो भाई इन्हीं का खत मेरे हाथ में है, क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की है। और आप ये देखिए कि 20 मिनट के प्रोग्राम के पीछे कितनी मेहनत होती है। ये तो आपने अभी जो बताया कि महीनों से इस पर एक बातचीत चल रही थी। अब हम आपको सत्यानंद जी के बारे में, इनके जो हमारा खत जो मौसूल हुआ है इनका, इसके बारे में बताते हैं कि इन्होंने लिखा है, बहुत ही उम्दा कोशिश, उर्दू अदब की जासूसी नॉवल को उर्दू प्रोग्राम में शामिल करके प्रोड्यूसर आसिफ साहब ने एक तारीखी काम किया है। मैं कौन हूँ उनवान के पहले एपिसोड से फिलहाल जाहिर तो नहीं हुआ कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, लेकिन तजस्सुस कायम करने में अफसाना कामयाब है। पर यही तो कामयाब और ये वाकई तजस्सुस वाली बात तो अभी भी बरकरार रही है। सस्पेंस ही इस जॉनर की खासियत है। तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया। इसके साथ ही क्यों ना हम एक दो और भी खत ले लेते हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है मोहतरमा शमीमा खान, मौजा सिहोंडा पोस्ट, भागनगर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। इन्होंने भी आकाशवाणी लखनऊ से नश्र होने वाले 17 अगस्त को प्रोग्राम शय और मात की पहली किस्त के बारे में भरपूर तारीफ लिखी है। इन्होंने कहा है कि कहानी का अंदाज, मुकालमे और फनकारों की आवाज ने बहुत मुतासिर किया। खास तौर पर ये बात अच्छी लगी कि कहानी में तजस्सुस बरकरार रखा। देखिए, तजस्सुस लोगों को वाकई पूरा कामयाब रहे बरकरार रखने में। और पहली किस्त के इख्तिताम पर दूसरी किस्त सुनने की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। उम्मीद है कि उर्दू प्रोग्राम में आइंदा भी ऐसे म्यारी और दिलचस्प कहानियां शामिल की जाती रहेंगी। तमाम फनकारों, जिसमें कामरान यानी शम्सुल आरफीन और हसन मुश्तबा यानी आसिफ इकबाल साहब की आवाज बहुत दिलचस्प लगी, और जेश्वरी जी की मखवली आवाज ने मजीद दिलकशी पैदा कर दी।
1: देखिए शायस्ता जी, जनाब सत्यानंद वर्मा जी का बेहद शुक्रिया कि रेडियो से जो उनकी दिलचस्पी रही है, उनकी जो खिदमत रही है, तो वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि एक हमारे लिए सरमाया भी है।
0: बेशक,
1: इतने बेहतरीन प्रोग्राम खुद वो प्रोड्यूस करते थे
0: जी,
1: तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन वक्त निकाला है आपने ये जासूसी नॉवल शय और मात के, जो मैं कौन हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सुना, आपने खत रिसाल किया। सत्यानंद जी, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और शायस्ता जी, रही बात हमारे शमीमा खान साहिबा का, जिन्होंने संत कबीर नगर से ये ईमेल रिसाल किया है। शमीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। और रही बात किरदारों की, तो भाई शमसुल भाई ने जो रोल अदा किया है, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये जानकर कि मतलब इतना लोग पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं
0: जी, तो अभी तो ये शुरुआत है राजेश्वरी जी, अभी तो हमारे हाथ में और बहुत सारे खत हैं।
1: अच्छा, इसी प्रोग्राम से मुताल्लिक?
0: जी जी जी,
1: माशाल्लाह।
0: क्योंकि देखिए, सभी तजस्सुस का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या आलम है। एक इस खत से भी जाहिर होता है, ये हमारे शायद बहुत पुराने लिसनर हैं, जरगाम खान साहब हरदोई से।
1: अच्छा,
0: ये लिखते हैं कि 17 अगस्त को शय और मात की पहली किस्त आपने सुनी। इस किस्त में फनकारों ने अपनी आवाज के उतार चढ़ाव, लबो लहजे और बेहतरीन अंदाज अदा से अपने फन खूबसूरत मुजाहिरा किया। इसी वजह से प्रोग्राम की पेशकश में दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहा। यही वजह है कि पहली किस्त के इख्तिताम के साथ मन अभी और समाद का तलबगार है। और इसी से मुतालिक एक और खत हमारे हाथ में है, मुतरमा इमराना खातून का, बस्ती से। आपने भी 17 अगस्त के प्रोग्राम शय और मात की पहली किस्त की बहुत तारीफ की है।
1: शाइस्ता जी, ये जो तजस्सुस है ना
0: जी,
1: यही इस सीरियल की, इस प्रोग्राम की जान है। जिस तरीके से इसको बनाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जिस तरीके से उसको लिखा गया है, अगर वो दिलो दिमाग पर उस तरह से असर डाल रही है, तो यकीनी तौर पर हम कामयाब।
0: यही कामयाबी है इसकी।
1: हाँ। जरगाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को इतनी शिद्दत के साथ सुना है, इतना प्यार किया है और अपनी बात हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस्ती की इमराना खातून साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया।
0: और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दूसरी किस्त भी उतनी ही शिद्दत से पसंद आई होगी। और देखिए, इसी सिलसिले में और भी हमारे पास खुद है, फायजा बिन्त मुजीब अहमद, हलीम नगर, सीतापुर यूपी से। आपने भी इस प्रोग्राम की शय और मात की बेशुमार तारीफों के पुल बांधे हैं।
1: फायजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शय और मात की इस खास प्रोग्राम को सुना, वक्त निकाला हमारे लिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
0: राजेश्वरी जी, एक हमारे लिसनर हैं जिन्होंने 24 जुलाई 2026 के उर्दू प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है।
1: अच्छा।
0: इस प्रोग्राम में एक मकाला पेश किया गया था क्लासिकी शायरी में तसव्वुफ पर, इस पर बेहतरीन मालूमात

0: दी गई थी और प्रेजेंटर थे डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर जी।
1: अच्छा,
0: इनके लिए हमें तारीफ भेजी है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। तो मोहम्मद सईद अख्तर साहब को इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है इस प्रोग्राम के लिए।
1: भाई दुर्गेश नागनपुरे जी, राधेश्याम जी, वंदना भावना, बिंदु जी, कुसुमबाई जी, दिव्यांश जी, सूरज भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 24 जुलाई का जो प्रोग्राम था और खासतौर से जो मकाला इसमें पेश किया गया क्लासिक की शायरी में, तसव्वुफ पर, लाजवाब तो थी ही, वो आपको पसंद आई ये सुनकर के और दिल खुश हो गया। और उसके जो प्रेजेंटर्स थे मोहम्मद सईद अख्तर साहब, आपकी मुबारकबाद हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और आपको एक चीज तो महसूस हुई होगी राजेश्वरी जी कि हमारे सामईन जो है मुशायरे बड़ा पसंद करते हैं, और मुशायरा 1-3 अगस्त को गया था जिसका उन्वान था दोस्ती तुझे सलाम। इस प्रोग्राम को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया, और जो हमारे प्रोग्राम के निजामत करते हैं शमसुल आरफीन साहब, इनके तो मुझे लगता है कि हमारे सामईन दीवाने से हो गए तो ये प्रोग्राम जो है इसके लिए भी हमारे पास कई सारी तारीफों से भरे खत आए हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है जनाब असगर अली जहूरी, असगर बिलग्रामी का। आप लिखते हैं कि उर्दू प्रोग्राम के तहत एक नज़मिया महफिल बाउनवान दोस्ती तुझे सलाम नशर हुई, जिसकी पेशकश थी आले जनाब आसिफ इकबाल साहब की और जिसकी निजामत फरमा रहे थे आले जनाब शमसुल आरफीन साहब। मधु शोरा में जनाब हाफिज मसूद साहब, जनाब इशरत सगीर साहब और नाचीज असगर बिलग्रामी। मोहतरम हाफिज मसूद साहब ने दोस्ती के हर रंग का अपनी शायरी में जिक्र किया, कहीं पर दोस्त की तारीफ की तो कहीं अच्छे दोस्त बनने के लिए मशवरे, कहीं अच्छे दोस्त की खसूसियात। जनाब इशरत सगीर साहब ने तो दोस्ती की तारीख के हवाले से वो मिसालें पेश की के जिक्र मुहाल है। ऐसे प्रोग्राम उर्दू की बका के लिए बेहद जरूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी से नश्र होते रहेंगे।
1: असगर बिलग्रामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो दोस्ती तुझे सलाम के मौजू पर मशायरा जो आप सुना, और यकीनी तौर पर जो शोरा उस पर मधु किए गए थे, बेहद खूबसूरत कलाम उनका रहा है, आप तक पहुंचा और आपको पसंद आया, इसके लिए शुक्रिया। निजामत कर रहे थे इसके शमसुल आरिफीन भाई, तो भाई इस माइक्रोफोन के जरिए भी हाथों हाथ उन तक आपकी मुबारकबाद हम पहुंचा रहे हैं। आपने खत लिखा और खासतौर से इस बात का भी जिक्र किया कि इस तरह के प्रोग्राम हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आपकी सरपरस्ती मिली, आपकी दुआएं चाहिए कि उर्दू प्रोग्राम में हम इस तरह के प्रोग्राम को शामिल कर सकें। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
0: राजेश्वरी जी, हमारे इसी प्रोग्राम के लिए हमें 2 और खत मौसूल हुए हैं। ये है जनाब इशरत सकी शाहजहांपुर से, ये लिखते हैं, दोस्ती तुझे सलाम प्रोग्राम सुना। इस खूबसूरत बज्म की निजामत कर रहे शमसुल आरफीन साहब को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महफिल शेर व सुखन में दोस्ती के हवाले से बहुत ही आला मियारी कलाम पेश किए गए, और दोस्ती तुझे सलाम इस प्रोग्राम को पसंद किया है उमर हनीफ साहब ने भी, और ये लिखते हैं कि मोहतरम शमसुल आरफीन साहब की पेशकश दिल को छू लेने वाली होती है, आपका उर्दू प्रोग्राम बहुत पसंद आया, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं।
1: उमर हनीफ साहब और इशरत सगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि दोस्ती तुझे सलाम के उनवान से जो प्रोग्राम आप तक पहुंचा है। शाइस्ता जी, देखे कमाल देखें कि सुबह का वक्त होता है
0: जी
1: 9:30 बजे का, और लगभग सारे लोग या तो ऑफिस जा रहे होते हैं, बाकी लोग भी अपने कामों में मशगूल रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि उर्दू प्रोग्राम से इतना इश्क और इतनी मोहब्बत है कि प्रोग्राम जरूर सुन रहे हैं,
0: जरूर सुन रहे हैं।
1: खास तौर से कोई मियारी प्रोग्राम अगर हमारा पहुंचता है
0: जी,
1: तो उसको तो ये ईमेल्स और खत बता रहे हैं कि कितने प्यार से वो लोग सुनते हैं। भाई शुक्रिया भी मुझे लगता है कि बहुत कम है
0: जी।
1: लेकिन रिवायती तौर से कहना तो होगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और राजेश्वरी जी, देखिए एक बार फिर मेरे हाथ में उसी प्रोग्राम के लिए जिससे हमने शुरुआत की थी 17 अगस्त 2026 से आकाशवाणी लखनऊ से उर्दू प्रोग्राम में नश्र हुआ शह और का पहला एपिसोड मैं कौन हूँ, इसके लिए ये खत हमें मौसूल हुआ है सैयद उमेर, अजहर इकबाल, अनम, जोया, समीना अजहर, इन सब का मानक नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ से। प्रोग्राम शह और मात की किस्त, पहली एपिसोड की किस्त मैं कौन हूँ को सुना और सुनकर इन्हें बेहद लुत्फ आया, जिसमें मुख्तलिफ किरदारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। प्रोग्राम के रावी राजेश्वरी साहब ने उम्दा तरीके से कहानी की शुरुआत की, फिर मुख्तलिफ आवाजों में किरदारों का सिलसिला जारी हुआ। तो राजेश्वरी जी, शह और मात प्रोग्राम के मुतालिक हमारे पास और भी बहुत सारे खतूत आए हैं जो कि मेरे हाथ में हैं। इस वक्त इन सभी ने क्योंकि तारीफ इस प्रोग्राम की लिखी है, तो चलिए वक्त को देखते हुए हम इनके नाम एक बार पढ़ देते हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है विजय कॉलोनी RDSO आलमबाग लखनऊ से नियाज अहमद, तलहा जाहिद, हमजा जाहिद, अयान जाहिद और इनके दोस्त मोहम्मद ताहा और हबीबा जावेद का और मोहम्मद जाहिद।

0: का। इसके साथ ही फैजुल्लागंज लखनऊ से इरम शीरीन का खत हमें मौसूल हुआ है इसी प्रोग्राम शह और मात की तारीफ के लिए, और ये खत हमें मौसूल हुआ है हफीज मसूद महमूदाबादी खैराबाद सीतापुर से। आपने भी शह और मात प्रोग्राम की दिल खोल कर तारीफ की है। जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से ये खत हमें मौसूल हुआ है असगर अली जहूरी, असगर बिलग्रामी और उनके साथियों का शह और मात प्रोग्राम की तारीफ के मुतालिक, और ये खत हमें मौसूल हुआ है नदवा कॉलेज कैंपस लखनऊ से सादिया खातून का। आप भी हमें लिखती हैं कि मैं कौन हूँ, ये प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ से 17 अगस्त को जो नश्र हुआ वो हमें और हमारे पूरी फैमिली को बेहद पसंद आया।
1: शाइस्ता जी, कमाल कर दिया आसिफ इकबाल साहब ने
0: जी।
1: आज मुझे लग रहा है कि अगर तफसील से खत पढ़े जाएं
0: जी
1: तो कितने प्यार से कितनी मोहब्बत के साथ में हमारे सुनने वालों ने इस प्रोग्राम को सुना है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सुनने वालों का कि इतना प्यार, ऐसी सरपरस्ती, ऐसी राय, ऐसे मशवरे हमको देते रहें ताकि हम आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कुछ बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना है लेकिन खत नहीं लिखा उनको भी शुक्रिया, जिन्होंने खत लिखा उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे ईमेल्स एक प्रोग्राम के मैंने शाइस्ता

0: ये प्यार से कितनी मोहब्बत के साथ में हमारे सुनने वालों ने इस प्रोग्राम को सुना है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सुनने वालों का कि इतना प्यार, ऐसी सरपरस्ती, ऐसी राय, ऐसे मशवरे हमको देते रहें ताकि हम आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कुछ बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना है लेकिन खत नहीं लिखा उनको भी शुक्रिया, जिन्होंने खत लिखा उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे ईमेल्स एक प्रोग्राम के मैंने शायस्ता जी कभी नहीं पढ़े।
1: जी वही तो बात है कि हम कमाल की बात है, खुद आज जो प्रोग्राम में ये खत शामिल कर रहे हैं तो वक्त की कमी की वजह से हम पूरे पूरे खत जिनके नहीं पढ़ पाए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा राजेश्वरी जी, कुछ हमारे जो सामईन हैं उनको ये दिक्कत आ रही थी कि प्रोग्राम हमारे सही तरीके से उनको रेडियो सेट पे सुनाई नहीं दे रहे थे। इससे मुतालिक हमें ये दो खत मौसूल हुए। एक एराज अरमान जी का है, ये कहते हैं कि 3-4 दिनों से आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुनने को नहीं मिल पा रहे हैं, लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है। आप हजरात से मोदबाना गुजारिश है कि इस खराबी को दूर करने की मेहरबानी फरमाए।
0: अरमान साहब, आपको प्रोग्राम टेक्निकली ठीक से नहीं मिल पाया, मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं ट्रबल हो सकता है, कोई दिक्कत रही होगी, लेकिन अब तो बिल्कुल दुरुस्त है और प्रोग्राम आपको बाकायदा बिना किसी परेशानी के पहुंच रहा है, उसका बहुत शुक्रिया खत लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: और राजेश्वरी जी देखिए, एक प्रोग्राम हमारा गया था 31 जुलाई को, दास्तानी प्रेमचंद, इससे मुतालिक हमें ये खत मिला है। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और बाबू दिव्यांश का। आप कहते हैं कि हमें 31 जुलाई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में दी गई जानकारी लाजवाब लगी, धन्यवाद। और इसी से मुतालिक एक हमें खत और मौसूल हुआ है यासीन इब्ने उमर सीतापुर का, इन्होंने भी प्रेमचंद से मुतालिक दास्ताने प्रेमचंद प्रोग्राम की 31 जुलाई की तारीफ की है।
0: भाई आप सभी का बहुत शुक्रिया कि दास्ताने प्रेमचंद आपने सुना, और एक अलग किस्म का प्रोग्राम था। हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग शक्ल में अलग अलग तरीके से उस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएं। उनकी कहानी पर मबनी ये प्रोग्राम था, आपने सुना, आपका बहुत शुक्रिया।
1: और राजेश्वरी जी, 14 अगस्त को एक प्रोग्राम गया था जिसकी तारीफ हमें भेजी है उमर हनीफ साहब ने। ये लिखते हैं कि आला तरीन बेहद उम्दा प्रोग्राम लगा, डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा ने बेहद खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, उनकी गुफ्तगू में नुदरत कमाल की थी, बेहतरीन अंदाज बयां के लिए कल्बी मुबारकबाद के वो मुस्तहक हैं।
0: आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आकाशवाणी लखनऊ से जो नशर प्रोग्राम होते हैं खासतौर से उर्दू प्रोग्राम, और उसमें जितनी भी बातें आप तक पहुँचाई गयी आपको अच्छी लगी, उसका बहुत शुक्रिया।
1: और ये खत हमें मौसूल हुआ है जनाब इशरत सगीर साहब का, शाहजहाँपुर से। यौम आजादी और जमहूरियत हमारी जिम्मेदारी, इस प्रोग्राम को इन्होंने बेहद पसंद किया है, और इसके साथ ही इन्होंने भी डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा के सवालों और जवाबों का बहुत ईमानदारी से और मुनासिब अंदाज में जवाब दिए जाने की भी तारीफ की है, और यौम आजादी और जमहूरियत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम की भी बहुत तारीफ की है।
0: इरशाद सगीर साहब, आपने यौम आजादी पर जो खास प्रोग्राम सुना हमें खुशी हुई कि उसके बारे में आपने लिखा है, आपका बहुत शुक्रिया।
1: और देखिए मेरे हाथ में ये जो खत है ये है शायर खलील अहमद फरीदी साहब का, आज़ादी की राह पर इंकलाब की गूंज। ये प्रोग्राम 9 अगस्त को जो आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम से नशर हुआ था, ये इन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत, हुब्बुल वतनी से लबरेज, काबिल तारीफ प्रोग्राम था, सभी हजरात को मुबारकबाद इन्होंने पेश की है।
0: खलील अहमद फरीदी साहब आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम सुना और अपनी बात हम तक भेजी।
1: और ये खत हमें मौसूल हुआ है असगर बिलग्रामी साहब का, हरदोई से। आप लिखते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मौके पर उर्दू प्रोग्राम के तहत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम इंसानियत और मोहब्बत प्रोग्राम में सीरत पर नूरानी और इरफानी गुफ्तगू बज़ुबान वक्त सुनी, दिल नूर ईमान व फरहत व इनबिसात से भर गया, बेहतरीन तहरीर थी और पेश करने का अंदाज भी बेहतरीन था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब आसिफ इकबाल साहब, जनाब शमसुल आरफीन साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब को। और इसी प्रोग्राम से मुतालिक एक और खत हमें मौसूल हुआ है डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी, लखीमपुर खीरी से। आप लिखते हैं, आज बतारीख 27 अगस्त 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से उर्दू प्रोग्राम में जनाब आसिफ इकबाल साहब और जनाब शमसुल आरफीन साहब के जरिए पेश किया गया पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहसिन इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुतालिक प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती था। मैं इसके लिए आकाशवाणी लखनऊ, आसिफ इकबाल साहब और शमसुल आरफीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम सुना और अपनी बात हम तक भेजी।
1: اور راجیشوری جی، یہ آخری خط اس پروگرام کا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے جناب شمس الدین اظہر علی میاں کالونی رائے بریلی اتر پردیش سے۔ آپ کو 13 اگست 2026 کو نشر کی گئی ہر دل عزیز

0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए श्रीकांत वैश के ही स्वर में गाए इस गीत को।
1: जहां भी रहे

मुस्कुराए। श्रोताओं, स्वर थे श्रीकांत वैश्य के और आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

0: कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो गए हैं। लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। और वॉइस ऑफ प्रयागराज में स्वर और आलेख हैं मधु कुमार के, प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी जी की।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो चीज धीरे धीरे हमारे समाज से गायब होती जा रही है। कभी आपने गौर किया है कि अगर होम डिलीवरी होते समय कोई सामान 2 मिनट भी लेट हो जाए तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और अगर सोशल मीडिया पर 5 सेकंड का भी ऐड आ जाए तो उंगलियां तुरंत स्किप का बटन ढूंढने लगती हैं। व्हाट्सएप पर अगर ब्लू टिक दिख जाए और जवाब 10 सेकंड में ना आए तो मन बेचैन होने लगता है। जी हाँ, यही तो विषय है आज का, धीरज खोता ये संसार। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि हम सब जल्दी में हैं, इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल साइंस क्या है और ये हमारे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों पर क्या असर डाल रहा है। क्या हम इस इंस्टेंट लाइफ सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं? तो आइए बात करते हैं इसी विषय पर। धीरज की कमी अब किसी उम्र तक सीमित नहीं है, उसने हर पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। तो चलिए बात करते हैं पहले बच्चों की। बच्चों को अब खेल में नहीं बल्कि 15 सेकंड की रील्स और 2 स्पीड वीडियो में मजा आने लगा है। उनका दिमाग अब धीमी गति से चलने वाले वास्तविक दुनिया से बोर होने लगा है। उनको रियलिटी नहीं, उनको रील चाहिए। और जो हमारे आज की जनरेशन है, युवाओं में तो करियर, रिलेशनशिप और सफलता को लेकर एक अजीब सी होड़ लगी है। उन्हें सब कुछ अभी और इसी वक्त चाहिए। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे बुजुर्ग, जो कभी इस धैर्य की प्रतिमूर्ति माने जाते थे, आज इस तेज रफ्तार दुनिया में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनका धैर्य भी अब टूटने लगा है। दोस्तों, जब भी आप किसी ऐप को स्क्रॉल करते हैं या किसी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक छोटा सा शॉट रिलीज होता है, और जब यह बार बार होता है तो आपका ब्रेन धीमी प्रक्रिया करना, जैसे कि किताबें पढ़ना, लंबी बातचीत करना या इंतज़ार करना, इसको खतरा या बोरियत मानने लगता है। तो आपको समझ में आया, ये डोपामिन जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो भाई जल्दी किस बात की है, जब वक्त आएगा वो चीज़ भी हो जाती है। लेकिन फिर वही बात आकर ठहर जाती है कि जल्दी सभी को पसंद है। ठहराव से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। कौन वेट करे

गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम बात करते हैं इस अधैर्य या पेशेंस की कमी का हमारी सेहत और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है, जिससे बिना वजह थकान, माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर और नींद आने की बीमारी होती जा रही है। जब आपके पास धीरज नहीं होता ना, तो आप दूसरों की बात सुनने की क्षमता खो देते हैं। यही तो होता है कि छोटी छोटी बातों पर आजकल हिंसक गुस्सा पड़ता ही जा रहा है। और रिश्तों में अब तो कूलिंग पीरियड समाप्त हो गया है। छोटी सी बहस हुई नहीं कि लोग रिश्ता तोड़ने या ब्लॉक करने का फैसला तुरंत ले लेते हैं। समाज में अब दूसरों को माफ करने या उनकी गलती को समझने का धैर्य ही नहीं बचा है। एक गलती और व्यक्ति को पूरे डिजिटल समाज से खारिज कर दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही होता जा रहा है। बात वहीं पे आके रुक जाती है। क्यों खो रहे हैं आप ये धैर्य? कहाँ चला गया हमारा वो समाज जो बहुत ही शांत हुआ करता था? ना वहाँ पे कोई ऐसी हलचल थी, ना ही किसी का आपा खोता था। लेकिन आप कहेंगे ये बात तो गलत है, गुस्सा तो हर पीढ़ी में और हर समय से होता आया है। जी हाँ, होता आया है, पर आप याद कीजिए, क्या उस समय और इस समय में फर्क नहीं?

0: आ गया है। पहले क्या इतनी झुंझलाहट होती थी, इतना आदमी चीखता या चिल्लाता था, या इतना धैर्य खो के एक दूसरे पर हाथापाई कर देता था। आखिर हम क्यों इस उत्तेजना को गले लगा रहे हैं और अपने मन की शांति को खोते जा रहे हैं। एक छोटा सा नजारा याद कीजिए कि आप सड़क पर हैं और ट्रैफिक सिग्नल लाल है। आप अपनी गाड़ी में हों, बाइक में हों या पैदल खड़े हों, जैसे ही बत्ती लाल से पीली होती और फिर हरी होती है, अभी आधा सेकंड भी नहीं बीतता कि पीछे से हॉर्न की ऐसी बौछार शुरू हो जाती है मानो कोई युद्ध शुरू हो गया हो। गाड़ी के पीछे खड़े सज्जन को शायद 2 सेकंड की भी मोहलत मंजूर नहीं। बच्चे अपनी साइकिल को गाड़ियों के बीच से इसी तरह से निकालने की आपाधापी में हैं, और जो हमारे युवा हैं अपनी बाइक को जरा सी जगह मिलते ही कट मारने की होड़ में हैं, और गाड़ियों में बैठे बुजुर्ग भी लगातार हॉर्न पर हाथ दबाए बैठे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो 2 सेकंड बचाकर आखिर हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? क्या वो 2 सेकंड वाकई हमारी जिंदगी बदल देंगे या बात कुछ और है? सिग्नल तो बस दोस्तों एक उदाहरण था। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी दिनचर्या ऐसी छोटी छोटी जगहों से भरी पड़ी है। अगर आप किसी इमारत या मॉल में जाइए तो लिफ्ट का बटन एक बार दब चुका है, लाल बत्ती जल रही है, जिसका मतलब है कि लिफ्ट आ रही है, लेकिन फिर भी आने वाला हर व्यक्ति उस बटन को 3-4 बार तो दबाता ही रहता है। जैसे कई बार दबाने से लिफ्ट उड़कर नीचे आ जाएगी। ये क्या है? ये है हमारे अंदर की बेसब्री। और यही हाल रहता है बिलिंग काउंटर पे भी, किराने की दुकान हो या कोई बड़ा सुपरमार्केट हो। हम बिलिंग काउंटर की लाइन में खड़े रहते हैं, हमारी नज़रें साथ वाली लाइन पे टिक जाती हैं कि ये लाइन जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है, क्यों ना हम इसमें लग जाएं। अगर साथ वाली लाइन जरा भी तेज़ होती है ना तो हमारे चेहरे पे तनाव की लकीरें खिंच जाती हैं और हम कैशियर को ऐसे देखते हैं मानो वो जानबूझ के देर कर रहा हो। और ये हाल तो डॉक्टर के क्लिनिक में भी आपको दिख जाएगा, जहां हम अपनी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, लेकिन वहां आधा घंटा बैठकर इंतज़ार करना हमें बीमारी से भी बड़ा दर्द लगने लगता है। और बार बार घड़ी देखना, कंपाउंडर से झल्ला कर पूछना भाई हमारा नंबर कब आएगा, हम बहुत पहले से आए हुए हैं, ये दृश्य तो हर क्लिनिक में आम है। तो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले बात करते हैं एयरपोर्ट की। प्लेन अभी रनवे पर लैंड ही हुआ है, अभी पायलट ने सीट बेल्ट का साइन भी ऑफ नहीं किया, लेकिन लोग झटके से खड़े हो जाते हैं और अपना बैग निकालने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से 10 मिनट पहले ही लोग दरवाजे पर भीड़ लगा लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम कहीं छूट जाएं। ये जल्दी रहती है कि हम सबसे पहले अंदर चले जाएं, भले ही अंदर वाले बाहर आ पाएं या ना आ पाएं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये रहती है कि हमारा जो मोबाइल है ना, अगर कोई वेबसाइट 2 सेकंड में ना खुले या वीडियो पर जरा सा गोल घूम जाए तो हमें ऐसा गुस्सा आता है मानो दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान हमने झेल लिया। पर बात यह है कि आखिर ये अधीरता आ कहाँ से रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग, सबकी सहनशीलता में इतनी कमी हो गई है? दोस्तों इस विषय पर प्रयागराज निवासी संजय मल्होत्रा जी के क्या विचार हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं।
1: मैं आज के समय में धीरज खोते लोग जैसे विषय पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज का समय कंप्यूटर युग है। गूगल ने सब कुछ इतना सुलभ बना दिया है कि किसी भी जानकारी के लिए समय नहीं लगाना पड़ता, गूगल से तुरंत उत्तर मिल जाता है। इसी तरह से खासकर बड़े शहरों में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। आज की पीढ़ी के लिए यहाँ किसी भी तरह की सेवा तुरंत प्रदान करती हैं। कुछ भी ज़रूरत का सामान मंगाना हो आपके दरवाजे पर 5 मिनट में वो सामान हाजिर कर देती हैं। कहीं भी जाना हो टैक्सी सर्विसेज 5 मिनट पर दरवाजे पर खड़ी होती हैं। प्रतीक्षा या इंतजार शब्द के माने समाप्त कर दिए हैं। व्यक्ति इतना अधीर हो चुका है कि उसको प्रतीक्षा बड़ी खलती है। जीवन

0: सुलभ तो जरूर हो गया है, किंतु अधीरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यक्ति धीरज खोता जा रहा है। भौतिक सुखों की तत्परता से सुलभता के कारण पारस्परिक संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए आज के समय में वैयक्तिक संबंधों में शीघ्र ही दरार पड़ जाती है, क्योंकि रिश्तों को सींचने में समय लगता है तथा समय के लिए धीरज परम आवश्यक होता है।
1: और अब सुनिए प्रयागराज से पुष्पा पांडे जी के विचार।
2: मैं पुष्पा पांडे प्रयागराज से। आज के समय में धीरज खोते लोग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का युग तेज गति का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने हर कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाए। इंतजार करने की क्षमता को कम कर दिया। लोगों के किसी काम में देरी हो तो जल्द ही परेशान और निराश हो जाते हैं। जैसे कोई संदेश देर से आए, इंटरनेट धीरे चले या सफलता में देरी हो। धीरज केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की योग्यता है। जो व्यक्ति धीरज रखता है वही जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। एक व्यक्ति लगातार परिश्रम और धीरज से ही अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। मेरे विचार से हमें स्वयं धीरज को अपने जीवन का महत्वपूर्ण गुण बनाते हुए अपने बच्चों में भी इस गुण का विकास करना चाहिए। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और नियमित परिश्रम से हम धीरज विकसित कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि धीरज ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।

दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है। खाना 10-20 मिनट में ही घर में पहुंच जाता है और सामान भी तुरंत डिलीवर हो जाता है। जब हमको हर चीज तुरंत मिलने लगती है तो हमारे इस दिमाग ने इंतजार करना तो जैसे भुला ही दिया है। दिमाग सोचने लगा है, अगर कोई चीज तुरंत नहीं मिल रही तो यानी कुछ तो गड़बड़ है। आधुनिक जीवन में हमने अपने हर मिनट को काम से भर दिया है, हमारे पास खाली बैठने का समय ही नहीं है। इसलिए जब भी हमें 2 मिनट का इंतजार करना पड़ता है तो हम यही कहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब हम सड़क या जिंदगी में सबको भागते देखते हैं तो हमारे अंदर एक अनजाना डर बैठ जाता है, अगर मैं स्लो हुआ, अगर मैं धीमा पड़ा तो पीछे रह जाऊंगा। और यही हड़बड़ी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हर जगह फैल चुकी है। तो दोस्तों, देखिए, इस बेसब्री ने हमें क्या खुश किया है? हॉर्न बजाकर 2 सेकंड पहले निकल जाने से क्या हमें शांति मिली है? नहीं, उल्टा हमारा ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य तो एक ताकत है, एक अंदरूनी शक्ति है, एक अंदरूनी शांति है। तो क्यों ना इस विषय में हम ये भी शामिल कर दें कि धैर्य को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाएं। तो भाई, अगली बार जब आप रेड लाइट पर रुके और हरी बत्ती होने पर पीछे वाला हॉर्न बजाए तो तुरंत गुस्सा होने या हड़बड़ाने की बजाय एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए, ये 30 सेकंड का रेड लाइट आपके लिए एक छोटा सा विश्राम है, एक छोटा सा पॉज है। अपने विचारों को शांत कीजिए और इंतजार के प्रति अपना नजरिया बदलिए। इंतजार को अपनी सजा मत समझिए। जिंदगी में तेजी से पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना सही और सुरक्षित पहुंचना। चाहे सड़क हो या करियर, हर चीज का एक ही समय होता है। और ये याद रखिए, हमारी जिंदगी का स्वाद धैर्य से ही आता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि बच्चों के सामने हमें मिसाल बनना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। अगर हम उनके सामने शांत और संयम का बर्ताव रखेंगे ना, तो वो उसको कॉपी जरूर करेंगे। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जब भी घर लौटे और रस्ते में सिग्नल हरा हो तो आगे वाले को 2 सेकंड का समय दीजिएगा। अगर कोई लाइन में आगे निकल जाए तो एक मुस्कुराहट देके उसे जाने दीजिए। विश्वास मानिए, उस 2 सेकंड में आप कुछ खोएंगे नहीं बल्कि अपने मन की शांति को पा लेंगे। कैसा लगा आज का आपको कार्यक्रम, ये हमें जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा नंबर है 800-492-6250। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, धीरे धीरे चलिए। और समय को भी कहिए, समय तू धीरे धीरे चल। तो दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। स्वर और आलेख था मधु कुमार जी का और प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी जी की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं रागनी चंद्रा, और सबसे पहले रागनी चंद्रा के स्वर में हम आपको सुनवाते हैं देवी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और आज की कलाकार हैं रागनी चंद्रा, और अब इनके स्वर में हम आपको सुनवाते हैं कजरी गीत।

श्रोताओं, एक और कजरी हम आपको सुनवाते हैं। स्वर है रागिनी चंद्रा का। आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से।

इसी बनारसी कजरी गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, सुरों के आंगन में आप सभी संगीत प्रेमियों का बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना श्रीवास्तव और आज के संगीतमय कार्यक्रम में हम सजाने जा रहे हैं उर्दू शायरी और हिंदी सिनेमा के बेहद खास मकबूल और संजीदा नगमा निगार के नाम, जिन्हें दुनिया नक्श लालपुरी के नाम से जानती है।

श्रोताओं, लायलपुर की सरजमी पर 24 फरवरी सन 1928 को जन्मे जसवंत राय शर्मा जब मुंबई आए तो उन्होंने अपना नाम रखा नक्श लायलपुरी। नक्श का मतलब होता है छाप या निशान। और सच मानिए, उन्होंने अपने लिखे गीतों से भारतीय सुगम संगीत और हिंदी फिल्म जगत पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो जमाने के गुजरने के बाद भी धुंधली नहीं हुई।

श्रोताओं, नक्शले अलपुरी साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जज्बातों को बिना किसी भारी भरकम शब्द जाल के सीधे दिल में उतार देने की कला जानते थे। उन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, चाहे वो मदन मोहन जी हों, जयदेव जी हों, खयाम साहब हों या बप्पी लहरी। लेकिन मदन मोहन और खयाम साहब के साथ उनकी जोड़ी ने जो नगमे तराशे, वो संगीत की दुनिया के नायाब हीरे बन गए। जब भी टूटे हुए दिल की टीस और प्यार के एहसास को लफ्ज़ देने की बात आती है तो नक्श साहब का कलम बेहद संजीदगी से चलता है।

0: श्रोताओं, नक्श साहब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने टेलीविजन के शुरुआती दौर में मशहूर धारावाहिकों जैसे श्री कृष्णा और रामायण के लिए भी यादगार गीत और शीर्षक गीत लिखे। लेकिन जब बात 60 और 70 के दशक के क्लासिक सिनेमा की होती है तो उनके लिखे गीतों की ताजगी आज भी बरकरार है। आइए अब रुख करते हैं साल 1977 की फिल्म घरौंदा की तरफ। जयदेव जी का संगीत, भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाज और नक्श साहब की कलम से निकला ये नगमा जिंदगी की उधेड़ बुन और सपनों के आशियाने की कहानी बयां करता है।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

जी हाँ श्रोताओ, शहर की भागदौड़ के बीच दो दिलों के आशियाना तलाशने की ये खूबसूरत कश्मकश आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी उस दौर में थी। नक्शलालपुरी साहब का दायरा बहुत व्यापक था। उन्होंने जितने दर्द भरे नगमे लिखे उतने ही रोमानी और चुलबुले गीत भी रचे। संगीतकार खयाम साहब के साथ उनकी नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को कई अनमोल तोहफे दिए।

थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमां, बस एक खरौंदा रहे। ख्वाहिशें कितनी छोटी और कितनी पाकीज़ा हो सकती हैं, ये नक्श साहब के लिखे गीतों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। 22 जनवरी सन 2017 को नक्श लालपुरी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन अपने पीछे गीतों, गज़लों और नज़मों का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो ताउम्र संगीत प्रेमियों के दिलों को गुदगुदाता और बहलाता रहेगा।

श्रोताओं, चलते चलते नक साहब का ही लिखा एक शेर याद आता है। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक जरा सी भूल का इतना लंबा किस्सा देखूं। उम्मीद है

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज के कलाकार थे गीतकार नक्शलयालपुरी। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं। और अब आतिफ असलम को सुनिए फिल्म लैला मजनू में।

अभी आप दर्शन रावल को सुन रहे थे फिल्म धड़क 2 में, और अब विशाल मिश्रा को सुनिए फिल्म सैयारा में।

कार्यक्रम के अंत में अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य की रचना। फिल्म का नाम है केदारनाथ और आवाज देवनेगी की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आज सुनिएगा गुरु प्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन और रात में 10:30 आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा दिन में 12:30 पर।

दिन में 1:15 पर बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनेंगी, विशेष बच्चों को मुख्य धारा में कैसे शामिल करें। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर।

युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर सृष्टि सोमवंशी की वार्ता सुनेंगे, विलुप्त होती लोक संस्कृतियां और युवाओं की जिम्मेदारी। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में रागिनी चंद्रा के गाए लोकगीत सुनेंगे और अखिलेश कुमार की वार्ता सुनेंगे, भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन। कार्यक्रम के अंत में लोकभाषा कविता पाठ सुनाएंगे अनूप कुमार उपाध्याय।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी संगीता राय। गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशा आप सुनेंगे रात में 9:30 पर।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए गुरुप्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन। प्रस्तुत है वॉयलिन पर राग शुद्ध सारंग, कलाकार गुरुप्रसाद शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप कुमार चक्रवर्ती।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गुरुप्रसाद शर्मा से वॉयलिन पर राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संदीप कुमार चक्रवर्ती।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम करने जा रहे हैं। इस गीत की फरमाइश हमें की है पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गंगादीप, आरजू और गुड्डू ने। उड़ीसा से विजय, विपिन, सुनहली, ममता, पूर्णिमा, बॉबी, आप सब सुनना चाहते हैं। कटी पतंग फिल्म का ये गाना आवाज है किशोर कुमार की।

और कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां याद आ रही हैं। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश हमें की है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, अमृत कौर, गुरवंश सिंह और सीटी दीवाना। आप सब सुनना चाहते हैं जुदाई फिल्म का ये गीत।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। और अगला गीत आ चुका है, 1966 में बनी थी फिल्म ये रात फिर ना आएगी। इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था, आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम जी।

गी। इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था, आवाज़ें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम जी की, और इस गीत की फरमाइश हमें की है झारखंड से शिवा गोप, प्रेमा गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली। और इसी गीत की फरमाइश हमें कर रहे हैं चकिया घरारा से मोहम्मद अय्यूब, राज बहादुर कनौजिया और मोहम्मद अबरार, मोहम्मद आज़ाद और इनके बहुत सारे मित्र। तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

अगले गीत की फरमाइश हमें की है श्री राधा सिठी मथुरा से, भजन लाल जी, राजू लवानिया, शारदा प्रसाद प्रजापति, चौधरी महेंद्र सिंह, यातराम, नरेश प्रजापति, नेत्रपाल राय, वीरेंद्र कुमार। और इस गीत की फरमाइश हमें जबलपुर से भी आ गई है, और ये हैं जबलपुर से अशोक कुमार सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प, कृष्ण सिंह। आप सब सुनना चाहते हैं वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

अभी आप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमरीका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन आज राजधानी बिश्केश में भारत के दोस्त के साथ बातचीत की। योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के साथ काम करने वाले चार वफूद इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने बिश्केश के महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आजम आज शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 137वें एडिशन में कल गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में मुनाकिद किए जाने वाले मिशन शक्ति सेट का जिक्र किया। स्पेस किड्स इंडिया के सीईओ ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम के जरिए मिशन शक्ति सेट के जिक्र की तारीफ की है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि नमन आपको। आपने हमारे मिशन के बारे में अपने मन की बात में जिक्र किया, हमारे लिए भर उड़ के आए। 2 साल से हम इस मिशन के लिए काम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि काश ये बात प्रधानमंत्री जी के कान तक जाए और वो दिन हमें साकार हुआ। बहुत धन्यवाद मिशन शक्ति सच आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर एक बेहतरीन मुतनज़िम और आलिम थे जिन्होंने अवामी जिंदगी में अपने दहाइयों के तवील सफर के दौरान मुल्क और उसके इकदार के मुतजलजल वाबस्तगी की मिसाल दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि कौम के तई उनकी लगन और अवामी जिंदगी में उनकी दरीना शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियासत के लोगों से अपील की है कि वह जन्माष्टमी के मौके पर अपने विरसे के तहफ़ समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने और एक तरफा याफ्ता और शानदार उत्तर प्रदेश की तामीर का अहद करें। वजीर आला ने लिखा कि श्री कृष्ण की जिंदगी हमें फलाही हुक्मरानी की बुनियादी रूह से भी मुतासर करती है। आज इसी जज्बे के साथ हुकूमत मुआशरे के आखिरी मुकाम पर खड़े शख्स की जिंदगी में इज्जत और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के दौरे पर हैं। वो रुपेडिया में बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड के दरमियान नई तामीर शुदा और इलेक्ट्रिक रेल लाइन का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वाराणसी जाने वाली ट्रेन को नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नई रेल लाइन के खुलने से बहराइच और सरहदी इलाकों के लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होने की उम्मीद है और नेपाल की सरहद से मुतालिक तजारती और इकतसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होने के इम्कान हैं। समाजी बहबूद के वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज असीम अरुण ने बताया कि इस साल विमुक्त जाति दिवस के लिए रियासती सतह का अहम प्रोग्राम आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मुनक्किद होगा। आजादाना खाना बदोश और नीम खाना बदोश जातों की तारीखी अहमियत और हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ जिले सतह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। वजीर असीम अरुण ने कहा कि आजादी की जद्दोजहद में आजाद जातों की शराकत में बेमिसाल रही है और ये दिन उनकी तारीखी जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश करने उन्हें कौमी धारे में जम करने के लिए फलाही स्कीमों के बारे में मालूम फैलाने का एक अहम मौका है। हरियाणवी गुलकार अंकित बालियान के कत्ल केस में फरार 2 मुजरिम मासूम शामली में पुलिस मुकाबले में मारे गए। इन दोनों निशानाबाजों पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस उनकी तलाश में थी। तसादुम में 2 कांस्टेबल जख्मी भी हुए हैं। हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर बदामन से दिल्ली जाने वाली एक कार संभोली थाना इलाके के हाजीपुर गांव के करीब बेकाबू होकर उलट गई। 4 अफराद मौके पर ही जां बहक हो गए जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची। लाशों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जख्मी नौजवान अस्पताल में जेर इलाज है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में सड़क हादसे पर 4 लोगों की मौत पर गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतलका जिले के अफसरान को मुतासरीन को रिलीफ फराहम कराने की हिदायत की। ने यह भी हुक्म दिया कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और उनसे राबता किया जाए। वजीर आला ने जख्मियों के जल्द सेहतियाबी की भी ख्वाहिश की है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों के सतह में इजाफा हो रहा है। बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर

0: पर बह रही है। चित्रकूट में दरियाए मंदाकिनी के पानी की सतह बुलंद होने के बाद राहत और बचाव के काम जंगी बुनियादों पर जारी है। वाराणसी जिला इंतजामिया ने गंगा और वरुणा नदियों के पानी की सतह मुमकिन इजाफे के पेशी नजर 61 फील्ड फ्लड रिलीफ कैंप, 121 फ्लड पुलिस और 197 कश्तियों का इंतजाम किया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: आकाशवाणी के इस आत्मीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी शैल
1: और मैं अनीता। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: भाई भाई देखो अनीता, मौसम की रिमझिम फुहारे, आसमान पर छाए काले काले बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, झूलों की पेंगे, हाथों में सजी मेहंदी और मेहंदी की महक, है ना, लोकगीतों की मधुरतान, सजी हुई चूड़ियाँ, रंग बिरंगे परिधान और पेड़ों पर पड़े झूले, मानो प्रकृति स्वयं श्रृंगार कर उत्सव के लिए स्वागत में खड़ी हो। जब ये सब एक साथ मिलते हैं ना, तो वातावरण में उत्सव का रंग घुल जाता है।
1: और वातावरण में घुलती कजरी की मधुर तान, यही तो है मौसम की खूबसूरती। और इसी खूबसूरती में लोग जीवन की मिठास घुलता है, हमारा कजरी तीज का पर्व।
0: बिल्कुल
1: बहनों, कजरी तीज केवल एक धार्मिक या पारंपरिक पर्व ही नहीं, बल्कि ये हमारे लोक जीवन में मिलने जुलने, गीत संगीत, खुशियां बांटने, मन को हल्का करने का और स्त्री मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला खूबसूरत अवसर भी है। कजरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये केवल गीत नहीं, भावनाओं की भाषा है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन भी मौसम की ही तरह है। कभी बादल घने होते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी मन में उमंगें होती हैं और कभी उदासी। लेकिन जैसे सावन की बारिश धरती को फिर से हरा कर देती है, वैसे ही हमें जीवन में नई आशा के साथ आगे बढ़ना भी सीखना चाहिए। और वैसे भी है, देखो, हम जीवन में एक नई आशा के साथ आगे बढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं। कजरी तीज के अवसर पर देखो, पूजा अर्चना के साथ साथ परिवार और सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाने की भी परंपरा रही है। ये पर्व हमें अपनी लोक परंपराओं से जुड़ने और अगली पीढ़ी तक अपनी सांस्कृतिक विरासत पहुंचाने का भी संदेश देती है।
1: और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे त्योहारों में थोड़ा ठहरना सिखाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन से जरा हटकर परिवार के साथ बैठना, मिलकर हंसना, लोकगीत सुनना और अपनी परंपराओं को महसूस करना, यही तो त्योहारों की असली खूबसूरती है। तो आइए, इस कजरी तीज पर हम केवल परंपराओं को निभाए ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे प्रेम, अपनापन और सामूहिक खुशी के संदेश को भी समझें। सावन की हर बूंद हमारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, हर कजरी की तान मन में मिठास घोले।
0: और देखो, हर रिश्ते में प्रेम और संवाद की नई टेंगे भी लगे, है ना। सावन के रिमझिम फुहारे जब धरती को भिगोती है, पेड़ों की डालियां अपने आप झूले पड़ जाते हैं और वातावरण में कजरी की मधुर तान गूंजती है, तो मन जैसे महक उठता है और कहता है, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा मुस्कुराइए और जिंदगी को महसूस कीजिए कुछ इस तरह।

0: भाई हमने तो मौसम का असर बहुत अच्छे से छम छम करके ले लिया। और भाई बात कर रहे थे हम कजरी तीज की, तो सावन के इसी उल्लास और उमंग से जुड़ा है हमारा पारंपरिक पर्व कजरी तीज। लेकिन आज हम कजरी तीज को सिर्फ एक त्यौहार के रूप में नहीं बल्कि तनाव मुक्त जीवन जीने की एक सुंदर सीख के रूप में भी देखेंगे।
1: आज की ज़िंदगी में काम का दबाव, जिम्मेदारियां, बदलती जीवन शैली और हर समय आगे निकलने की होड़ हमारे मन को लगातार व्यस्त रखती है। ऐसे में सावन का ये पर्व हमें एक बहुत ज़रूरी संदेश देता है। ज़िंदगी केवल जिम्मेदारियां पूरी करने का नाम नहीं बल्कि खुशियों को महसूस करने का नाम भी है। कजरी तीज पर महिलाएं और परिवारजन मिलकर गीत गाते हैं, झूले झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। दरअसल अपनों के साथ बिताया हुआ समय मन के लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो नीता। देखो कजरी गीतों की परंपरा में मन की भावनाओं को स्वर देने की खूबसूरत कला दिखाई देती है। खुशी हो तो गीत, याद हो तो गीत, मन में कोई बात हो तो भी गीत, यानी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना, और यही तनाव मुक्त जीवन की पहली सीढ़ी है। अपने मन की बात को पहचानना और उसे व्यक्त करना। कभी कभी हम परेशान होते हैं लेकिन किसी से कहते नहीं, कभी थक जाते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, कभी मन को आराम चाहिए होता है लेकिन हम खुद को आराम करने की अनुमति ही नहीं देते। कजरी तीज हमें याद दिला

0: लिए कि थोड़ा रुकना भी जरूरी है। जैसे सावन की बारिश तपती धरती को राहत देती है, वैसे ही थोड़ी सी खुशी संगीत, प्रकृति और अपनों के साथ हमारे मन को राहत भी देती है।
1: और कजरी के लोकगीतों में विरह है, प्रेम है, इंतजार है, प्रकृति है और भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति भी है। यही हमें जीवन की सबसे पहली कला सिखाती है, अपनी भावनाओं को महसूस करना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। मन उदास है तो मुस्कराने का दिखावा क्यों, है ना?
0: बिल्कुल।
1: थक गए हैं तो थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है। किसी अपने की याद आ रही है तो उससे बात कर लेना भी जीवन की खूबसूरती है।
0: देखो भाई, कजरी तीज हमें रिश्तों की गर्माहट का भी तो एहसास कराती है। आज जब जीवन की रफ्तार तेज हो गई है, हमारे पास साधन तो बहुत है लेकिन कभी कभी संवाद के लिए समय कम पड़ जाता है, तो इस त्यौहार पर एक छोटा सा संकल्प क्यों ना ले।
1: तो बहनों, संकल्प ये कि अपनों से बात करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे और रिश्तों में मन की दूरी को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, समझने और समझे जाने से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जीवन जीने की कला शायद यही है, जो मिला उसके लिए आभार, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, जो बीत गया उससे सीख और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद।
0: बहुत सही बात कह रही हूँ भाई। देखो, ये मौसम हमें सिखाता है कि सूखी धरती फिर भी हरी हो सकती है, तो अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किलों के बादल घिर आए तो घबराइए मत, हो सकता है इन्हीं बादलों के पीछे आपके जीवन की नई हरियाली आपका इंतज़ार कर रही हो। तो आइए हम इस कजरी तीज पर एक केवल हाथों में मेहंदी ही नहीं सजाएं बल्कि अपने जीवन को भी सजाएं।
1: तो पहला है, समय निकालिए। हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप केवल अपने लिए हो। संगीत सुने, किताबें पढ़ें, प्रकृति को देखें या फिर शांत बैठे रहें।
0: दूसरी बात यह कि मन की बात साझा कीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी परेशानी कहना कमजोरी नहीं है, संवाद मन का बोझ हल्का कर सकता है।
1: और तीसरा, त्योहारों को केवल औपचारिकता ना बनाएं, परिवार के साथ बैठें, हंसे, लोकगीत सुने और अपनी परंपराओं से जुड़ें।
0: और चौथी बात, हर बात को लेकर खुद पर दबाव ना डालें। हर काम बिल्कुल सही हो ये जरूरी नहीं, अपनी क्षमताओं को समझना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना भी समझदारी है।
1: और पांचवा, प्रकृति के करीब रहिए। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना मन को कितना सुकून दे सकता है। साथ ही जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से जिएंगे, क्योंकि तनाव मुक्त जीवन का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई परेशानी ना हो, बल्कि इसका अर्थ है परेशानियों के बीच भी खुद को संभालना, खुशियों के लिए जगह बनाना और ज़रूरत पड़ने पर अपनों का हाथ थाम लेना।
0: सावन की फुहारे हमें भिगोएं, कजरी की तान मन को गुदगुदाए, रिश्तों में अपनापन बढ़े और जीवन में सुकून की हरियाली छाए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आप सभी को भाई कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की भी जरूरत है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब हम अपनी परेशानियों को मन के भीतर दबाए रखते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, अपनी भावनाओं को शब्द दीजिए। कभी कभी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन किसी से बात करने भर से मन का बोझ हल्का हो जाता है। बातचीत रिश्तों को भी मजबूत करती है और मन को भी। हर बात को अपने ऊपर ना लें, हमारा व्यवहार है, हमारी मेहनत और हमारा दृष्टिकोण।
0: और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए। खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कभी परिवार के साथ बैठकर दो पल हंस लेने में, साथ मिल चाय पी लेने में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी बारिश की पहली बूंदों में, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक में और कभी किसी की मदद कर देने में।
1: और कजरी तीज भी तो हमें यही सिखाती है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से जीना। इसीलिए जिंदगी को केवल बड़ी मंजिलों के भरोसे मत छोड़िए, रास्ते में मिलने वाली खुशियों को भी जी भर कर जी लीजिए।
0: कजरी की तान में केवल सावन की मिठास नहीं बल्कि मन को जोड़ने वाली एक शक्ति भी है। लोकगीतों की सामूहिकता हमें अकेलेपन से बाहर लाती है। त्यौहार हमें परिवार और समाज से भी जोड़ते हैं और जब हम मिलकर हंसते हैं, गाते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं तो मन का तनाव भी कुछ कम महसूस होता है। इसीलिए तो त्यौहारों को केवल रस्म की तरह नहीं बल्कि मानसिक सुकून

0: सुकून और सामाजिक जुड़ाव के अवसर की तरह भी देखिए, है ना।
1: और इस तीज पर अपने मन से एक वादा कीजिए कि हम हर बात की चिंता नहीं करेंगे, मैं अपनी भावनाओं को समझूंगी, जरूरत पड़ने पर अपनों से बात करूंगी, अपने शरीर और मन को आराम दूंगी और जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करूंगी। क्योंकि तनाव मुक्त जीवन का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, बल्कि इसका अर्थ है परेशानियों के बीच भी स्वयं को संभालने की कला।
0: तो आइए इस कजरी तीज पर झूलों की पींगों के साथ मन को भी नई उड़ान दें, चिंताओं को थोड़ा विराम दें, अपनों के साथ मुस्कुराएं, मन की बात कहें और जीवन के हर छोटे सुख को महसूस करें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस जरूरत है उसे भागते हुए

0: शैल दीदी, वाकई में मौसम बदल रहा है और हम लोग मौसम के अनुसार ही चल रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम है ना, आज का एक ऐसी विषय है जो कि केवल शिक्षा या समाज की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संवेदनशीलता और हमारी सोच से भी जुड़ा हुआ है।
1: और देखो, हर बच्चा अपनी एक अलग पहचान लेकर इस दुनिया में आता है। किसी की सीखने की गति अलग हो सकती है, किसी की अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, तो किसी को अपने दैनिक कार्यों में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद हर बच्चे में सीखने, आगे बढ़ने, सपने देखने और अपनी पहचान बनाने की क्षमता होती है।
0: और सवाल ये है कि क्या हमारा परिवार, हमारा विद्यालय और हमारा समाज उसे वो अवसर दे रहा है जिसकी वह हकदार है। इसी विषय पर और जानकारी लेते हुए इस बातचीत के जरिए, ये बातचीत है विशेष, बच्चों के को मुख्य धारा से कैसे शामिल करें, डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से नेहा गुप्ता की बातचीत। रिपीट है, फिर से सुनते हैं।
2: श्रोताओं, हमारे समाज में ऊपर वाले ने इंसानों के कई रूप बनाए ना। कुछ बहुत तेज हैं, कुछ सामान्य भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमें साथ लेकर चलना है। उनमें असाधारण बुद्धि है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हम उनको ऐसा क्या दे दें कि उनका रास्ता हमारे रास्ते से मिल जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उनको यूं ही अलग थलग छोड़ देते हैं। जो घर में स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना जी हैं। इन्होंने स्पेशल एबल्ड बच्चों पर बहुत काम किया है, इंटेंस वर्क है और एक नई दृष्टि दी है इस कार्य को। और आज ही बातचीत के दौरान अभी उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसे बच्चों को इंक्लूजन करें, अपने साथ लिए चलें। क्यों हम अलग मानते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों साथ लेकर चले। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना आपका।
3: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। मैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर प्राप्ति हूँ। मैं हर उस बच्चे के साथ, हर उस परिवार के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ काम करती हूँ जो सामान्य से कुछ अलग विकास कर रहे हैं। सामान्य से अलग विकास करने के कारण सशक्त समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं, आवाज पे पलटता नहीं, शायद समझता नहीं, जिसके कारण हम उसे 3 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। यहीं से शुरू हो जाता है इंक्लूड ना होने का जर्नी। जो बच्चा 3 वर्ष के उम्र में स्कूल ही नहीं गया, वो फिर आगे जाके किस दिशा में जाएगा? क्योंकि हम स्कूल जाके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और यदि मान लीजिए किन्हीं कारणवश हम स्कूल नहीं जा रहे, तो हम घर में बहुत कुछ सीखते हैं।
2: जी
3: मैंने देखा है कि ऐसा बच्चा जिसको स्पेशल नीड्स है, वो अगर स्कूल नहीं जा रहा है, यानी कि इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो घर में भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं सीख पा रहा है।
2: ये सही बात कही आपने डॉक्टर साहब। मैंने एक और चीज देखी है कि जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई मुसीबत है
3: बिल्कुल,
2: और उन्होंने कोई बुरे कर्म किए हैं, और कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर चुके हैं माँ बाप। मैं ऐसे माँ बाप को भी जानती हूँ कि बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। कुछ लोग जब कोई आता है तो उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, अलग रूम में रख देते हैं।
3: जी, छुपाते हैं,
2: हाँ
3: बताते नहीं है कि ये हमारा हिस्सा है। तो
2: हाँ
3: मैम, मैं हर ऐसे बच्चे और परिवार के साथ काम करती हूँ। मेरे साथ काम करने में एक बहुत बड़ी टीम है, स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, हम सब इकट्ठा मिलके इन बच्चों के साथ, इन परिवारों के साथ काम करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना डिफाइंड रोल है। और अब मेरी इस इंक्लूजन मुहिम के चलते बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको ज्वाइन इन कर लिया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ इन बच्चों को इतना नहीं है कि हम इनके डायग्नोसिस को सिर्फ एक्सेप्ट कर लें,

0: उनको एक रिस्पेक्टेबल एंड कंटेंटेड लिविंग दिलाना, यानी कि सम्मानजनक एवं संतोषजनक जीवन दिलाना, ये हमारा लक्ष्य है।
1: लोगों के दिमाग में ये है डॉक्टर साहब कि ऐसे बच्चे जो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या आपकी बातों से सरोकार नहीं रखते या उनकी दृष्टि ही अलग है, वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं, एक सामान्य जीवन जी सकते हैं?
0: बिल्कुल जी सकते हैं मैम, इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ आपके सामने बैठ के बात करने का, वो यही है कि ये बात दूर दराज तक पहुँचे और तीन मुख्य चीज़ों पर काम किया जाए। ए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी जल्दी से जल्दी चिन्हित कर लेना। बी, अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी चिन्हित कर लेंगे उतनी जल्दी उस पर इंटरवीन कर लेंगे। एंड सी, अर्ली इंटीग्रेशन, यानी कि समाज की मुख्य धारा से जल्द जोड़ देना।
1: डॉक्टर साहब, ये कहना थोड़ा आसान लगता है क्योंकि जिनके ऊपर पड़ती है और आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि जब मुख्य धारा से जोड़ने की बात आती है तो वहीं पे कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब बस छोड़ो, रहने दो, बहुत मेहनत पड़ रही है। तो इस जर्नी को कैसे शुरू किया जाए और आसान कैसे बनाए रखा जाए?
0: आपको पता है मैम, 15 साल के मेरे इस प्रोफेशनल करियर में मैंने ना अब इन्हें केसेस नहीं कॉजेस समझने का दृढ़ संकल्प बना लिया है कि हर बच्चा मेरे पास एक कॉज बन के आया है कुछ करने के लिए। तो जैसे ही जहाँ भी जिस भी माध्यम से मुझे मेरे सामने ऐसा परिवार या ऐसा बच्चा आता है, सबसे पहले किया जाता है उसका एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। असेसमेंट में ये पता किया जाता है कि उसका विकासात्मक गुणांक कितना है, यानी कि शारीरिक उम्र के अनुसार मानसिक उम्र कितनी है, सामाजिक उम्र कितनी है। जब ये गुणांक हम लोगों को पता चल जाता है, यूजुअली ये असेसमेंट्स एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं और स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स के माध्यम से इसको किया जाता है। जैसे ही हमें ये गुणांक पता चल जाता है तो हमें पता लग जाता है कि क्या गड्ढे हैं जिनको हमें भरना शुरू करना है और किन गड्ढों को किस उम्र में भरना संभव है। जाहिर सी बात है, हम जितनी जल्दी इसको शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम गड्ढों को भर पाएंगे। असेसमेंट के बाद, फ्लॉज एंड फॉलेज पता करने के बाद, लिमिटेशंस पता करने के बाद, एक थेरेप्यूटिक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसमें बच्चे की नीड के अनुसार यदि उसको शारीरिक विषमताएं हैं तो उसको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करी जाती है। यदि उसको पार्टिसिपेशन रिलेटेड चैलेंजेस हैं, यदि उसको समझने में चैलेंज है तो उसको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। कहने का मतलब है बच्चा सामान्य तरीके से नहीं सीख रहा तो उसे उस तरीके से सिखाएंगे जिस तरीके से वो सीख सकता है।
1: मतलब सीखने की कैपेबिलिटी होती है?
0: बिल्कुल होती है मैम। क्या ऐसा कोई बीज है जिसको यदि हम खाद दें, पानी दें, मिट्टी दें, सौर ऊर्जा दें और एक जिम्मेदार माली दें तो वो फलदार फूलदार वृक्ष ना बन पाए? है कोई ऐसा बीज?
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बातें, पिछली बार भी जब आपसे बातचीत हो रही, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। लगता है कि जो आपका स्वप्न है उस स्वप्न में हम सब शामिल हो जाएं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैंने थोड़ी बहुत ऑब्जर्व की है, जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि जो शरीर है उनका थोड़ा भारी हो जाता है, उनके संभाल में नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे ट्रेन किया जा सकता है?
0: मैम, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। आपके सभी सवालों का जवाब है जल्दी से जल्दी चिन्हित कर लेना, पहला जो मैंने पॉइंटर बोला। जब हम जल्दी से जल्दी चिन्हित कर पाते हैं ना, तो हम उनको, वजन क्यों बढ़ता है जब हम अपनी शरीर से वो काम ही नहीं लेते जो हमें लेना चाहिए, राइट? हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, हम समय समय पे खा तो रहे हैं लेकिन हम उस ऊर्जा को कहीं डिवर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो जब हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा कि इसको कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके कारण ये वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो इसे इस उम्र में, इस मानसिक अवस्था में करना चाहिए, तो हम उसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे ना कि ठीक है, अगर ए नहीं कर पा रहे तो बी करें, कोई बात नहीं, पढ़ नहीं पा रहे तो सिलाई कढ़ाई गुनाई बुनाई जो कुछ भी करा सकते हैं। कहने का मतलब है ये हाथ अगर मिले हैं काम करने के लिए तो हम सिर्फ मोबाइल चलाने के अलावा क्या कर सकते हैं?
1: माय गॉड, बहुत सारे लिखने पढ़ने,
0: राइट,
1: सिलाई बुनाई
0: और
1: कुछ सामान उठाना है, रखना है, तह लगाना है।
0: मैम स्पेशल नीड्स में ही नहीं, ये तो सब पे अप्लाई होता है ना, सब पे अप्लाई होता है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके पास आज सुबह उठे तो आज के पॉइंटर्स नहीं है कि आज मुझे कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी चैनलाइज एवं डाइवर्ट करनी है ताकि मैं रात को जब सोऊं तो मुझे एक पीसफुल स्लीप आए, ये तो हम सभी के लिए।
1: तो आप ये कह रही हैं कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी बच्चे का तो उसका शरीर, उसका मन, उसके इमोशंस एक लाइन में आ सकते हैं,
0: उसकी काबिलियत, क्योंकि मैम अगर ईश्वर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा।

0: अलग तरीके के फूल भेजे हैं, तो हर किसी का अपना एक अलग वैल्यू है, हर किसी का एक अपना पोजिशन है। हम एज अ टीम, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, हम उसे वो राइट माहौल दें कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल्स तक ब्लूम।
1: एक और दिक्कत जो समझ में आती है डॉक्टर साहब, वो ये कि लोग कहते हैं कि बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं उनके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इस पोजीशन में नहीं रहते, कुछ ऐसे गरीब माँ बाप भी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि वो अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा करें?
0: मैम, सबसे पहले तो माता पिता को शांत बैठ के ये देखना है कि मेरे बच्चे में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे क्या क्या कदम उठाने हैं। हम लोग जिस संस्था के साथ इंडिविजुअली भी जहाँ पे भी काम करते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम पेरेंट्स को ट्रेन करें, पेरेंट्स को एम्पावर करें और ये कमान इवेंचुअली पेरेंट के हाथ में रखें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन में ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो आप ऐसे गुरुओं के साथ कनेक्ट हों जो आपको

0: उठाने हैं। हम लोग जिस संस्था के साथ इंडिविजुअली भी जहाँ पे भी काम करते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम पेरेंट्स को ट्रेन करें, पेरेंट्स को एम्पावर करें और ये कमान इवेंचुअली पेरेंट के हाथ में रखें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन दो दिन तीन दिन में ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो आप ऐसे गुरुओं के साथ कनेक्ट हों जो आपको सशक्त कर रहे हैं, एज पेरेंट्स आपको ट्रेन कर रहे हैं और इवेंचुअली कुछ समय बाद आप सीख जा रहे हैं कि मुझे इसको कैसे मैनेज करना है ना, मुझे इसको कैसे इस राह पे आगे चलाना है।
1: वैसे डॉक्टर प्राप्ति, इस धरा पर हर किसी का अधिकार है ना?
0: बिल्कुल।
1: फूल पत्ती पेड़, हम इंसान, जानवर, पक्षी, हम कैसे ही कुछ इंसानों को छोड़ देते ना, उन्हें कमजोर समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब आपकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं तो बड़ा अटपटा लगता होगा ना, फिर कैसे समझाते उन लोगों को कि भाई आपका ही हिस्सा है ये?
0: मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कर्मण्य बाध्य कारस्ते पे विश्वास रखना चाहिए और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी किसी एक व्यक्ति को रोक के ना समझाऊं, बल्कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, उन बच्चों को वो नाम वो मकाम दिलाऊं कि इवेंचुअली इन द पासिंग बाय ईयर्स लोग ये समझ सकें कि देखो इसको बचपन से खूबसूरत माली मिला था तो ये इस गंतव्य पे पहुंच पाया। राइट कुछ ऐसा करके दिखाऊं, कुछ ऐसा बता के, कुछ ऐसा बना के दिखाऊं कि वो अपने आप ही इस बात में विश्वास रखे।
1: इंक्लूजन करने के क्या फायदे होंगे?
0: मैम बहुत सारे फायदे हैं।
1: जैसे
0: हो सकता है हमारा बच्चा जब मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में पहुंच जाए तो वो 10 के 10 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको 50 बच्चों के कक्षा में बैठना समझ में आएगा, उसको ये समझ में आएगा कि घंटी बजने पे मुझे कॉपी किताब निकालनी है और घंटी बजने पे ही कॉपी किताब अंदर रख देनी है, इस घंटी पे मुझे लंच बॉक्स का डिब्बा निकालना है, इस घंटी पे मैडम को गुड मॉर्निंग खड़े होके ही बोलना है, बैठ के नहीं बोलना है, और जैसे ही अटेंडेंस पे मेरा नाम बुलाया जा रहा है तो मुझे प्रेजेंट मैम हाथ खड़ा करके उठा के बताना है। कहने का मतलब है यदि बच्चा मान लीजिए वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में बुद्धि उतनी अच्छी नहीं बना पाए कि वो सारे सब्जेक्ट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स इन सब को प्रोसेस कर पाए, कुछ ना सीख पाए, तो भी वो समाज में कैसे उठना बैठना है ये तो सीख पाएगा। विगत 5-6 वर्ष में अगर भी हम उसको इंक्लूड कर ले गए तो इस डिसिप्लिन्ड लाइफ के साथ, जैसा कि मैंने कहा कर्मण्य बाध्य कारस्ते, आपका जो डिसिप्लिन है वो अपने एक्शंस में होना चाहिए, इस डिसिप्लिन के साथ कहीं ना कहीं हम उसे किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे के अपनी आजीविका खुद पे ही कैसे अपनी आजीविका के लिए खुद ही निर्भर रहना है, खुद ही उसका कार्यभार संभालना है, इसके लिए हम उसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो मैम जो प्रोसेस है ना इंक्लूजन का, ये कई चरणों में होता है। सबसे पहले जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, फिर हमने अपनी थेरेपी टीम को ये प्रोवाइड किया, एक एलैबोरेटेड थेरेप्यूटिक प्रोग्राम बना जिसका जो मुख्य धुरी है पेरेंट्स है, पेरेंट्स को ट्रेन एवं एम्पावर किया गया, क्योंकि जो बच्चा है वो थेरेपी सेंटर्स में या रिहैब सेंटर्स में, हैबिलिटेशन सेंटर्स में कम समय के लिए जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार को ट्रेन किया गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे जब बच्चा स्ट्रक्चर में रहना सीख गया तो उसको स्कूल में डाला गया, जितने भी लंबे समय तक वो स्कूल में रह पाएगा वो उस कॉन्स्ट्रक्ट में रहना सीखेगा, उसके बाद उसकी किसी महत्वपूर्ण स्किल को उठा के उसको ट्रेन करके और उसको उसके लिए आजीविका का जरिया बना दिया जाएगा। हो गया समाज में इंक्लूड।
1: आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं?
0: बिल्कुल।
1: जो बच्चे आजीविका अपना खुद चला रहे उठा रहे हो?
0: बिल्कुल मैम, अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया जानती है उनको।
1: वो तो नायाब है, हम सब उनके आगे नतमस्तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
0: स्टीव जॉब्स, हम सब नतमस्तक है उनके भी आगे। इन सबको विशेष आवश्यकताएं नहीं है, ऑटिज्म का यदि आपने नाम सुना हो तो, और अगर आप रिसर्चेस पढ़ें, अगर आप न्यूज पढ़ें, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनको सोशल इनहिबिशंस हैं, आई कंटैक्ट नहीं देना, अपनी ही दुनिया में रहना, अपनी ही धुन में रहना, सेम चीज़ों को बार बार करना, ये सब कहीं ना कहीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। उनके ऑटिज्म ने ही शायद उनको ऐसा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है। एंड इन फैक्ट द लेडी यू आर टॉकिंग टू राइट नाउ, कई बार तो मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ट्रायट्स हैं जो मुझे मैं बनाती है, जो मुझे मुझ जैसा बनाती है।
1: आप तो बहुत ही प्यारी सी हैं। आपको तो कितने सारे पेशेंट देखे ऐसी उनका दुख दूर हो जाता होगा। बहुत अच्छा लगता है आपका ये काम देख करके, आप उन सारे बच्चों को एक इंक्लूजन की राह पर ले जाना चाहती हैं। अच्छा लगेगा कि कोई अलग नहीं रहेगा, परिवार है तो परिवार में सबके लिए स्थान है ना, सबके लिए वो हिस्सा है। जैसे माँ का प्यार हर किसी के लिए होता है, वैसे परिवार का हर कोना हर किसी के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर शायद एक नई सुबह होगी और हम

0: में हीन भावना से ग्रसित भी नहीं होना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर वर्क। कुछ और भी कहना चाहती हैं?
1: इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा थम के गौर करना है उस पर जो महत्वपूर्ण है, हमारी छवि, हमारा अंश, जो हमारे जीवन में हमें हमसे बेहतर बनाने के लिए ही एक माध्यम स्वरूप आया है। जब गौर करेंगे तभी चिन्हित कर पाएंगे, जब चिन्हित कर पाएंगे तभी उसे बदलने का, सुधार करने का प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में प्रयास है, हमारे एक्शंस हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते।
0: बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए।
2: अनीता, अभी ये जो बातचीत हम सुन रहे थे ना, वो हमारी बहनों के अनुरोध पर था। विषय था विशेष बच्चों को मुख्य धारा से कैसे शामिल करें। डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से बात कर रही थी नेहा गुप्ता जी, और अब बारी है
3: गृहलक्ष्मी टिप्स की। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।
2: चलिए फिर हो जाए।

0: भाई गीत के बाद अभी अब तुमने बोला था कि गृहलक्ष्मी टिप्स, तो मैंने बहन बहनों को गीत सुनाया। और अब देखो जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े आसान और उपयोगी सुझाव हम आपके लिए लेकर आते हैं, आज बात रसोई में मौजूद कुछ सामान्य चीज़ों को ही नहीं बल्कि प्राथमिक उपचार की सही समझ की है ना। तो आज हम बहनों से लिए बात करेंगे जो हमारे किचन में सामग्रियाँ होती हैं उससे हम उपचार तुरंत कैसे कर सकते हैं। तो बात आती है सबसे पहले ठंडे पानी की। त्वचा के जलने पर तुरंत उस जगह पर 10 से 15 मिनट तक साफ़ और ठंडा बहता हुआ पानी डालें तो इससे जलन कम होती है। और शहद की बात करें तो जले हुए स्थान पर शुद्ध शहद लगाने से ठंडक मिलती है और संक्रमण का भी खतरा घटता है।
1: और हमारे जो किचन में ना एक डब्बा होता है ना पीला पीला सा
0: हल्दी का,
1: तो वो भी बहुत कारगर है। अगर कहीं कट जाए या खून बह रहा है तो कटने या खून बहने की जगह पर आप हल्दी का पाउडर लगा दीजिए, खून बहुत ही जल्दी रुक जाता है और ये एक तरह से नेचुरल एंटीसेप्टिक का भी काम करता है।
0: और देखो साफ पानी की बात करें तो जब घाव हो गया है तो उसे ठंडे पानी से धोएं, साफ कपड़े या कॉटन के कपड़े से उसको धोएं और हल्का सा दबाव देकर उसको रोकें ठंडे पानी के साथ, तो खून अपने आप रुक जाता है। और नमक पानी यानी हल्के गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर घाव को साफ करने से बैक्टीरिया भी दूर होते हैं।
1: और अजवाइन और काला नमक की अगर बात करें तो पेट में गैस या अपच होने पर थोड़ी सी अजवाइन और चुटकी भर काला नमक खा लीजिए और गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी पी लीजिए, देखिए आपको तुरंत आराम मिलेगा।
0: और देखो लौंग इलायची भी किचन में रहता है ना, तो खाने के बाद अगर 2 से 3 इलायची अगर आप मुंह में डाल लें है ना, तो खाना बहुत ही अच्छे से पच जाता है और सुबह आप अगर देखेंगे तो आपका जो ऊर्जा है शरीर की मेंटेन रहेगी।
1: और एक चीज शैली दी मैं आपको और अपनी श्रोता बहनों को बताना चाहूंगी कि ये लौंग भी बहुत कारगर है। अगर आपको खांसी बहुत आ रही है और आप दवा भी ले रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप बस एक लौंग का फूल अपने मुंह में रखिए, बस चुपचाप रखिएगा, जूस ना लीजिए पी ना लीजिए, देखिए आपकी खांसी बहुत जल्दी आराम देगी
0: मात्र रखने से।
1: हाँ मात्र रखने से।
0: तो भाई ये तो हमारे किचन टिप्स हो गए और देखो धीरे धीरे हमारी घड़ी इशारा कर रही है कि हम अपनी बहनों से विदा लेने का समय आ गया है। लेकिन चलने से पहले हम बहनों से ये कहेंगे कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें हमारे मेल पर ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है grihalakshmibalsangh123@gmail.com। तो बहनों हम आपके मेल का इंतज़ार रहेगा और आप कि जो भी राय हो या जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं आप हमें मेल के ज़रिए कह सकते हैं। और भी देखिए हमारी अनाउंसर महोदया सीधे हाथ हिला रही हैं कि भाई अब अपना समय समाप्त है, हमको बहनों से नमस्ते करना है। तो बहनों
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और

0: वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
1: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत

0: और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
3: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
3: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
3: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
3: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
3: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
3: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
3: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
3: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
3: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
3: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी, लेकिन शिक्षा के मामले

0: में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
0: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि कान्हा हराड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
0: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से कान्हा हराड़ा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से कान्हा हराड़ा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
1: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
1: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला माला की

0: भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छमकी पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा

0: आदमी बनेगा। एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
1: ऐसे ऐसे
2: जोर से मारना।
1: सैम है ना? अरे इधर तू आओ।
3: हाँ हाँ आते हैं।
1: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तो तैयार हैं मार्कोनी।

0: ऐसे ऐसे
1: है ना। अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
2: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
3: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
2: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
1: कैसा प्रयोग?
2: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
3: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
2: संभव तो है भाई, संभव है।
1: अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ।
2: इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
3: अच्छा
1: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
4: अच्छा।
2: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
3: ठीक है।
2: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
4: घंटी भी?
2: सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
2: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
1: हाँ हाँ।
2: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
1: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
3: अरे वाह, अरे वाह, क्या
1: अरे
3: बात है!
1: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
3: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह!
2: सिग्नल मिला?
3: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
5: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
6: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
5: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।

0: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
1: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
0: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
1: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
0: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
1: देखता हूँ।
0: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।

अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग, आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बस थोड़ी ही देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। लीजिए आपके प्रोग्राम में नए सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ, मैं हूँ आपकी शैल दीदी
1: और मैं अनीता दीदी। बच्चों आप सभी कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमें खुश रखती है, स्वस्थ भी रखती है और हमारे शरीर में नई ऊर्जा भी भरती है। सोचो सोचो क्या? नहीं पता ना, चलो मैं बताती हूँ। मैं भाई बात कर रही हूँ खेल कूद की। बच्चों हम सभी जानते हैं कि खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, तो कोई फुटबॉल, तो कोई कबड्डी, तो कोई खो खो।
0: लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि खेलना हमारे लिए कितना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि खेल कूद सबसे अच्छी दवा, स्वस्थ शरीर की यही तो वजह है। खेलने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में फुर्ती आती है और हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। बच्चों खेल केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता बल्कि हमारे मन को भी खुश रखता है। जब हम मैदान में जाते हैं, खेलते हैं और दोस्तों के साथ, तो हमारी सारी थकान चिंता दूर हो जाती है। खेल हमें अच्छी बातें भी सिखाता है, ये हमें मिलजुल कर काम करना सिखाता है और सबसे ज़रूरी बात ये कि हमें हार को स्वीकार करके फिर से कोशिश करना सिखाता है।
1: और बच्चों जीतने पर खुश होना आसान है, लेकिन हारने के बाद

0: भी मुस्कुराकर दोबारा कोशिश करना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। इसलिए हमें केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलने में भी आगे पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर बहुत समय बिताते हैं। थोड़ी देर मनोरंजन ठीक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर भी व्यायाम और खेल कूद चाहता है। तो आइए मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आराम दें और मैदान में जाकर खूब लंबी दौड़ लगाएं, क्योंकि न मोबाइल की ज़्यादा आदत, न बैठे रहने की बीमारी। खेल कूद को बनाएं साथी, तो ज़िंदगी बनेगी प्यारी।
0: बच्चों, रोज़ कुछ समय खेल कूद के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे हम कोई बड़ा खेल खेलें या केवल दौड़ भाग वाला ही खेलें, और अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मैदान में बिताएं। हर गतिविधियां हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं।
1: और याद रखिए बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। किताब हमें ज्ञान देती है और खेल हमें ऊर्जा देती है। किताब हमें सोचने की शक्ति देती है और खेल हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो बच्चों, आज से ये वादा करो अपने आप से कि हम रोज़ खेलेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मोबाइल का कम इस्तेमाल करेंगे और खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि खेलो कूदो मस्ती करो, स्वस्थ रहो और प्रगति करो। तो इसी बात पर हम बच्चों आपको एक सुंदर से कहानी वाले गीत सुनाते हैं, है ना? तो चलो सुनते हैं

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं फेर दे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: दीदी
1: भाई देखो, कहानी वाले जो गीत बच्चों को ना बहुत पसंद आता है, इससे जानते हो डबल फायदा होता है। एक तो बच्चे कहानी भी सुनते हैं और उसको जो है जब धुन में पिरो दिया जाता है तो वो गीत भी हो जाता है, और बच्चे बड़े इंजॉय से वो कहानी को सुनते भी हैं।
0: मतलब एक साथ दो काम हो गया।
1: बिल्कुल। और देखो, हम लोग को जब दादी नानी की जब कहानियाँ सुनाती थी जब बचपन में था, तो सुनने में अच्छा ज़रूर लगता था, लेकिन सुबह होती थी हम लोग भूल जाते थे, है ना। लेकिन जो अब जो कहानियाँ हम लोग बच्चों को सुनाते हैं, चाहे वो धुन के ज़रिए सुनाते हो या बच्चों को एक्टिविटी के ज़रिए सुनाते हो, तो बच्चे ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो भाई उम्मीद है कि बच्चों को ये पसंद आया होगा गीत। और कुछ दिन पहले 2-3 बच्चे आए थे मेरे पास, यही आकाशवाणी में ही, उन्होंने बोला कि दीदी बहुत दिन हो गया वो गाना नहीं सुना मैंने। हाँ, तो
0: अच्छा।
1: हम मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि बेटा जब भी मेरी कभी इस टाइम की ड्यूटी होगी मैं आपको ये गाना ज़रूर सुनवा दूंगी और बता भी दूंगी। तो कहीं बिल्कुल दीदी, और आज वो बच्चे हमको ज़रूर थैंक बोलेंगे, मुझे उम्मीद है सुनेंगे भी होंगे।
0: उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है दीदी। आपने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। और दीदी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
1: बिल्कुल बढ़ाएं।
0: और आज हमारे कार्यक्रम में है मधुमक्खियाँ हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्यों उपयोगी है।
1: तो भाई देखो, सबसे पहली बात है कि मधुमक्खी हमारे परिवार की बहुत अच्छी दोस्त हैं। वे फूलों पर बैठकर इनका रस और परागकण इकट्ठा करती हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो परागकण भी एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। इसे परागकण कहते हैं।
0: और पता है बच्चों, परागकण की मदद से पौधों में फल और बीज बनते हैं। इसी कारण हमें आम, सेब, सरसों, सूरजमुखी जैसे कई चीज़ें मिलती हैं।
1: बिल्कुल। देखो, मधुमक्खियाँ शहद भी बनाती हैं, ये तो आप सबको भी पता है, जो हमारे लिए उपयोगी है। और इसके अलावा मधुमक्खियों के कारण बहुत से पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, जिससे हमारी प्रकृति हरी भरी रहती है।
0: तो दीदी, इसीलिए बच्चों से मैं कहूँगी कि मधुमक्खियों और उनके घर यानी उनके छतों की देखभाल करनी चाहिए। बिना ज़रूरत उनके छतों को बिल्कुल भी बच्चों छेड़ना नहीं चाहिए। अगर छेड़े तो पता ही है सबको, तो इसलिए
1: काट
0: भाई
1: लेगी मधुमक्खियां।
0: और फिर कहीं कहीं सूज जाएगा ना दीदी। तो बच्चों बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ज़रूरत हो तब उसको छेड़िए। और देखिए ना, इससे क्या होगा कि पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे अगर कटेंगे तो मधुमक्खियाँ छत्ते कहाँ बनाएंगी,
1: और
0: हमको
1: हमें
0: रस
1: शहद कहाँ से मिलेगा?
0: मीठा मीठा शहद पीने को खाने को कहाँ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, ये सब जानकारियाँ ना आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। जिन जो ये आज का प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं उनको ये बातें ज़रूर बताइएगा। और देखो, मौसम की बात जहाँ तक हम करते हैं, बच्चे अभी हम खेलकूद की बात भी कर

0: रहे थे। तो खेल कूद में इसका मतलब ये नहीं कि बारिश हो रही है और बच्चे खेल रहे हैं।
1: भाई देखिए दीदी, आप सही कह रहे हैं, अगर बारिश में खेलने गए तो बीमार पड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात अगर बच्चे बीमार पड़े तो डॉक्टर अंकल है पता है ना, वो बड़ी सी सुई लगाते हैं और कड़वी कड़वी दवाई भी पीने को देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों
0: और
1: बच्चों?
0: इंजेक्शन से भी बच्चे को डर लगता है ना, तो वो इंजेक्शन आपको ना लगे इससे आपको एहतियात बरतना पड़ेगा और मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मौसम सूखा हो तो आप खेलिए ज़रूर, हैं, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेंगे और आपका काम करने में पूरा मन लगेगा, है ना।
1: और दीदी एक बात और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि देखो बच्चों, मौसम बदल रहा है, बारिश से ठंडा है फिर गर्म भी है, तो तुम लोग अभी बिल्कुल फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी मत पियो,
0: और देखो
1: ठंडी चीज़ें
0: आइसक्रीम,
1: बिल्कुल मत खाइए।
0: आइसक्रीम भी
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: आज बच्चों को
1: आइसक्रीम।
0: बहुत पसंद होती है आइसक्रीम ना, तो वो मौसम नहीं देखते, बस वो खाते हैं। तो बच्चों मौसम को देखते हुए आप अपने को एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, खेलिए कूदिए और पढ़िए भी साथ में, है ना। और देखो धीरे धीरे हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, तो बच्चों अगले बार हम फिर
1: फिर
0: मिलेंगे,
1: मिलेंगे।
0: तब तक के लिए
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत घड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है युवानी कार्यक्रम में। और आज मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सेजल। वैसे दिन भर के भागदौड़ के बाद जब शाम धीरे धीरे दस्तक देती है ना, तो लगता है जैसे दिन कह रहा है चलो भाई अब थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो अगर आप भी इस वक्त अपने

दिन भर के कामों से थोड़ा सा पॉज लेकर बैठे हैं, तो बने रहिए हमारे युवानी कार्यक्रम में। और दोस्तों, यही तो खूबसूरती है ना रेडियो की, कि सामने कोई चेहरा नहीं होता है, फिर भी आवाज कहीं ना कहीं अपनी सी लगती है। एंड एज यू नो कि हमारे कार्यक्रम में इंटरेस्टिंग बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का तड़का भी होता है, जिससे आपके मूड को और बेटर बना सके। क्योंकि कभी कभी हमें किसी बड़े रीजन की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। एक अच्छा सा सॉन्ग, किसी अपनों से की गई बातें, अचानक याद आया कोई फनी मोमेंट, इतना ही काफ़ी होता है मूड को थोड़ा सा बेटर फील कराने के लिए। और भाई, आज तो 31 अगस्त है, यानी अगस्त महीना भी अब सितंबर को रास्ता देने की तैयारी में है। लेकिन कैलेंडर बदलने से पहले ज़रा ठहर कर देखिए कि अगस्त के महीने ने जाते जाते अपने साथ कितनी सारी यादें जोड़ दी होंगी। कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नए लेसन्स, कुछ अधूरे प्लान्स और शायद कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्हें सोच कर फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। और दोस्तों, यही तो हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती भी है ना, कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, फील करते हैं, या फिर कभी कोई आइडिया अचानक स्ट्राइक करता है दिमाग में, या फिर कभी किसी एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लगता है कि ये बातें दूसरों से भी शेयर करना चाहिए। और यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिएटिविटी को सिर्फ अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात आपने नोटिस किया है कि आज हमारे पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म्स या माइक का इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ता है। हमारे हाथ मौजूद एक छोटा सा डिवाइस भी हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकता है। कभी कोई अपनी ड्राइंग दिखा रहा हो, कोई अपनी फोटोग्राफी शेयर करना हो, कोई पढ़ाई से जुड़ी यूज़फुल बातें शेयर कर रहा हो, तो कोई अपने टैलेंट से लोगों को एंटरटेन कर रहा हो, या कोई बस अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हो। यानी आज क्रिएटिविटी होने के साथ साथ उसे लोगों तक पहुंचाने के रास्ते भी हमारे सामने हैं। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है कि क्या कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करने तक ही सीमित है, या फिर अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट और अपनी नॉलेज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का रास्ता भी हो सकता है। और दोस्तों, हमारी आज की चर्चा भी इसी पर बेस्ड है, कंटेंट क्रिएशन को अवसर के रूप में देखना। और जानेंगे कि कैसे एक आइडिया को कंटेंट में बदला जा सकता है, किस तरह अपनी स्किल्स को पहचान कर उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कंटेंट बनाते समय क्रिएटिविटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी क्यों ज़रूरी है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं अपनी आज की चर्चा पर, जिसमें हम बात कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन को अवसर के रूप में देखने की। सिंपल भाषा में तो समझे, जब हम अपने थॉट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट या स्किल को किसी क्रिएटिव फॉर्मेट में लोगों के सामने रखते हैं तो वो कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बनता है। अब हम अगर कंटेंट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वीडियोस, फोटोज या सोशल मीडिया आ जाता है, लेकिन असल में कंटेंट इससे कहीं बड़ा है। आप किस विषय पर अच्छी तरह लिखते हैं वो कंटेंट है, किस बात को अपनी आवाज़ में इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं वो भी कंटेंट है। आप स्केचिंग करते हो, फोटोग्राफी करते हो, स्टोरी टेलिंग हो या किसी भी विषय पर रिसर्च हो, की जानकारी देते हो, अपनी लोकेलिटी या फिर अपनी सिटी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताते हो, ये सब भी कंटेंट क्रिएशन का एक हिस्सा है। यानी इसकी शुरुआत किसी एक्सपेंसिव कैमरे से नहीं, बस एक आइडिया से होती है, क्योंकि हर किसी ना किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी की स्किल्स अच्छी है तो किसी की ने कोई बुक्स पढ़ी है, किसी के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और यही आपकी यूनिकनेस हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि मेरे पास क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, पर दोस्तों कभी कभी एक जनरल सी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया ही उसे खास बना देता है, और यही कंटेंट क्रिएशन की खूबसूरती है। पर अब सवाल ये आता है कि इसे अपॉर्चुनिटी क्यों कहा जाए, क्योंकि कंटेंट बनाते बनाते सिर्फ कंटेंट नहीं बनता, आपके अंदर कोई स्किल्स भी डेवलप होती है। आपको किसी टॉपिक पर कंटेंट बनाना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप लोगों के सामने कोई बात रखनी है तो कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी, कुछ सीखना है तो राइटिंग इम्प्रूव करनी होगी, वीडियोज़ बनाना है तो प्रेजेंटेशन, एडिटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा सीखेंगे। तो दोस्तों कभी कभी अपॉर्चुनिटी वही होती है जहां हमारी रुचि और हमारी स्किल आपस में मिलती है, यानी कंटेंट क्रिएशन हमें एक मौका देता है कि हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करें। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट की कमी नहीं है, हर तरफ बहुत सारे कंटेंट दिखाई देते हैं, इसलिए असली चैलेंज है कि ऐसा कंटेंट बनाना जो मीनिंगफुल हो और सबसे ज़रूरी ओरिजिनैलिटी हो। दूसरों से सीखना बिल्कुल ठीक है, पर वही एग्जैक्ट कॉपी करना तो ये तो क्रिएटिविटी नहीं है। आपका अपना

पर्सपेक्टिव, आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ ही आपको अलग बनाती है। और इसके साथ दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। हर बार हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कंटेंट अच्छा होगा तो कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन हर कोशिश कुछ सिखाती है कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, जो लोगों को पसंद आए, और आपकी कम्युनिकेशन कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यही लर्निंग धीरे धीरे हमें एक क्रिएटर बना सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल जो प्ले करता है वो है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसने हमारे कंटेंट को एसेसिबल बनाया है। आज शुरुआत करने के लिए इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती है, बस एक बेसिक डिवाइस, आइडिया और सीखने की इच्छा से भी शुरुआत की जा सकती है। और राइटिंग, स्पीकिंग, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, रिसर्च, इनमें से जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसकी पहले बेसिक्स सीखिए। और दोस्तों, अगर आपका फोकस सीखने और इम्प्रूव करने पर है तो आपकी हर कोशिश आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि हमारी बात सिर्फ हमारे तक नहीं रहती, इसलिए कोई भी चीज़ें शेयर करने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं। इसके साथ ही किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखना, बिना सोचे किसी बात को आगे ना बढ़ाना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बचना और दूसरों की चीज़ों को कॉपी ना करना, ये सब एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर की पहचान है। यानी एक अच्छा क्रिएटर सिर्फ ये नहीं सोचता कि लोग मेरा कंटेंट देखें, उसे ये भी सोचना चाहिए कि लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो उसे क्या लेकर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हमें दूसरों के सामने आने से पहले खुद को पहचानने का मौका एक मिलता है। हो सकता है स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा स्ट्रगल हो, पर हमें अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है तो हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं। और इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी हमें अपनी मेहनत से ही क्रिएट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ एक ट्रेंड की तरह देखने के बजाय एक पॉसिबिलिटी की तरह देखने की भी ज़रूरत है। एक पॉसिबिलिटी जो कुछ नया सीखने की, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने की, अपनी पहचान बनाने की और टैलेंट को एक नए रास्ते पर ले जाने की है। और कंटेंट क्रिएशन के रास्ते आज काफ़ी खुले हैं, एज यू नो कि आप राइटिंग, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा जैसे फील्ड्स में अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की चर्चा को मैं यहीं देती हूँ विराम और सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक।

0: की चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: तो दोस्तों, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जहां हर दिन कुछ नया आपका इंतजार करता है। और आज इस सेगमेंट में मैं लेकर आई हूं कशाफना रोशनी की एक वार्ता, जिसका शीर्षक है संतुलित आहार स्वास्थ्य का आधार। तो चलिए फिर सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
5: जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की व्यस्तता भरी जिंदगी ने हमारे खान पान को बदल कर रख दिया है। आजकल हम ना ही सही तरह से खाना खाते हैं और ना ही सही वक्त पर खाते हैं। गलत वक्त खाना और फास्ट फूड का सेवन दोनों ही हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। शरीर को सही पोषण न मिलने के कारण आज बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे और युवाओं में भी कई सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और सुचारू रूप से काम करने के लिए हमारा संतुलित

0: आहार लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार ही स्वास्थ्य का आधार होता है। संतुलित आहार में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों की पर्याप्त मात्रा लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपके हृदय, दिमाग और अन्य कार्य प्राणी सही से काम करते हैं। संतुलित भोजन का मतलब है शरीर के लिए जरूरी सभी तत्वों का एक संतुलित मात्रा में मिश्रण, ताकि हम स्वस्थ, चुस्त और निरोगी बने रहें। जैसे कि हरी सब्जियाँ, अपने आहार में हरी सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा ताज़ी सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑपरेट करने में भी काफ़ी मदद करता है। दूसरा, अंकुरित अनाज। सेहत के लिए अंकुरित अनाज बहुत ही उपयोगी माना जाता है और इसे लेने से शरीर को ताकत और ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इससे पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अंकुरित अनाज का सेवन हर मौसम में किया जा सकता है। इसी तरह दूध में भी संपूर्ण आहार होता है, इसलिए दूध को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें मिनरल्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन अन्य मात्रा में पाया जाता है। शुद्ध पानी। शुद्ध पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है, और जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो इन दिनों में पानी की कमी ना हो, इसलिए 6 से 8 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी अवश्य करें, इसलिए अपने आहार में गेहूं, चावल और बाजरे को ज़रूर शामिल करें। और शरीर में खून बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने जीवन में रोटी, मटर, सूखे मेवे को ज़रूर शामिल करें, इससे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए अपने आहार में एग यानी अंडे को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अंडे में प्राचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही इसमें अमीनो एसिड भी होता है। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी और बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, पर उन्हें चॉकलेट्स के फ़ायदे या नुकसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन दिमाग को तेज़ करने के लिए चॉकलेट्स काफ़ी फायदेमंद होती है। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें अपने आहार में मौसमी फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मौसमी फल काफ़ी मददगार होता है स्वास्थ्य बनाए रखने में। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम अच्छा स्वास्थ्य तभी बना सकते हैं जब हम हर चीज़ एक फिक्स समय पर खाएं। अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि ऑफिशियल पर्सन और युवा स्टूडेंट सुबह जल्दी जल्दी घर से निकलने के लिए ना ही ठीक तरह से नाश्ता करते हैं, काम और पढ़ाई की व्यस्तता में दोपहर का खाना भी नहीं खाते, और इसकी वजह से वो सोचते हैं कि रात को वो ज़्यादा खाना खाकर दिन भर की डाइट कवर कर लेंगे, जो कि गलत प्रतिक्रिया है और ऐसा करना हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। खाना सही समय पर खाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने काम के अनुसार सही मात्रा में कैलोरीज लें। जैसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 2500 से 2800 कैलोरीज लेना चाहिए, और शारीरिक काम करने वाले और ज़्यादा भारी काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि हमारे मजदूरों को 3200 से 3800 तक कैलोरीज लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जिंदगी को रखना हो खुशहाल तो रखें स्वास्थ्य का ख्याल, क्योंकि संतुलित आहार है स्वास्थ्य का आधार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कशफना रोशनी की वार्ता, जिसका शीर्षक था संतुलित आहार स्वास्थ्य का आधार। तो दोस्तों, आज की वार्ता से तो हमें ये समझ में आया कि स्वास्थ्य सिर्फ एक दिन में नहीं बनता, हमें हर दिन छोटी

छोटी आदतों से बनाना पड़ता है। और हमारी इन आदतों में जो सबसे ज़रूरी है वो है हमारा खान पान। तो संतुलित आहार का मतलब सिर्फ कम खाना या ज़्यादा खाना नहीं है, बल्कि सही चीज़ को सही मात्रा में अपनी थाली का हिस्सा बनाना है। क्योंकि जब हमारी थाली स्वस्थ संतुलित रहेगी तो भाई हमारे शरीर को भी ज़रूरी पोषण मिलेगा और हमें अपने हर दिन के लिए एनर्जी भी मिलेगी। तो अपनी सेहत को कल पर मत छोड़िए, शुरुआत आज से ही कीजिए। और दोस्तों, आप बिना देर किए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रैक की ओर।

वक्त है हमारी अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज का। इस सेगमेंट में हम हर दिन मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका जीवन अपने आप में एक सीख होती है। कोई अपने संघर्षों से हमें हिम्मत देता है, कोई अपने फैसलों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो कोई अपने काम से ये एहसास कराता है कि मुश्किल हालात हमारे सपनों की राह को रोक नहीं सकते।

मत देता है, कोई अपने फैसलों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो कोई अपने काम से ये एहसास कराता है कि मुश्किल हालात हमारे सपनों की राह को रोक नहीं सकते। हर दिन एक नई कहानी, एक नया व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी एक नई प्रेरणा, क्योंकि प्रेरणा हमेशा किताबों के पन्नों में ही नहीं मिलती, कई बार वो किसी शख्स के जीवन में छिपी होती है। ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि हम उनके बारे में जानें, समझें और कुछ सीख लेकर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आज भी मिलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने दौर की मुश्किल परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। और आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं वसुदेव बलवंत फड़के। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आपको बता दें कि बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोन गांव में हुआ था। 1862 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज और कमिश्नरी परीक्षक कार्यालय जैसे कुछ सरकारी संस्थानों में काम किया। उसके बाद वे पुणे चले गए और साल 1876-77 के दौरान पड़े भयंकर अकाल ने महाराष्ट्र के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। फड़के ने अकाल पीड़ितों की स्थिति देखी और अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध करने लगे। उन्होंने समाज के उन वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा जिन्हें उस समय मुख्य धारा से दूर माना जाता था, जिसमें रामोशी, किसान वर्ग, पील ट्राइब आदि समुदायों के लोगों ने उनके आंदोलन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी राजनीति अलग थी, उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की आर्थिक व्यवस्था को चुनौती देना और अपने आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था। इस दौरान उनके दल ने कुछ सरकारी खजानों और संपत्ति पर हमला किया। इन घटनाओं को उस समय अंग्रेजी शासन ने गंभीर चुनौती के रूप में देखा और वसुदेव फड़के को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया। आखिरकार साल 1889 में वसुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मात्र 37 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, वसुदेव बलवंत फड़के की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी जिंदगी से मिलने वाली प्रेरणा आज भी हमारे साथ है। उन्होंने दिखाया कि अपने समय की परेशानियों को महसूस करना और उसके लिए आवाज उठाने का साहस रखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उनका जीवन भले ही संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपने विचार और अपने उद्देश्य के प्रति उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। आज हमारे संघर्ष अलग हैं, हमारी चुनौतियां अलग हैं, लेकिन जरूरत आज भी उसी चीज की है, साहस की, जिम्मेदारी की और कुछ बेहतर करने की इच्छा की। तो दोस्तों, इसी सोच और प्रेरणा के साथ आज के प्रेरणापुंज सेगमेंट को देते हैं यही विराम और अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ने से पहले सुनते हैं ये नेक्स्ट सॉन्ग।

और अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज के सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले कल का सवाल था कि ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहते हैं, और उत्तर है ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। बेसिकली वो इकोनॉमी है जहां किसी का आइडिया, क्रिएटिविटी, टैलेंट और कल्चर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसी क्रिएटिविटी से नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और आज का सवाल है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी। तो हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आप अपना फीडबैक हमें हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और हमें अपना फीडबैक हमारी मैसेज पर भी दे सकते हैं। उस मैसेज का नंबर है 8004926250। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलूंगे आपसे फिर एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमीकॉन

0: एक के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले आज के शेष कार्यक्रम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अखिलेश कुमार यादव की वार्ता भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन। अनुप कुमार उपाध्याय से लोकभाषा कविता पाठ और रागनी चंद्रा के स्वर में लोकगीत। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा राधा शुक्ला की वार्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। संगीता राय के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर। गजलों पर केंद्रित कहकशा कार्यक्रम 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:00 8:30 पर और रात 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनवाएंगे विनोवर शर्मा से बातचीत इस पखवाड़े के कृषि कार्य। डॉक्टर शगुप्ता नाश की वार्ता अपचित का होम्योपैथिक उपचार सुनवाएंगे 6:45 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनेगा 7:00। शास्त्रीय संगीत में 7:30 पर सुनवाएंगे प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन। 12:15 पर सुनवाएंगे प्रेम जैन का गिटार वादन और रात 10:30 पर सुनेगा पंडित प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। सरगमकांत वैश्य के स्वर में गीत और भजन सुनवाएंगे 9:05 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। शाम 7:45 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे सागरिका घोष। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाधुरी सुबह 10:30 पर होगा। कलाकार होंगे राजमणि धामल और साथी आकांक्षा भारती और साथी सुरेंद्र कुमार पटेल और साथी। और शाम 5:00 धरती के गीत के कार्यक्रम के साथ शुरुआत होगी हमारी दूसरी सभा की। कलाकार होंगे ओम प्रकाश दीपक और साथी। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत 11:00 होगा। फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीत आप तक पहुंचाएंगे 12:30 पर हेलो फरमाइश के साथ। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट 1:15 पर होगा। बहनें सुनेंगी डॉक्टर अजय मिश्रा से मोहन धनराज की बातचीत मानसिक अवसाद से कैसे बचें और रंजना त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत। युवा श्रोता

अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे आदित्य पांडे की वार्ता ग्रामीण जीवन में वनों का सह अस्तित्व और सिया मिश्र का रामायण पाठ, साथ ही सुनवाएंगे मोहनलाल जैसल के स्वर में लोकगीत। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। कल सुनिएगा डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम। सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। गजलों पर आधारित कहकशा आप तक पहुंचाएंगे 9:30 पर। और लखनऊ दर्पण से खेल दर्पण कार्यक्रम होगा 10:00। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और अब प्रस्तुत है समूह गान में देशभक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशभक्ति रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बहुक्षेत्रीय गभीर जल अभियानेभ्यः नौसेनायाः विशिष्ट अन्तर्जालीय क्षमतासु निपुण इति पोतः एकं सशक्तं संयोजनं भविष्यति। विशाखापत्तनम स्थितया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनया संस्थया स्वदेशी ज्ञानेन परिकल्पितः निर्मितश्च निपुण पोतः निमज्जनस्य अथ च अन्तर्जालीय अभियानानां विविधानां आवश्यकतानां पूर्णाय विशेषतया निर्मितः। नेपालदेशे गतसप्ताहे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृत्तिकास्खलनेन च मृतानां संख्या 3-9 शतं यावत् वर्धिता। प्रायः 7,400+ जनाः विलुप्ताः एव सन्ति। नेपालदेशस्य राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरणस्यानुसारं रविवासरात् एषा संख्या वर्धिता अस्ति। नेपालदेशस्य 8 प्रभावितमण्डलेभ्यः शवाः प्राप्ताः, रक्षकाः लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षयितुं च लग्नाः सन्ति। अत्रान्तरे प्रायः विभिन्नासु जलविद्युत् परियोजनासु न्यूनातिन्यूनं 33-9 शतं यावत् कर्मकराः बाधिताः इति मन्यन्ते। तिब्बत क्षेत्रे सम्प्रति मृतकानां संख्या 16 अस्ति, 44-5 शतं यावत् जनाः लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। भारतीयः टेबल टेनिस क्रीडकः अंकुर भट्टाचार्यः इत्येषः चेक रिपब्लिक इत्यत्र WTT फीडर ओलोमौक स्पर्धायां स्वस्य प्रथमं WTT पुरुषैकल उपाधिं विजितवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 202.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: हम कही सुमिरन भैया।
0: हाँ मोहन भैया,
1: कही भाई देखा धान के फसल के लिए तब भाई जैसे मौसम बड़ा अनुकूल है,
0: एकदम अनुकूल बाटे
1: भैया। कहे भाई रह रहे के रिमझिम रिमझिम बारिश भाई, कहूँ थोड़ा कहूँ गर्म होत बाटे जौन है। हम तो कही भाई जौन थोड़ा भी पिछड़वार धान रहन
0: हाँ
1: भाई, वो तो भाई पानी पान देखा उठी आई
0: पानी पान भैया ना, जो एक भाई समस्या होत रही कि भाई समय समय पे सिंचाई करत
1: करते। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई
0: उसे किसान भाई अरे साल जोन बाटे बचा है, पर एक जोन जरूरत के बात बाटे ना भैया कि ज्यादा अगर मन आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाई तो भैया जोन खड़ी फसल बा वो खरपतवार से खराब हो जाए।
1: भैया कही गया हो,
0: और कितना हम सब झेली था खरपतवार की वजह से भैया। देखा जे किसान भाई भाई विशेषज्ञ भैया की सलाह मान के पहले दवा ववा डाल दिए भाई, वो तो बच गए। अब दवा डाले के बावजूद कभी कभी होता ना कि भैया जाम ही आवत है खरपतवार।
1: कुछ खरपतवार ऐसे होते ना भैया कि देखा शुरुआती जो जब देखा था भाई वहाँ हल्का रसायन जब पड़ जाते हैं तो उसे वो नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ना है भाई कि उनकर जो निराई गुड़ाई के बाद नियंत्रण के काम बा वो हाथ से संभव बाटे। अब भाई खेते मड़वाई करता है जो ना बेसमय भाई फसल तो हरी खूब दिखाए मन तो खुश बा, लेकिन अब ओके अंदर से जो खर पतवार निकलत बाटे वो ना कर देख पावता है। तो हम कही भाई देखा जो आपके धान के जो फसल बाटे वो बढ़वार रुक जाए भैया।
0: अब भाई यो सोचे ना भैया कि जब भाई आप मान ले रसायन डाल दें ओकरे बाद अगर खरपतवार जाम ही आए, आप जैसे कहते हैं भाई हाथ से अगर ओकर हटावे के बाटे तो हमन कितना परिश्रम लगा था, कितना मेहनत लगा था,

0: कितना समय जाया
1: बिल्कुल
0: होता है
1: बिल्कुल
0: आपका?
1: भाई, हम कहीं देखी के बिना अगर समय रहते भाई, देखा भाई अपन आदमी से मजदूर के माध्यम से जो ना या जो भी संसाधन बा उसे ओकर निकलवा लें, काहे से कि भाई जब ओकर बढ़वार हो तो जौन भी खाद पानी डावत आ जो ना है फसल के अपेक्षा जो ना वह तेजी से असर होते
0: कई
1: जौन
0: वजह
1: है।
0: से जो कहा जाता है ना मोहन भैया कि जो खेती किसानी का काम अगर कही रहा तो जो छोटी छोटी बात होती है ना एकर ख्याल रखे के चाहिए। हम सब जैसे बताया बतावत रहे भाई मई जून में कि भाई एक बोवाई से पहले या खेत के भराई से पहले भाई अगर अच्छे से अगर जुताई कर ले तो ये सब समस्या ना होए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन देखा हो तो कहा ना कि भाई भाई हर समय मौसम एक तरह से नहीं ना, पता लगा कि भाई मौका बेर आंख नहीं लाग भाई, किसान भाई अपन जुताई नहीं कराई पैन, तो भाई अब यह समय अगर देखात बाटे तो का समय रहते
0: बिल्कुल
1: नियंत्रण करें
0: बिल्कुल
1: जो ना है, काहे से कि अब यह समय जे हिसाब से हल्की हल्की बारिश होती बैठे कहूँ तेज भी होती बैठे, तो इस भाई धान के लिए तो भाई खरीफ की जो प्रमुख फसल भाई बहुत अच्छा ही बैठे जो ना
0: एकदम
1: है ना,
0: भैया एकदम एकदम
1: लेकिन अगर भाई अगर ओके साथे साथे खरपतवार भी आए तो भाई वहाँ धान के जो बाली बाटे उस पर प्रभाव पड़े जो ना है। हाँ तो ऐसे आवश्यक बाटे को समय रहते निकाल लें जिससे उनका जो बढ़वार बहु अच्छी हो, जो खाद पानी भी डालते हैं उसका असर बढ़िया हो और पैदावार भी बढ़िया हो जाऊ ना है।
0: बिल्कुल भैया। साथे साथे एक चीज़ और हम कहब ना भैया
1: हाँ
0: कि अब अपने खेती किसानी में भी जुग जमाना बदला बाटे। अब जैसे
1: बिल्कुल
0: जैसे भैया नवा नवा अनुसंधान आवत बाटे भाई तमाम तरह का कृषि यंत्र का प्रयोग हो रहा बाटे।
1: बिल्कुल
0: हम देखी
1: बिल्कुल
0: था भाई कि अपने खेती किसानी में कतौ ड्रोन का प्रयोग होत बाटे, कतौ आपका सीडर का प्रयोग होत बाटे। तो जो ये तरह तरह का आपके यंत्र बाटन भैया ई कतौ न कतौ
1: देखा
0: आपका जोन
1: हो
0: मेहनत
1: सुमिरन
0: बाटे।
1: भैया
0: हाँ
1: कहे ना कि तकनीक,
0: हाँ
1: तो भाई बदलते समय में भाई अगर तकनीक का सहारा न लीन जाए तो हम कहे भाई देखा पहले और अब के समय में बड़ा फर्क बाटे।
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल
1: भाई जाए के भाई सहेज आए के भाई चलावत है हमारे खेत में काम है तो भाई 4 महीने आई जात रहे, लेकिन आज भाई दुख जमाना बदला बा, भाई व्यस्तता लोगन के पास बाटे, हर काम भाई थोड़ा जल्दी लोग सोचत हैं जो ना है, तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे खेती किसानी में तकनीक के देखा बहुत अवसर बा, और जब तकनीक आवत भाई तो 4 जने के रोजगार के भी अवसर लेके आवत है जो ना।
0: रोजगार
1: हाँ
0: के लेके अवसर आवत बाटे। और दूसरा एक चीज और हमके अच्छी लगत है कि भाई जो आपन सरकार बाटे वह दिशा में बहुत प्रयास करत बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल हम
0: जोन भी तकनीक
1: कही
0: नई नई आवत इन भाई ओका ई समझा जाता है कि कैसे ई सुलभ हो सके किसानों में बरे भाई। ज्यादा से ज्यादा ओका सब्सिडी दई के ज्यादा से ज्यादा लोगन में जानकारी दई के ज्यादा से ज्यादा लोगन के जागरूक बनाए के भैया वो
1: बिल्कुल
0: तकनीक जितना जल्दी खेती किसानी में आए भैया अपने अपने भाई परिवार के गांव देहात में भाई उतना ही तरक्की होए।
1: बिल्कुल भाई हमके देखा ऐसा नहीं बा नमो
0: हाँ
1: ड्रोन
0: ड्रोन
1: दीदी
0: दीदी योजना
1: योजना। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यह योजना में सुमिरन भैया हम कहीं देखा अपने गांव गिराव में जो भी महिला हैं वो भाई उनका रोजगार से जोड़े के खातिर जो खास करके जो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: या अन्य तरह जो भी थोड़ा से जागरूक हैं, तो उनका ड्रोन चलावे के ही प्रशिक्षण भैया दिन जात है जो ना है, और अपने क्षेत्र से जैसे उनका 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में जो ना है अगर कोनो तरह के खेती किसानी के काम ड्रोन के जरिए भाई खाद डाला एक बाटे, रसायन डाला एक बाटे,
0: कीटनाशक डाला एक बाटे
1: कीटनाशक डाला एक बाटे, तो तमाम तरह के जो उन काम है यह ड्रोन के माध्यम से आसानी से की जा सकत
0: अच्छा
1: जौन।
0: भैया हम देखी था कि जैसे हमारी पचन के अगर मान लें कि कीटनाशक डाले के बाटे या रसायन डाले के बाटे। अब हमार चक मान लें बहुत बड़ा बाटे तब
1: बिल्कुल
0: भैया उमन छिड़काव करे में बड़ी दिक्कत होत रही पहले। और जब हम सभी जात रहे अंदर जात रहे तो भाई एक तरह से भाई आप तो देखत है तो उस हिसाब से अगर देख के चलबा
1: बिल्कुल
0: आप तो भाई कतौ पड़ा बा कतौ नहीं पड़ा बा।
1: हाँ
0: अब
1: एक
0: ड्रोन से अगर डलबा भैया तो ऊपर से दिखाए ऊ ये कितना जगह पड़ा बाटे कितना जगह नहीं
1: ए
0: पड़ा
1: भैया
0: बाटे।
1: हम कहीं देखा अपने जो स्वयं सहायता के बहनी हैं ना समूह के उनका यही सबके प्रशिक्षण दिन जाते,
0: अच्छा
1: मान लो कौनो खेत में भाई उनका डाले एक बाटे खाद पानी तो ओकर कितना रकबा बाटे कितना का बाटे सब हमा पहले से भैया ओकर चिन्हांकन कई दिया जाता जो ना है ओके जो ड्रोन के मशीन बाटे, तो भाई उजात उतने क्षेत्रफल में पल भर में भैया डाल के चलावत जो ना है।
0: अच्छा देखो कितना अच्छी चीज़ निक चीज़ आप बताएं कि भाई आपन जो माता बहन बाटिन भाई देखा इतना जुग जमाना बदल गवा बाटे कि भाई तकनीक का सहारा लेके खेती किसानी तो पहले भी होत रहा भाई
1: बिल्कुल
0: हमारे माता
1: बिल्कुल
0: बहनी करत रहिन और हमारे कंधा से कंधा मिलाई के बराबर तरीके से करत रहिन। पर अब जो समय बदला बाटे जैसे कि आप बताएं कि भाई स्वयं सहायता समूह में अगर नमो जो ड्रोन दीदी योजना
1: बिल्कुल
0: बाटे
1: बिल्कुल
0: मन
1: भाई
0: अगर
1: हम कहीं
0: पायलट का
1: देखा
0: ट्रेनिंग ले
1: सुमिरन
0: ही।
1: भैया।

0: हम कहीं जो लखपति दीदी जो बनाओ की योजना बना तो वो सब भैया एमा शामिल किया गया बाटे। और खास करके जेका भी ड्रोन उपलब्ध कराए जात बाटे उनका सब्सिडी के माध्यम से जो है। हाँ,
1: और दूसरी चीज ये बात बैठे ना कि भाई
0: और
1: एक बार,
0: उनका कृषि विभाग से भी भैया संबद्ध किया जाता
1: हाँ,
0: है।
1: और अगर एक बार अगर ट्रेनिंग ले ले ही ना भैया, एक बार प्रशिक्षण अगर मिल गया उनके, तो भाई कहता हूँ जाए के ड्रोन चलाए के भाई, एक तरह से किराया के रूप में भी अपन आय बढ़ा सकते हैं।
0: कह गया भैया, मतलब वो ड्रोन के माध्यम से जैसे भाई आप खेत के जुताई कराया तो भाई 4 पैसा के ट्रैक्टर वाला लेत है,
1: हाँ
0: तो वैसे जब
1: एकदम,
0: खाद डलोबा कुछ भी करोबा तो जो ड्रोन के एक निश्चित किराया जो अपन स्वयं सहायता समूह के जो महिला बहनी है रहे हैं करे निर्धारित हैं ओका देवा, तो भाई ऐसे तो भाई उनका 4 पैसा का आमदनी आपके भाई घर में आए, दूसर भाई समय के बहुत बड़ी
1: और
0: बचत
1: एक
0: बाटे
1: और
0: जो।
1: मोहन भैया बात बाटे ना कि जोन ड्रोन मिलत बा और जो साथे साथे जोन ओमन पूरा किट जोन रहत है,
0: पूरा
1: जैसे
0: एक
1: वो
0: एक
1: डाला
0: उपकरण
1: जाता,
0: होकर जो
1: वो जोन सारा उपकरण बाटे वो भाई सब्सिडाइज्ड देत बाटे,
0: वही ना
1: गवर्नमेंट
0: भैया,
1: सब्सिडी देत
0: बिल्कुल
1: बाटे, ओमन
0: छूट है भैया
1: छूट बाटे, ओके ले
0: ओका।
1: ले ओकर उपयोग करें और भाई अपन खेती किसानी अच्छी करें और साथे साथे अपन जोन आय बाटे ओहू
0: खुद
1: के भाई
0: में
1: बढ़ावें।
0: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा बात बत कही होत रही
1: हाँ
0: मुला देखा, आज तो लोक भाषा कविता पाठ भी सुना जाए निस देहाती
1: एकदम
0: के,
1: भैया।
0: साथे साथे भाई एक वार्ता सुनी जाए अखिलेश कुमार यादव के, भारत के एक प्रमुख जो कृषक आंदोलन रहा है।
1: अच्छा।
0: लेकिन उससे पहले हम कही भाई रागिनी चंद्रा के बनारसी कजरीबा और सुना दिया
1: अरे
0: जाइए।
1: बिल्कुल भैया, सुनवाई दे भैया एकदम।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुमरन भैया, हम कहीं देखा रागनी चंद्रा के कितनी बढ़िया कजरी रही जमुना है।
4: बिल्कुल भैया, देखा जोन मौसम बाटे ना, सन गाना उना सुन लिया जाए तो भाई एकदम बिल्कुल मन एकदम हर
3: गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा एक बात यह है, हम कहीं देखा अपन भाई देश जमुना है कृषि प्रधान देश है
4: एकदम भैया,
3: और किसान के लिए भैया हमेशा देखा सरकार भी कुछ न कुछ प्रयास करत रहत है कि कैसे उनका अच्छा आय हो, साथ ही साथ किसान अपने अधिकारण के लिए देखा तमाम तरह के समय समय पे ऐसे अगुआ आए जो उन कृषक आंदोलन रहन जो उन भुवन है, तो के माध्यम से भाई उनके तमाम तरह के जो उन अधिकार रहें वो उनका मिला जाऊना।
4: बिल्कुल,
3: तमके यही सबके लई के देखा है अखिलेश कुमार यादव के वार्ता बटे भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन और सुनवाई दिया जाए।
4: बिल्कुल भैया सुनवाई दें।
5: ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण का प्रभाव भारतीय किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ा। यद्यपि किसान शब्द लोगों के किसी सजातीय वर्ग का उल्लेख नहीं करता है, तथापि यह ब्रिटिश शासन के अधीन पूरी तरह पीड़ित था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, भू राजस्व की नई प्रणाली और उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। फिर दस्तकारी उद्योग के तबाह हो जाने से इन उद्योगों में लगे लोग भी खेती की तरफ लौटने पर मजबूर हुए, जिससे खेती लायक जमीन पर दबाव भी काफी बढ़ गया। इस तरह कृषि का पूरा ढांचा ही बदलने लगा। जमींदार किसानों से मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूल करते, ठीक यही काम सरकार ने किया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे महाजनों के चंगुल में फंस गए और इस तरह उनकी जमीन के हाथ से निकलकर जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए। जमीन के मालिक छोटे किसान की हैसियत महज काश्तकारों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों की तरह रह गई। देसी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने की किसानों ने कई छिटपुट लेकिन नाकाम कोशिशें की। स्थानीय स्तर पर जब किसानों के सामूहिक संघर्ष विफल होने लगे और उन्हें लगा कि वे ब्रिटिश राज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और ना ही दिन ब दिन बढ़ते शोषण के थमने के कोई आसार हैं, बंगाल में नील विद्रोह, पाबाना विद्रोह, महाराष्ट्र में डक्कन उपद्रव, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, संयुक्त प्रांत व अवध में किसान सभा आंदोलन एवं एका आंदोलन, केरल में मोपला विद्रोह, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह और बरदोली सत्याग्रह आदि विद्रोह और आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था बंगाल का नील आंदोलन। शोषण के खिलाफ यह किसानों की सीधी लड़ाई थी। दरअसल

नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रखा था, जबकि किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल तथा अन्य फसल उगाना चाहते थे। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे और ग्रामीण इलाकों में इनके कारखाने थे जहाँ वे नील का शोधन करते थे। नील उत्पादक मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। इस करार में धोखे से नील की ऐसी कीमत दर्ज करा दी जाती थी जो बाजार भाव से काफ़ी कम होती थी। बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इस मामले पर टिप्पणी की थी कि सारे झगड़े की जड़िया है कि नील उत्पादक बिना पैसे दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पर मजबूर करते हैं। कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना छोड़ दिया और लठैतों को पालकर उनके माध्यम से बालात नील की खेती शुरू कर दी। ये लठैत किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना तथा किसानों के घरों एवं फसलों को जलाने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे। 17 अगस्त 1859 को पुलिस

बना छोड़ दिया और लठैतों को पालकर उनके माध्यम से बालात नील की खेती शुरू कर दी। ये लठैत किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना तथा किसानों के घरों एवं फसलों को जलाने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे। 17 अगस्त 1859 को पुलिस के नाम फरमान जारी कर दिया कि नील उगाने वाले किसानों से संबंधित विवादों में जमीन पर किसानों का कब्जा रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसल उगा सकेंगे। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि कोई नील उत्पादक या अन्य कोई व्यक्ति किसानों के मामले में हस्तक्षेप न कर पाए। मजिस्ट्रेट की यह घोषणा पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए और नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। 13 दिसंबर को नील उत्पादक के लगभग 100 लठैतों ने गोविंदपुर गाँव पर हमला कर दिया। यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई। इस घटना के बाद किसानों ने नील उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने से इनकार कर दिया। नील उत्पादकों ने धमकी दी कि वे अपने जमींदारी अधिकारों का इस्तेमाल करके विद्रोही किसानों से जमीन छीन लेके या उनका लगान बढ़ा देंगे। इस धमकी के बाद किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और सामूहिक रूप से सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। इस एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक सहन न कर पाए और धीरे धीरे उत्पादकों ने अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए। 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह खत्म हो गई। नील आंदोलन की खास बात यह रही कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र के माध्यम से किसानों का पूर्ण समर्थन किया और दीनबंध मित्र के नाटक नील दर्पण का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें किसानों के इस शोषण को बारीकी से उभारा गया था। स्थिति को देखते हुए सरकार ने उत्पादकों की समस्याओं को दूर करने के लिए सीटोन कर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। इस आयोग के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1860 में एक अधिसूचना जारी की। किसी भी किसान को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा केवल कानूनी ढंग से ही होगा। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि किसानों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बूते पर यह लड़ाई लड़ी थी। पमाना विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल के पमाना जिले में लगान वृद्धि से परेशान किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसानों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी और यूसुफ शाही फरगना में किसान संघ की स्थापना की गई। संघ ने किसानों को संगठित किया और गांव-गांव जुलूस निकाल कर वहां के किसानों से भी संघ में शामिल होने की अपील करते और इसके तहत किसानों ने बढ़ा हुआ लगान चुकाने से इनकार कर दिया। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और मुकदमे लड़ने के लिए किसानों ने दिल खोलकर संघ को चंदे दिए। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि किसानों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया, बल्कि इन किसानों ने घोषणा की कि हम महारानी के रैयत होना चाहते। सरकार की ओर से इस आंदोलन को दबाने की कोशिशें सिर्फ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत ही सीमित रहीं और सरकार ने सशस्त्र दमन का सहारा नहीं लिया, जैसा कि अन्य विद्रोहों के मामले में किया गया था। बंगाल के युवा बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त भी शामिल थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। इन सब प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार विवश होकर 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर जमींदारों और उनके काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 में रैयत वाली व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने सीधा लगान वसूल किया जाता था और उन्हें भूमि का मालिकाना हक भी प्राप्त था। अन्य रैयतवारी इलाकों की तरह यहाँ के किसान भी महाजनों व साहूकारों के शिकंजों में फंसे थे, क्योंकि उनसे कर्ज लिए बिना किसान लगान चुका पाने की स्थिति में ही नहीं थे। ज़्यादातर महाजन बाहर से आए गुजराती व मारवाड़ी थे।
किसानों द्वारा धन न चुकाने की स्थिति में महाजन न्यायालय

से अपने पक्ष में निर्णय करवाकर किसानों की भूमि पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह किसानों से सूदखोरों के पास धन संपत्ति का हस्तांतरण होने लगा। इसी दौरान दिसंबर 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करहाट गांव में ऐसी घटना घटित हुई जिससे भीतर ही भीतर सुगबुगा रहे किसानों के गुस्से को एकदम से हवा दे दी। इस गांव में कालूराम नाम के महाजन ने एक कर्जदार किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिरकी ले ली थी। इस घटना से गांव वालों ने महाजन का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया ताकि अपनी मांगों के लिए किसान महाजनों पर शांतिपूर्वक ढंग से दबाव डाल सके। 1875 तक स्थिति विस्फोटक हो गई। भीमथारी तालुका के सूपा बाजार में एकत्रित किसानों ने महाजनों के घरों एवं दुकानों पर हमला करके इकरारनामे और अदालत के आदेश जला दिए। देखते ही देखते यह आग पूना और अहमदनगर जिलों में दूसरे गाँव में भी फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को 3 सप्ताह में दबा दिया और सरकार द्वारा 1879 ईस्वी में डक्कन कृषक राहत अधिनियम के माध्यम से किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया। इस तरह डक्कन उपद्रव समाप्त हुआ। 1857 ईस्वी के बाद किसान आंदोलन का परिवर्तित चरित्र देखने को मिलता है। जैसे किसान आंदोलन में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधा लड़ना प्रारंभ कर दिया। किसानों की मांग मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। किसानों के मुख्य शत्रु विदेशी बागान मालिक, देसी जमींदार, महाजन और सूदखोर थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन पिछली शताब्दी के किसान आंदोलनों से अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल थे क्योंकि गांधी जी जैसे नेताओं की भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। चंपारण सत्याग्रह। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कटिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान के मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों की अनुबंध से मुक्ति के लिए लगान व अन्य गैरकानूनी मालगुजारी की दरें मनमाने ढंग से बढ़ा दी। इसी दौरान राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को वहां से चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया। यह गांधी जी की जीत थी। गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई तथा अन्य बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गांव में निकल जाते और दिन भर घूम घूम कर किसानों के बयान दर्ज करते और उनसे पूछताछ करते। इसी बीच सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इस आयोग का सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तीन कटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए और किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बागान मालिक किसी तरह अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए। 1921 में देश के बिल्कुल दूसरे छोर पर मालाबार जिले केरल में काश्तकारों का विद्रोह कई अन्य किसान संघर्षों के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक और जुझारू था। इनकी समस्याएं भी अवध प्रांत के किसानों जैसी थी। जमींदार जब चाहते उन्हें बेदखल कर देते, मनमाना लगान वसूल करते और तरह तरह के अत्याचार करते थे। ये किसान मुख्यतः मुस्लिम थे जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथों में। किसानों के असंतोष को हवा दी अप्रैल 1920 में मंजेरी में हुए मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन ने। इस आंदोलन में किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हुए एक ऐसा कानून बनाने की मांग की गई जो जमींदार काश्तकार संबंधों को तय करे। मंजेरी सम्मेलन के बाद कोचिकोण में किसानों का एक संगठन बनाया गया। यह संगठन किसानों की बैठकें आयोजित करते जिसमें किसानों की वाजिब मांगें उठाई जाती। यह सिलसिला धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगा। हालांकि इस विद्रोहों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना नहीं था, लेकिन इन्होंने भारतीयों में जागरूकता पैदा की किसानों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे

0: में जागरूक किया।
1: हाँ
2: हाँ
1: सुनील
2: भैया,
1: भाई, हमके देखा अखिलेश कुमार यादव भाई कौन कितना अच्छा से जो ना है आंदोलन के बारे में जानकारी देहन जो ना है, निश्चय रूप से भाई ज्ञानवर्धक हुए जो ना है। हम कहीं देखा भाई अपने गांव गिराव में भाई तमाम ऐसे बोली भाषा हैं, ऐसा रीत रिवाज हैं जेका कविता गीत के माध्यम से संजोवा जाता जो ना
2: बिल्कुल भैया,
1: हाँ।
2: बिल्कुल।
1: और अपन भाई जौन भी लोग कवि हैं भाई अपने माटी से अपने भाषा से जुड़ के जो ना है उनका कविता के रूप में छंद के रूप में प्रस्तुत करा थे
2: भाई
1: ना।
2: ये हो एक हमार पचन का धरोहर बाटे,
1: बिल्कुल
2: जे कि भाई हमार भाषा में हमार जोन गांव का भाषा बाटे, भाई उमन आगे जावत बाटे, आगे कुछ लेके जात हैं भैया कुछ जने हैं। तो देखा यही संबंध में देखा एक लोक भाषा कविता पाठ बाटे अनीस देहाती भैया का,
1: हाँ
2: अब देखा सुना जाए का कहे हैं।
1: बिल्कुल भाई सुनाए दो।
3: पंच भाई आज कविताई के दिन आते और आपके बड़े कुछ कविता अवधि के लेके आप सबके सामने आवा ही और कुछ गजल अवधि के आपके सामने पढ़ा चाहिए था। पंच भाई देखें कि सारा माहौल वे अब अनमना हो गवा, सारा माहौल वे अनमना हो गवा, आज के आदमी झुनझुना हो गवा, अ खोखली शान मा यह नई नस्ल के अब चुनौती भरा बचपना हुई गवा, सारा माहौल वे अनमना हुई गवा, आदमी आज के झुनझुना हुई गवा, और खोखली शान मा यह नई नस्ल के अब चुनौती भरा बचपना हुई गवा, और पौध इंसानियत के फरे के तरह, पौध इंसानियत के फरे के तरह अधमरा जबकि ओकर तना हुई गवा, पौध इंसानियत के फरे के तरह अधमरा जबकि ओकर तना हुई गवा, और जैसे बचने के चाहत रही रात दिन, जैसे बचने के चाहत रही रात दिन वह दरख्तन के साया घना हुई गवा, जैसे बचने के चाहत रही रात दिन वह दरख्तन के साया घना हुई गवा, और लाख जीने के चाहत मुला का करी, लाख जीने के चाहत मुला का करी, मौत से आज फिर सामना हुई गवा, और अब मोहब्बत रहम आज कहमा भला, अब मोहब्बत रहम आज कहमा भला, आदमी पत्थरे के बना हुई गवा, अब मोहब्बत रहम आज कहमा भला, आदमी पत्थरे के बना हुई गवा, और साफ तस्वीर कैसे दिखाए भला गर्द से जब भरा आईना हुई गवा, सारा माहौल वे अनमना हुई गवा, आदमी आज के झुनझुना हुई गवा। पंच भाई एक गजल और सुनाए कि कसम से ई दशा लख के महापितकोप लागत है, कसम से ई दशा लख के महापितकोप लागत है, लोनौरी भीत के खह जाए पे जो छोप लागत है, कसम से ई दशा लख के महापितकोप लागत है, लोनौरी भीत के खह जाए पे जो छोप लागत है, और अही जड़हा डिठौने का चढ़ाई थे कपारे पे, अही जड़हा डिठौने का चढ़ाई थे कपारे पे, और रहे होली तलुक अमर जवन कंटोप लागत है, अही जड़हा डिठौने का चढ़ाई थे कपारे पे, और रहे होली तलुक अमर जवन कंटोप लागत है, कबौ बासी कबौ टाटक, कबौ बासी कबौ टाटक जवन मिल जाए बिस्मिल्ला, कबौ बासी कबौ टाटक जवन मिल जाए बिस्मिल्ला, भुखारी दें बिन गोला के जैसे तोप लागत है, कबौ बासी कबौ टाटक जवन मिल जाए बिस्मिल्ला, भुखारी दें बिन गोला के जैसे तोप लागत है, और ई किंगरी के रेताई बंद कई के और कुछ सोचा, ई किंगरी के रेताई बंद कई के और कुछ सोचा, ई किंगरी के रेताई बंद कई के और कुछ सोचा, नगारा से गमक निकले जो वह पर चोप लागत है, और नगारा नाश के बाजत आहे बाजा करे अब तो, नगारा नाश के बाजत आहे बाजा करे अब तो, ई करदसना दिहाती के यह आरोप लागत है। पंच भाई एक गजल और कि जाने के ना सहूर की कुन गुन का है नीम के, जाने के ना सहूर।

की गुन का है नीम कै, चारू तरफ बखान अब ऐसन हकीम कै। जाने के ना सहूर की गुन का है नीम कै, चारू तरफ बखान अब ऐसन हकीम कै, और रच्चू भय मिल सकै के नहीं जोग बाय मुल, रच्चू भय मिल सकै के नहीं जोग बाय मुल, देखा तो तनी नाव है कोठी अफीम कै। रच्चू भय मिल सकै के नहीं जोग बाय मुल, देखा तो तनी नाव है कोठी अफीम कै, और इतने बड़े मकान में दीवार न खंभा, इतने बड़े मकान में दीवार न खंभा, हमका तो ई लगत है करामात बीम कै। रच्चू भय मिल सकै के नहीं जोग बाय मुल, देखा तो तनी नाव है कोठी अफीम कै, और इतने बड़े मकान में दीवार न खंभा, हमका तो ई लगत है करामात बीम कै। अब बैठा जो कबौ जीप पे, बैठा जो कबौ जीप पे तो आँख मूंद लिया, बैठा जो कबौ जीप पे तो आँख मूंद लिया, जो होम देहा तो फिर कौन तेज धीम कै। अब कीमत फूटी, पंच भाई का खास तौर से सुने कि कीमत फूटी सनहकी और फटहे लंगोट कै, कीमत फूटी सनहकी और फटहे लंगोट कै, जाने उहे जे जी सके जिंदगी यतीम कै। कीमत फूटी सनहकी और फटहे लंगोट कै, जाने उहे जे जी सके जिंदगी यतीम कै, और न ढंग न सहूर न तो तौर तरीका, ना ढंग ना सहूर न तो तौर तरीका, पिछलग्गू हम बना रही कवियन की टीम कै। ना ढंग ना सहूर न तो तौर तरीका, पिछलग्गू हम बना रही कवियन की टीम कै, अब विद्वान मंडली में हम एक ठेठ दिहाती, विद्वान मंडली में हम एक ठेठ दिहाती, हमरे कहाँ सहूर आयन लाम मीम कै। जाने के ना सहूर की गुन का है नीम कै, चारों तरफ बखान अब ऐसन हकीम कै, विद्वान मंडली में हम एक ठेठ दिहाती, हमरे कहाँ सहूर ऐन लाम मीम कै। पंच भाई ये गजल आओ सुना कि जमाना बिगड़ गया रुपया के दम पे, जमाना बिगड़ गया रुपया के दम पे, तबो घर चलत बा कमैया के दम पे, जमाना बिगड़ गया रुपया के दम पे, तबो घर चलत बा कमैया के दम पे, और खही जात बा भीत लेवा खसकगा, खही जात बा भीत लेवा खसकगा, रुकी पौठ बा तो छवैया के दम पे, जमाना बिगड़ गया रुपया के दम पे, तबो घर चलत बा कमैया के दम पे। अब भितुहरी में बीसन जनानी के मजमा, भितुहरी में बीसन जनानी के मजमा, जेवनार बनगा रिंधैया के दम पे, भितुहरी में बीसन जनानी के मजमा, जेवनार बनगा रिंधैया के दम पे, और फ्री के मोबाइल के नखरा तो देखा, फ्री के मोबाइल के नखरा तो देखा, फ्री के मोबाइल के नखरा तो देखा, चलत है तो पैसा डवैया के दम पे, तबो घर चलत बा कमैया के दम पे। अगवा बीत सावन पटोहा न कजरी, गवा बीत सावन पटोहा न कजरी, गवा बीत सावन पटोहा न कजरी, जमी गौनई तो गवैया के दम पे। अपना तीन तल्ला खड़ी भय सफारी, बना तीन तल्ला खड़ी भय सफारी, ये सब कुछ विदेशी जवैया के दम पे। अब मझिलकी के नखरा रहे सबसे ऊपर, मझिलकी के नखरा रहे सबसे ऊपर, ये कोलकाता सेंदूर डवैया के दम पे, मझिलकी के नखरा रहे सबसे ऊपर, ये कोलकाता सेंदूर डवैया के दम पे। अब गृहस्थी के गाड़ी चलत बाय लेकिन, गृहस्थी के गाड़ी चलत बाय लेकिन, न भौजी के दम पे न भैया के दम पे, तबो घर चलत बा कमैया के दम पे, ये जेवनार बनगर इंढैया के दम पे, ये सब कुछ विदेशी जवैया के दम पे। पंच भाई एक कविता ही आपका सुनावा चाही था खास तौर से, इतना बड़ा देश हमार भारत, अगल बगल नान नान देश, जब हो तब वह कुछ न कुछ ऊट पटांग करत रहती, तो उनके बारे एक कविता हम लिखे,

आई नए ढंग के कविता आते आप सब सुने कि शिकहर के टूटब बिलारी पे कृपा। एक चीज और जान लिया भैया हम कि एक गोहटा हो था एक झिटोर हो था। गोहटा बहुत मजबूत हो था और झिटोर जो ना वो बहुत कमजोर हो था। तो इतने बड़े देश का एक छोट के देश पिद्दीस देश जो ना है कबो कबो जो ना है बमबारी और गोलाबारी कर रहा था। तो यह गोहटा का एक ठीक झिटोर जो बहुत कम ताकत वाला है वो कबो कबो कुछ न कुछ करत रहा था। कविता ही आप सुने कि शिकहर के टूटब बिलारी पे कृपा। कहें कि शिकहर टूट बिलारी के भाग। तो शिकहर के टूटब बिलारी पे कृपा जो भूखा रहे तो सोहारी पे कृपा। शिकहर के टूटब बिलारी पे कृपा जो भूखा रहे तो सोहारी पे कृपा। अब बढ़ई के गुस्सा कुल्हाड़ी पे कृपा। बढ़ई के गुस्सा कुल्हाड़ी पे कृपा जो छाजन सही तो अटारी पे कृपा। लाठी न डंडा फेटारे पे कृपा। लाठी न डंडा फेटारे पे कृपा। दवाई न दरमत बुखारे पे कृपा। रहे पाग टोपी कपारे पे कृपा। सजा न मिले हत्यारे पे कृपा। लाठी न डंडा फेटारे पे कृपा। दवाई न दरमत बुखारे पे कृपा। और रहे पाग टोपी कपारे पे कृपा। और सजा ना मिले हत्यारे पे कृपा। तो जब से घड़ियार कंठी और माला लिहिस जब से घड़ियार कंठी और माला लिहिस ओकरे मूड़े चढ़े अखलिलोर पंचो। काहो गोहटौ का धिरवे झिटोर पंचो। जब से घड़ियार भारत देश अपन शांति अहिंसा के पुजारी। तो जब से घड़ियार कंठी और माला लिहिस ओकरे मूड़े चढ़े अखलिलोर पंचो। काहो गोहटौ का धिरवे झिटोर पंचो। आगे सुना पंच भाई सुने कि बीच बेउरा का सोखा बेरावत फिरें। बीच बेउरा का सोखा बेरावत फिरें। फूल सेंदूर डगर माँ गिरावत फिरें। दांव उस्ताद एक ठू चोरावत फिरें। आज के चोर सेंधी में गावत फिरें। बीच बेउरा का सोखा बेरावत फिरें। फूल सेंदूर डगर माँ गिरावत फिरें। दांव उस्ताद एक ठू चोरावत फिरें। आज के चोर सेंधी में गावत फिरें। अब दिने माँ फुले रात रानी हियाँ। अब दिने माँ फुले रात रानी हियाँ। टेम टेबुल से बरसे न पानी हियाँ। होइ गे बेहाल पशु और परानी हियाँ। कान काटे मरद के जनानी हियाँ। तो मिर्जई और छकलिया के दिन लज गवा। मिर्जई और छकलिया के दिन लज गवा। अब तो फैशन के चारू मुसोर पंचो। कहो गोहटौ का धिरवे झिटोर पंचो। अब दिने माँ फुले रात रानी हियाँ। टेम टेबुल से बरसे न पानी हियाँ। और होइ गे बेहाल पशु और परानी हियाँ। कान काटे मरद के जनानी हियाँ। मिर्जई और छकलिया के दिन लज गवा। अब तो फैशन के चारू मुसोर पंचो। काहो गोहटौ का धिरवई झिटोर पंचो। आगे सुने पंच भाई कि आज जे मीठ बोले उहे मीठ ऊ। आज जे मीठ बोले सही मीठ ऊ। आज जे मीठ बोले सही मीठ ऊ। आ जेहमा सुर ताल कुछ ना सही गीत ऊ। आज जे मीठ बोले सही मीत ऊ। जेहमा सुर ताल कुछ ना सही गीत ऊ। आ जेहका दैयो न जाने सही नीत ऊ। आ देख दुश्मन दपक जाए रण जीत ऊ। तो तू पड़ोसी आया तो पड़ोसिन रहा। पड़ोसी देश के बड़े भैया कि तू पड़ोसी आया तो पड़ोसिन रहा। मीठ व्यवहार बर्ताव से फिन रहा। हम मीठ व्यवहार बर्ताव से फिन रहा। हम भला कब कहे तो उसे तू भिन रहा। प्रेम से बड़कवा बन के सब दिन रहा। आँख काढ़े के हर दाँव जानी था हम। मुला हमका ये समझन डपोर पंचो। काहो गोहटौ का धिरवे झिटोर पंचो। आज जे मीठ बोले सही मीत ऊ। जेहमा सुर ताल कुछ ना सही गीत ऊ। जेका दैयो न जाने सही नीत ऊ। देख दुश्मन दपक जाए रण जीत ऊ। तू पड़ोसी आया तो पड़ोसिन रहा। तू पड़ोसी आया तो पड़ोसिन रहा। मीठ व्यवहार बर्ताव से फिन रहा। हम भला कब कहे तो उसे तू भिन रहा। और प्रेम से बड़कवा बन के सब दिन रहा। और आँख काढ़े के हर दाँव जानी था हम।

0: हमका ये समझे डपोर पंचो काहो गोहटौ का धिरवे झिटोर पंचो।
1: हाँ भैया, देखा जुन लोक भाषा कविता पाठ रहा अनीस देहाती भैया का, कितना बढ़िया बतायन भाई, हर तरीके से हर प्रकार से भाई आपन देश का शौर्य गाथो गाय दिए साथ ही
2: बिल्कुल
1: साथे।
2: बिल्कुल
1: अच्छा
2: बिल्कुल
1: देखा, अब देखो चली चला के बेला बाटे तो भाई जोन मौसम बाटे वही हिसाब से भाई किसान भाई आपन काम धंधा करें
2: खेती किसानी के बिल्कुल
1: बिल्कुल, और जोन घड़ी बा उछारा करत बाटे तो चली चला के बेला भाई बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: પ્રાદેશિક સમાચાર મુખ્ય સમાચાર. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઓર રેલમંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને નેપાલગંજ રોડ નાનપારા બહરાઇચ રેલખંડ કા કિયા શુભારંભ. મુખ્યમંત્રી ને કહા સીમા કી સુરક્ષા ઓર ક્ષેત્ર કી સમૃદ્ધિ કો બઢાવા દેગા યે કદમ. પ્રયાગરાજ કે મોહમ્મદપુર ગાંવ મે પટાકા ફેક્ટરી મે હુએ વિસ્ફોટ મે 11 લોગો કી મોત, 5 ગંભીર રૂપ સે ઘાયલ. રાહત ઓર બચાવ કાર્ય જારી. અયોધ્યા મે 2 સિતંબર કો શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ કી હોગી અહેમ બેઠક. ટ્રસ્ટ કે સીઈઓ સમેત અન્ય રિક્ત પદો પર હો સકતા હૈ ફૈસલા. ઓર પ્રદેશ મે રૂક રૂક કર હો રહી બારિશ ઓર બાંધો સે પાણી છોડે જાને કે કારણ કઈ નદિયાં ઉફાન પર. 17 જિલ્લો કી 1,70,000 સે અધિક આબાદી બાઢ સે પ્રભાવિત. નમસ્કાર, પ્રદેશ કે સમાચારોં કે સાથ મેં મોનિકા ચૌહાણ ઓર અબ સમાચાર વિસ્તાર સે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ કી મોજૂદગી મે બહરાઇચ મે આયોજિત કાર્યક્રમ મે રેલમંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ને આજ વર્ચ્યુઅલી નેપાલગંજ રોડ નાનપારા બહરાઇચ રેલખંડ કા શુભારંભ કિયા. ઇસ દૌરાન ઉન્હોને ઇસ ખંડ પર નેપાલગંજ રોડ વારાણસી સિટી વિશેષ ગાડી કો ભી રવાના કિયા. કાર્યક્રમ કો સંબોધિત કરતે હુએ મુખ્યમંત્રી ને કહા કી નયે રેલખંડ ઓર ટ્રેનો સે મિલી કનેક્ટિવિટી પ્રદેશ મે કેવલ બોર્ડર ક્ષેત્ર કી સુરક્ષા ઓર સુવિધા કે લિયે હી નહીં બલ્કિ પૂરે ક્ષેત્ર કી સમૃદ્ધિ કે લિયે ભી મહત્વપૂર્ણ હૈ.
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा.
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों को अधिक सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सीमा से लगे रेलवे जोन के अधिकारी भी लगातार राज्य के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है. रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं. जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है.
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान से संबंधित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया. इस आयोजन में

0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण और अनवरत सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पूरे एक महीने तक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा समर्पण और कर्तव्य पथ पर लगातार 25 साल अनवरत सेवा के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर पूरे एक माह तक ये सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें रक्तदान और युवाओं को और जो निसहाय लोग हैं उनकी सबकी मदद करके हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाएंगे।
0: प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के अलावा 100 मीटर के दायरे में 8 मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए कई जेसीबी मशीनें लगाकर तलाश और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 2 सितंबर को मणि रामदास छावनी के चारधाम में आयोजित होगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 चरणों में प्रस्तावित इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव और 2 रिक्त सदस्य पदों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के CEO पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार 2 बदमाश आज सुबह शामली में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। इन दोनों शूटरों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 2 आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने बताया कि 4 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
2: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री-प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं।
0: इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से अब तक 1635 बाढ़ चौकियां और 254 बाढ़ शरणालय स्थापित किए जा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। ACP दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है।
3: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: जो ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित, जिसको हम लोग कहते हैं वरुणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहां पर बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। इसमें NDRF जो हमारी बाढ़ राहत ये

0: सी है उसका डिप्लॉयमेंट, और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो ये एरिया हमारा दशाश्वमेध घाट और आसपास का, नावों का संचालन लगातार बंद किया गया है। साथ साथ में जो गंगा आरती है उसके स्थल में भी परिवर्तन किया गया है।
1: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं राधा शुक्ला की वार्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका।
1: श्रोताओं, आज का विषय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। प्रिय साथियों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो हमारे मन में गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं उन वीरांगनाओं को जिन्होंने घर की चार दीवारी तोड़कर देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर। श्रोताओं, आइए बात करती हूँ महिलाओं की भूमिका 1857 की क्रांति में, जिसे पहली चिंगारी का नाम दिया गया। आप जानते हैं 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इस क्रांति की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार होकर, कमर में तलवार बांधकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उनके साथ रानी अवंतीबाई लोधी एवं बेगम हजरत महल ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग में कुछ आंदोलन चलाए गए जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। आइए इस विषय में गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलन में महिलाओं ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी बात करते हैं। 20वीं सदी में जब गांधी जी आए तो महिलाओं की भागीदारी 10 गुना बढ़ गई, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इसमें पहले नंबर पर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी के आवाहन पर हजारों महिलाओं ने विदेशी कपड़े जलाए, शराब की दुकानों पर धरना दिया। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, उन्होंने पूरे देश में भाषण देकर देशवासियों को इस क्रांति के लिए जगाया। दूसरे नंबर पर नमक सत्याग्रह 1930 में, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बम्बई में नमक कानून तोड़ा। अरुणा आसफ अली ने 1942 में बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराया था। उस समय उन्हें 1942 की वीरांगना कहा जाता था। तीसरे नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसमें घर घर की महिलाएं जेल गई। उनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। घर घर से महिलाएं निकलकर ऐसा नारा देती थी और अंग्रेजों से लड़ती थी कि अब हमारे देश को छोड़ करके चले जाओ। तीसरे नंबर पर कुछ महिलाएं जो केवल घर में

बैठकर घर से बाहर निकलकर नारा ही नहीं दिया उन्होंने, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जिनमें कुछ महिलाएं प्रमुख थीं। ये महिलाएं शांत नहीं रहीं, इन्होंने बंदूक उठाई जिसमें दुर्गा भाभी का नाम आता है। ये भगत सिंह के साथी थी, इन्होंने अंग्रेजों को चकमा देकर भगत सिंह को बचाया। दूसरे नंबर पर प्रीतिलता वाडेदार जी हैं, इन्होंने 18 साल की आयु में चटगांव के पुलिस क्लब में हमला करते हुए शहीद हो गई। तीसरे नंबर पर हमारी कल्पना दत्त वीरांगना आती हैं, इन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन जी का साथ दिया। उषा मेहता 1942 में इन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया और 8 माह तक अंग्रेजों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस और रानी झांसी रेजिमेंट के दौरान आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की अलग रेजिमेंट बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। ये दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट थी। ये महिलाएं वर्दी पहनकर बंदूक लेकर अंग्रेजों से सीधे युद्ध के मैदान में उतरी। कुछ महिलाएं जिन्होंने केवल क्रांतिकारी आंदोलन ही नहीं चलाए, बल्कि कुछ महिलाओं ने अपनी साहित्य के माध्यम से भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कुछ महिलाओं ने अपने सोच एवं कलम की सहायता से जेल में रहकर आज़ादी की लड़ाई को धार दी, जिसमें पहला नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित जी का। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखा। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुनते ही बच्चे बच्चे के मन में जोश आ जाता था। यह कविता ऐसी थी जिसे सुन करके देशवासियों के मन में जोश भर जाता था और अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो निकल पड़ते थे। ऐसी कविताओं से जन जन के मन में देशभक्ति का संचार किया गया। एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाकर अंग्रेजों का प्रतिकार किया। स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य के माध्यम से योगदान देने वाली जो प्रमुख महिलाएं उस दौर में उभर कर आई साथियों, वो आंदोलन पटल पर दिखी, जिनमें भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू। इन्होंने भारतीय बुनकरों से संबंधित गीत लिखकर भारत के साधारण जीवन जीने वाले लोगों से देशभक्ति जोड़ी। इन्होंने लिखा, बुनकरों बुनकरों बुनकरों, रात भर क्या बुनते हो तुम, नीले आकाश के रंग जैसा, राजकुमार की शादी के लिए। श्रोताओं, इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि भारत की मिट्टी में ही कितनी सुंदरता और मेहनत है। उसी दौर में छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंदन है। इस तरह से इस गीत लिखकर उन्होंने सीधे राजनीति नहीं की, किंतु इस कविता में त्याग और संघर्ष का भाव है जो आज़ादी के आंदोलन से लोगों को जोड़ता था। इसका तात्पर्य है कि दुख सहकर मुस्कुराना और चलते रहना, यही भावना स्वतंत्रता सेनानियों में थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो 1857 की क्रांति की पहचान बनी। कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह गीत गा गा करके लोगों के मन में जोश भरा और आज़ादी के लिए उन्हें प्रेरित किया, और घर घर से महिलाएं लक्ष्मीबाई के साथ

0: साथ थीं और उनके साथ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इसी क्रम में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने लेख एवं किताबों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर हमला किया। पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए स्त्री धर्मनीति नामक पुस्तक लिखकर कहा कि जब तक महिला शिक्षित तथा आत्मनिर्भर नहीं होगी, देश आजाद नहीं होगा। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ महिलाओं ने मैदान में लड़ाई लड़ी, कुछ ने जेल में लड़ी और कुछ ने कलम से लड़ाई लड़ी। किसी ने अपना सुहाग खोया, किसी ने अपने बच्चे। महात्मा गांधी जी ने सही कहा था, अगर अहिंसा के आंदोलन को सफल बनाना है तो महिलाओं के बिना यह संभव नहीं है। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय उन हजारों अनाम महिलाओं को भी जाता है जिनका नाम इतिहास में कहीं नहीं है पर जिनका बलिदान अमर है। और उन महिलाओं ने अपने त्याग से, अपने समर्पण से आज की महिलाओं की प्रेरणा बनी, मिसाल बनी कि हम केवल घर में रह कर के घर के काम ही नहीं वरन देश के लिए भी काम आ सकते हैं। ऐसी महिलाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण गंवा दिए, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गई, जिन्होंने हंसते हंसते अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आज हमें उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें याद करना चाहिए। महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महिलाओं ने हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसा नहीं कि केवल देश की लड़ाई में साथ दिया बल्कि आज देश के विकास में, देश की आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा से लेकर महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश का विकास में अपना योगदान दिया है। लेकिन साथियों, हमें उन महिलाओं, उन वीरांगनाओं को नमन करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का मजबूत भारत बनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे राधा शुक्ला की वार्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं संगीता राय। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीता राय को। आइए अब सुनते हैं इनके स्वर में एक गीत।

आप सुन रहे थे संगीता राय के स्वर में गीत। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। बने रहिए अपने रेडियो सेट के पास और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे थोड़ा सा पीछे, समय के पहियों को घुमाएंगे थोड़ा सा पीछे और आपको सफ़र कराएंगे 2000 के साल की। जी हाँ, फ्लैशबैक में ले जाएंगे आपको साल 2000, जब नई सदी की शुरुआत हुई थी। याद है आपको, ना मोबाइल का शोर था, ना सोशल मीडिया का रश, बस रेडियो और कैसेट्स का दौर था। हमारे पास घरों में ढेर सारे कैसेट्स होते थे, रेडियो होता था और उन कैसेट्स को जब हम सेट में लगाते थे तो हम अपने मन के गाने सुनते थे। और उस दौर में बॉलीवुड ने ऐसी फिल्में और ऐसे गाने दिए जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसने ऋतिक रोशन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म थी कहो ना प्यार है।

जी हाँ बिल्कुल, इस गाने की थिरकन ने ज़रूर से आपको मजबूर कर दिया होगा नाचने पर। और ये रितिक का वो हुक स्टेप तो आपको बिल्कुल याद ही होगा ना। सन 2000 साल सिर्फ डांस नंबर्स का साल नहीं था, ये साल था शिद्दत वाली मोहब्बत का भी। और इसी साल शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, याद आया? जी हाँ, मोहब्बतें। प्यार की इस जंग और वायलिन की धुन ने सबको दीवाना बना दिया था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का वो खूबसूरत सा नगमा जो आज भी हर किसी की प्लेलिस्ट में होता है और सुन करके एक बार मन खुश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं बिना देर किए ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस गाने में पूरी तरह डूब गए होंगे और इस गाने ने आपको अपने पुराने दौर में खींच लिया होगा और आपके जहन में कुछ मीठी यादों ने दस्तक दी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास आए और दूरियां फिर भी कम ना हुई। 2000 में कुछ ऐसी फिल्में भी और आई थी जिन्होंने दिल जीत लिया था और आज भी वो जिंदा हैं। एक फिल्म थी जिसने दोस्ती और प्यार की परिभाषा बदल दी थी, तीन दोस्तों की कहानी, गोवा के ट्रिप और कमाल का म्यूजिक। समझ तो गए ही होंगे आप। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल चाहता है फिल्म की। और इस फिल्म के गानों ने युवाओं को एक नया एटीट्यूड दिया था। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल ट्रैक और याद करते हैं अपने कॉलेज के उन खास दोस्तों को।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और हम आपको सैर करा रहे हैं साल 2000 की। और साल 2000 में जो मूवीज़ आई थी उनमें अगली मूवी जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म हेरा फेरी से। जी हाँ, उस फिल्म की बात जिसने कॉमेडी और सस्पेंस का ऐसा तड़का लगाया कि आज भी लोग बाबूराव, राजू और श्याम के मीम्स बनाते थकते नहीं हैं। जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ कल्ट क्लासिक फिल्म हेरा फेरी की। और इस फिल्म के डायलॉग्स जितने मज़ेदार थे उतने ही इसके गाने भी सुपर हिट थे। और इस फिल्म में वो जो पेपे का गाना था ना, वो हर महफिल की जान बन गया था। तो आइए सुनते हैं उसी मूवी का ये ट्रैक।

ये बाबू राव का स्टाइल है। सच में इस फिल्म को जितनी बार देखो मन तो भरता ही नहीं है। खैर 2000 में सिर्फ हंसी मजाक का दौर ही नहीं था, बल्कि देशभक्ति और एक ऐसे फौजी के जज्बात पर्दे पे उतारे गए जिनको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म रिफ्यूजी की। जेपी दत्ता की फिल्म में ऐसे गाने थे जो मन को एकदम खुश कर देते थे, और आज भी वो गाने जब हमारे कानों में जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून देते हैं। जेपी दत्ता की ये जो फिल्म थी, इसमें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अनु मल्लिक का संगीत था और जेपी दत्ता का डायरेक्शन तो बिल्कुल कमाल का था।

तो आइए आपको अब सुनवाते हैं इस फिल्म का यानी रिफ्यूजी फिल्म का वो रूहानी गाना जो सरहदों के पार पहुंच करके अपनी शिद्दत के साथ सबके दिलों पर राज करता है।

गाना कितना सूदिंग और सुकून देने वाला गाना। जेपी दत्ता की फिल्मों की तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। वैसे साल 2000 में एक और ऐसी लव स्टोरी आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, सनी देओल का वो हैंड पंप उड़ाने वाला सीन याद है ना आपको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म गदर एक प्रेम कथा की। अमीषा पटेल और सनी देओल ने इस फिल्म में इमोशंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इसके गाने तो सीधे दिल को छूते थे। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत सा लोकगीत जैसा लगने वाला गीत।

घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक चिंदड़ी, इस गाने को सुन करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। और अब चलते चलते बात करते हैं साल 2000 की उस फिल्म की जिसने सस्पेंस और थ्रिलर का ऐसा दौर शुरू किया था कि मज़ा ही आ गया था। बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार की एक फिल्म थी अजनबी। इस फिल्म के गानों ने एक अलग ही स्वैग और मॉडर्न टच दिया था। आज के इस सुहाने सफर को थिरकते हुए विदा करते हैं इस पॉपुलर सॉन्ग के साथ।

मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम से दीजिए विदा शिप्रा श्रीवास्तव को। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लैशबैक 2000 के सफ़र में आपको मज़ा आया होगा और आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाती होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी और शो में, तब तक के लिए हंसते रहिए,

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान

के राष्ट्रपति सादुल जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आपको हर

0: सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

0: जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's bilateral talks with world leaders in Kyrgyzstan. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert, and Anubha Rohatgi, Anchor.
1: Prime Minister Narendra Modi is at the moment in Bishkek, Kyrgyzstan, to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization, or the SCO Summit. On the first day of the summit today, the Prime Minister held bilateral meetings with leaders of some SCO member states like Kyrgyzstan, Iran, Armenia and Russia. He will address the summit tomorrow, September 1st. And to discuss the significance of Prime Minister Modi's bilateral interactions, I have with me in the studio Professor Rahul Mishra, eminent international affairs expert. Professor Mishra, welcome to Akashwani's Spotlight program.
2: Thank you.
1: Professor Mishra, let's begin with the meeting that took place just a couple of hours ago when Prime Minister Modi met Russian President Vladimir Putin. And in this meeting, Mr. Modi made some very important and relevant statements regarding the Russia-Ukraine war. So let's first listen to what Prime Minister Modi said.
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति
4: के सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दो तरफा तआवुन के अहम शोबों, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
4: यूक्रेन तनाजे के बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
4: मीटिंग के दौरान वजीराजम ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
4: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकत दारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकफ का इयादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाज़ों की आमोदरफ्त और तिजारत की आज़ादी के तहफ़ुज़ पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाज़ों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वजीर आजम मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सदोर जापारोव ने दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ का जायज़ा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। वजीर आजम मोदी और आर्मेनिया के उनके हम मनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले चार वफूद मौजूद थे। जमहूरिया किर्गिस्तान के कल अपने दौरे

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम कहकशां।

आपने समाहत फरमाया आशा भोसले को। कलाम था शबीब अब्बास का। और अब जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो भी आशा भोसले ने ही गाया है और कलाम है सागर सिद्दीकी का।

आप सुन रहे थे शलीम गिलानी का कलाम, गुलुकार की धुन पर, गुलाम अली की धुन पर, आशा भोसले की आवाज़ में।

कहकशा प्रोग्राम की अंतिम पेशकश गुलाम अली के धुन पर नक्श लालपुरी की रचना, आवाज आशा भोसले की।

इसके साथ ही कहकशा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी इंतजार।

0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ मैं शिप्रा श्रीवास्तव। नमस्कार श्रोताओं, जागती आंखों में तैरते हुए कुछ ख्वाबों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त शिप्रा श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। रात का ये पहर बड़ा अजीब होता है ना। बाहर सब कुछ शांत, लेकिन हमारे दिलों के अंदर यादों का शोर बढ़ सा रहा है। आज की रात हम बात करेंगे उन्हीं अधूरी बातों की जो हम कभी किसी से कह नहीं पाए, और इसी मूड को और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ लाइनें। ये रात, ये तन्हाई, ये खामोश नज़ारे, दिल को छू जाते हैं बीते लम्हे सारे। कोई सो गया अपनी मीठी नींद में, तो कोई जाग रहा बस यादों के सहारे।
1: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
2: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
1: तो चांद को ही देखे ना।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

अभी आप सुन रहे थे वो नगमा जो सीधे दिल के पार उतरता है। दोस्तों, रात के इस सन्नाटे में जब हवाएं खिड़की से टकराती हैं, जब कोई आहट देता है, तो ऐसा लगता है कि कोई पुराना दोस्त कान में आकर कुछ कह गया हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद है, कोई ऐसी बात है जो इस रात को और हसीन बनाती है, तो ये कविता आपके लिए। खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, आपकी यादों के साए हमारे दिल में खो गए। इस कदर गहरा आपकी मोहब्बत का असर है, इस कदर गहरा आपकी मोहब्बत का असर है कि हम जागते रहे, बाकी सब सो गए।

अगला गीत कुछ इस तरह के मूड का कि जलते हैं जिसके लिए मेरी आँखों के दिए, जलते हैं जिसके लिए मेरी आँखों के दिए, वही तो है जो रात को रात से गहरा किए। ना शमा बुझती है ना नींद आती है, ना शमा बुझती है ना नींद आती है, बस तेरी कमी हर कोने में सोती है। चांद भी थककर बादल में छुप गया,

एक मैं हूँ जो अब तक तेरी राह देखते जा रहा। वो जो आए थे लगे जैसे रात मुस्कुराई है, वो जो आए तो लगे जैसे रात मुस्कुराई है, दिए जल रहे हैं अब भी कि उम्मीद अब भी पराई नहीं है। तेरे बिना ये रात रात नहीं लगती, तेरे बिना ये रात रात नहीं लगती, एक अधूरी सी दुआ है जो जुबान तक नहीं पर आँखों में जागती है।

कार्यक्रम का अगला गीत कुछ इस तरह जज्बात बयां कर रहा है कि जिस लम्हे में तुम पुकारोगे मैं वक्त को रोक दूंगा, जिस लम्हे में तुम पुकारोगे मैं

वक्त को रोक दूंगा, तुम्हें एक बार कहो मैं खुद को तुम पर छोड़ दूंगा। ये रात, ये तन्हाई, ये खामोशी सब गवाह है, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुमने कहा था इंतज़ार है।

हेमंत साहब की आवाज़ का असर कुछ ऐसा गहरा होता है कि अगर इसके साथ गुलजार साहब के बोल हो तो क्या ही बात है। ये संगीत रूहानी हो जाता है, आत्मा तक उतर जाता है। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो रात की तन्हाई को चीरता हुआ आपके दिलों तक सीधा उतर जाएगा। हमने लिया है फिल्म रात और दिन से, आवाज़ मुकेश की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने, हम बता दें आपको कि सबसे पहले आपको हमने सुनवाया रिफ्यूजी फिल्म का गीत, उसके बाद दुलारी फिल्म से सुहानी रात ढल चुकी, सुजाता से हमने आपको सुनवाया चलते हैं जिसके लिए

मेरी आंखों के लिए। उसके बाद तुम पुकार लो जो गीत आपने सुना वो हमने लिया था फिल्म खामोशी से हेमंत कुमार की आवाज़ में। आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में रात और दिन फिल्म से। आइए सुनते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के आपको सुनवा रहे हैं क्लैरिनेट वादन। कलाकार हैं पंडित रामकृष्ण। तो आइए सुनते हैं पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट पर बजाया राग मारू बिहाग।

क्लेरियोनेट वादन अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे पंडित रामकृष्ण। राग थे मारू बिहाग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुदर्शन राम। तानपुरा पर थी श्रुति मिश्रा और नितिन शंकर। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही बोलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और

0: करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से